0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVO की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
3: योग करें, आओ सभी मिलकर योग करें। जी हाँ, जिसमें आपको सभी प्राणायामों की समुचित जानकारी व योग अभ्यास के साथ साथ करते हुए सभी आसनों को भी कराया जाता है और साथ में अष्टांग योग को भी विस्तार रूप से बताया जाता है। तो सुनना ना भूले रोजाना सुबह 6 से 7 अपनी आरजे समता के साथ। जी हाँ, योगशाला।
4: आज का योगा टिप, खाली पेट योग करें। भोजन के कम से कम 2 से 3 घंटे बाद या सुबह खाली पेट योग करना सबसे अधिक लाभदायक माना गया है, क्योंकि उस समय हमारे शरीर के ऑर्गन्स बहुत ही एक्टिव होते हैं, जिसमें हमें अपना योग कंप्लीट कर लेना चाहिए। स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा, उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते ही हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम।
5: सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है। योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सके, और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

नित प्रतिदिन सवेरे आकर के जो योग आसन की प्रक्रियाओं को कर रही हैं, तहे दिल से शुक्रिया। और आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो रही हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण की बात है। आइए दोस्तों, इसी श्रृंखला में जो कि 30 दिवसीय योग शिविर हो रहा है, उसमें हम सभी आगे बढ़ते हुए आज करेंगे परिणाम, यानी कि जिस तरीके से हम प्रत्येक दिन एक शब्द को जोड़ करके हम प्राणायाम को कर रहे हैं, आज हम करने जा रहे हैं परिणाम आसन, यानी कि परिणाम आसन के साथ हम एक नए आसन की ओर चलेंगे। परिणाम आसन का मतलब सिर्फ ये नहीं हुआ कि हम किसी भी आसन को सिर्फ समझते हैं या हम करते हैं। परिणाम का अर्थ हुआ कि हम एक से बढ़कर एक परिणामों के बारे में उसे पूर्ण रूप से जानते हैं। एक परिणाम गुणात्मक या मात्रात्मक रूप से व्यक्त क्रियाओं या घटनाओं के अनुक्रम और अंतिम परिणाम है। संभवित परिणामों में लाभ, हानि, चोट, हानि, मूल्य और जीत शामिल होती है। दृष्टिकोण ऐतिहासिक दूरी या प्रारंभिक आधार पर किसी घटना से जुड़े संभवित परिणामों की एक श्रृंखला है। परिणाम का मतलब होता है जब हमें किसी तरह की कोई जीत हासिल होती है। तो आइए आज हम सभी मिलकर करने वाले हैं परिणाम सूर्य नमस्कार। परिणाम सूर्य नमस्कार के बारे में हम जितना भी जानें उतना कम है। सूर्य नमस्कार के बारे में हमें इतनी गूढ़ जानकारियाँ दी गई हैं कि यह एक अपने आप में संपूर्ण प्राणायाम है। संपूर्ण प्राणायाम क्यों है, आइए हम आपको बताते हैं। क्योंकि इसमें प्रत्येक प्राणायामों की एक एक अवस्थाएं बताई गई हैं। कहा जाता है कि यह परिणाम सूर्य नमस्कार केवल मात्र करने से हमें बहुत सारे ऐसे लाभ मिलते हैं जो कि बाकी आसनों के अलावा ही कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार में इतनी सारी चीजें बताई गई हैं जो कि हमें कई बीमारियों का साधन शोधन करने में ही पर्याप्त है। सबसे पहले सूर्य नमस्कार क्या है वह हम आपको बताते हैं। सूर्य नमस्कार अपने आप में एक बहुत ही उच्च कोटि का प्राणायाम है। सूर्य नमस्कार के बारे में हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि हम सूर्य को नमन करने जैसी प्रक्रियाओं को जोड़ करके ही यह प्राणायाम घोषित कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार का मतलब है सूर्य को नमन करना, यानी सन सॉल्यूशंस। अगर आप योग की शुरुआत कर रही हैं, तो इसके लिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास सबसे बेहतर है। यह आपको एक साथ 12 आसनों का फायदा देता है और इसलिए इसे सर्वश्रेष्ठ योगासन भी कहा जाता है। 12 सूर्य नमस्कार रोज करने से क्या लाभ होता है, आइए हम आपको बताते हैं। सूर्य नमस्कार को योगासन में सबसे सर्वश्रेष्ठ योगासन माना जाता है, क्योंकि इससे आपको 12 योगासनों का फायदा एक साथ मिलता है। इसके कई फायदे हैं। अगर हम इसके वैज्ञानिक और शारीरिक तौर पर फायदे की बात करें, तो सूर्य नमस्कार के शारीरिक तौर पर कई फायदे हैं। यह आपको वजन घटाने में भी सहायता करता है, साथ ही आपकी पाचन शक्ति को भी काफी हद तक सुदृढ़ करता है। सूर्य नमस्कार के 12 मंत्र कौन से हैं, आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहला मंत्र हम आपको बता दें, सूर्य नमस्कार का मंत्र है ओम मित्राय नमः। ओम हिम मित्राय नमः। ओम हिम रवय नमः। ओम हिम सूर्याय नमः। ओम हिम भावनेवे नमः। ओम हिम खगाय नमः। ओम हिम पुष्णे नमः। ओम हिम हिरण्यकश्यपाय नमः। ओम हिम मरीचये नमः। ओम हिम आदित्याय नमः। ओम हिम सवित्रे नमः। ओम हिम अकर्षाय नमः। और अंत में ओम हिम भारस्कराय नमः। ये 12 श्लोक हैं, 12 श्लोक के मंत्र हैं सूर्य नमस्कार के। तो आइए हम अब आगे बढ़ते हैं कि सूर्य नमस्कार का जो कि मंत्र है वह किस तरीके से हम कह सकते हैं। एक दिन में कितनी बार सूर्य नमस्कार करना चाहिए। सूर्य नमस्कार 5 से 10 मिनट तक करना काफी है। इसे सूर्य के सामने किया जाए तो फायदा ज्यादा होता है। यदि सूर्य नमस्कार रोजाना 5 से 12 बार तक किया जाए तो कोई आसन करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। सूर्य नमस्कार को जल,
बिल्कुल चढ़ाना चाहिए और सूर्य नमस्कार को जल चढ़ाते हुए भी यह एक मंत्र जो अभी हमने बताया वह करना चाहिए। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि सूर्य नमस्कार को स्वास्थ्य रूपी जो कि एक औषधि कहा गया है वह किसी भी तरह के एक्सरसाइज और योग की जरूरत नहीं पड़ती है यदि हम नित सवेरे सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप करते हैं। रोजाना सूर्य के समय सूर्य के सामने इसे करने से शरीर को विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलता है जिससे शरीर को मजबूती मिलने के साथ ही स्वस्थ रखने के लिए भी काफी मदद मिलती है। तो आइए सबसे पहला हम चरण देखते हैं जो कि है प्रमाण आसन। प्रणाम आसन जो कि है खुले मैदान में योगा मैट के ऊपर खड़े हो जाना है और सूर्य को नमस्कार करने के हिसाब से सीधे हम मैट पर खड़े हो जाएंगे। सीधे खड़े हो जाने के बाद दोनों हाथों को जोड़कर सीने से सटा लें और गहरी लंबी सांस लेते हुए आराम की अवस्था में खड़े हो जाएं। हस्त उत्तासन दूसरा है। पहली अवस्था में खड़े रहते हुए सांस लीजिए और हाथों को ऊपर की ओर उठाएं और पीछे की ओर थोड़ा झुकें। इस बात का ध्यान रखें कि दोनों हाथ कानों से सटे हुए हों। हाथों को पीछे ले जाते हुए शरीर को पीछे की ओर ले जाएं। फिर आता है पाद हस्तासन। सूर्य नमस्कार की यह खासियत होती है कि इसके सारे चरण एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। हस्तोनासन की मुद्रा से सीधे हस्त पदासन की मुद्रा में आना होता है। इसके लिए हाथों को ऊपर उठाते हुए ही आगे की ओर झुकने की कोशिश करें। ध्यान रहे कि इस दौरान श्वासों को धीरे धीरे छोड़ना व लेना है। कमर से नीचे की ओर झुकते हुए हाथों को पैरों के बगल में ले आए। ध्यान रहे इस अवस्था में आने पर पैरों के घुटने मुड़े ना हो। फिर आता है अश्व संचालन। पद हस्त पदासन से सीधे उठते हुए श्वास लें और बाएं पैर को पीछे ले जाते हुए दाएं पैर को घुटने से मुड़ते हुए छाती के दाहिने हिस्से से सटाएं। हाथों को जमीन पर पूरे पंजों को फैलाकर रखें। ऊपर की ओर देखते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं। फिर आती है स्थिति दंडासन। गहरी सांस लेते हुए दाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं और शरीर को एक सीध में रखें और हाथों पर जोर देकर एक अवस्था में रहें। अष्टांग नमस्कार। फिर आता है अष्टांग नमस्कार। अब धीरे धीरे गहरी सांस लेते हुए घुटनों को जमीन से छुआएं और सांस को छोड़ें। पूरे शरीर पर ठोंडी छाती हाथ पैर को जमीन पर छुआएं और अपने कूल्हे के हिस्से को ऊपर की ओर उठाएं। फिर आता है भुजंगासन। कोहनी को कमर से सटाते हुए हाथों के पंजों के बल से छाती को ऊपर की ओर उठाएं। गर्दन को ऊपर की ओर उठाते हुए पीछे की ओर ले जाएं। फिर आता है अधोमुख शवासन। भुजंगासन से सीधे इस अवस्था में आएं। अधोमुख शवासन के चरण में कूल्हे को ऊपर की ओर उठाएं और लेकिन पैरों की एड़े जमीन पर टिकाकर रखें। शरीर को अपने वी के आकार में बनाएं। अश्व संचालन आसन। अब एक बार फिर से अश्व संचालन की मुद्रा में आएं, लेकिन ध्यान रहे कि अब की बार दाएं पैर को आगे रखें। फिर लौटने की स्थिति में पादहस्तासन करेंगे। अश्व संचालन मुद्रा से सामान्य स्थिति में वापस आने के बाद अब पादहस्तासन की मुद्रा में आएं। इसके लिए हाथों को ऊपर उठाएं और आगे झुकने की कोशिश करें। ध्यान रहे कि इस दौरान श्वासों को धीरे धीरे छोड़ना होता है। कमर से नीचे की ओर झुकते हुए हाथों को पैर के बगल में ले जाएं। ध्यान रहे इस अवस्था में आने पर पैरों के घुटने मुड़े ना हों। हस्त उत्तासन पाद हस्तासन की मुद्रा से सामान्य स्थिति में वापस आने के बाद हस्त उत्तासन की मुद्रा में वापस आ जाएं। इसके लिए हाथों को ऊपर की ओर उठाएं और पीछे की ओर थोड़ा झुकें। हाथों को पीछे ले जाते हुए शरीर को भी पीछे ले जाएं। और फिर आखिरी अवस्था आती है प्राणासन यानी कि प्रमाणासन। हस्त उत्तासन की मुद्रा से सामान्य स्थिति में वापस आने के बाद सूर्य की तरफ चेहरा एक बार फिर से प्राणासन की मुद्रा में लेकर के आए। तो इस तरीके से ये 12 आसनों का मंत्र और 12 आसन की मुद्राएं और विधि हमने आपसे बताई। इसी तरह दोस्तों हम इसके लाभ जानेंगे यानी सूर्य नमस्कार के असीम लाभ हैं।
जैसा कि प्रारंभिक अवस्था में हमने बताया कि इसके फायदे बहुत सारे होते हैं। कोई भी प्राणायाम आसन यदि आप नहीं कर रहे हैं, केवल सूर्य नमस्कार अगर आप कर रहे हैं, आपको इसका लाभ बहुत ज्यादा मिलता है। आइए अब हम जान लेते हैं सावधानियाँ। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि सूर्य नमस्कार गर्भावस्था की धारण की हुई महिलाएं जो हैं वह नहीं कर सकती हैं। मासिक धर्म में भी महिलाएं इस प्राणासन इस आसन को बिल्कुल भी ना करें। साथ ही साथ बुजुर्ग यदि उन्हें घुटनों में दर्द रहता है, रीढ़ की हड्डी में पेन है, तो इस आसन मुद्रा को आराम से करें। और साथ ही साथ हम जब हमारे साथ में योगा मैट होता है तो उसमें पैरों का जो सर्कुलर होता है, मांसपेशियां होती हैं, वह बहुत ही आरामदायक होती हैं। उसी स्थिति में हम यह आसन योग प्राणायाम करें तो हमें इसका जो लाभ है बहुत ही ज्यादा मिलता है। इस तरीके से सूर्य नमस्कार के बारे में आज हमने आपको बताया कि सूर्य नमस्कार अपने में एक बहुत ही विपरीत से विपरीत और संयुक्त से संयुक्त एक विशाल आसन है जिसका कोई तोड़ नहीं है। सिर्फ सूर्य नमस्कार एक ऐसा अपने में आसन है जिसको करने से हम संपूर्ण बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तो सारी चीजों को करने के साथ साथ हम कल एक नए आसन के साथ फिर मिलेंगे, लेकिन आज आपको हम सभी लोगों ने मिलकर के किया परिणाम सूर्य नमस्कार। इसका परिणाम अगर आपको देखना है तो नित सवेरे सूर्योदय से पहले आपको सूर्य नमस्कार की प्रक्रिया को दोहराना है और करना है। कल मिलेंगे एक नए शब्द एक नए आसन के साथ लेकर के। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। हेलो दोस्तों, मैं समता, योगा एक्सपर्ट, आपके सामने आज ला रही हूँ फिर से एक नया प्राणायाम व्यायाम और कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जैसा कि आपने पहले भी कई बार सुना है। दोस्तों, आजकल के युग में सबसे पहला जो मुख्य कार्य है वो है हम अपना ध्यान रखें और साथ साथ अपनों का भी हम पूर्ण रूप से ध्यान रखें। उसी श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं त्राटक प्राणायाम के बारे में। जैसे कि यह मुख्य प्राणायाम है और यह मुख्यतः आँखों से संबंधित प्राणायाम है। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि हर घर में एक जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक के सबके क्या कहते हैं चश्मे लगने शुरू हो गए हैं। उसका मुख्य कारण यही है दोस्तों, मोबाइल फोन्स, टीवी, लैपटॉप, या हम बहुत देर तक रात में जब मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसके कारण भी हमारी जो आँख की रोशनी है वो कम हो जाती है और आँखों से पानी आना, आँखों में जलन और बहुत सारी ऐसी आँख से संबंधित परेशानियाँ होती हैं। तो आज हम व्यायाम जो लेकर के आए हैं दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है त्राटक प्राणायाम और मुख्यतः यह आँखों का प्राणायाम है। त्राटक का अर्थ वैसे तो विशेषता एक साधारण लैंग्वेज में हम बोलेंगे जिसका अर्थ होता है टकटकी, और ऐसा माना जाता है कि जब हम किसी खास वस्तु पर अपनी निगाह टिकाते हैं तो शरीर को बिना हिलाए मन भी स्थिर हो जाता है। कुल मिलाकर यह इधर उधर भटकने वाले मन को शांत करके एकाग्र करने का सबसे अच्छा और सरल तरीका है, जो आपकी नकारात्मक सोच का मुकाबला करने वाले मस्तिष्क के काम करने वाले की क्षमता को हार तो करता ही है, साथ साथ हमें एक साथ एकाग्र होने की भी क्षमता बढ़ाता है। तो आइए दोस्तों हम त्राटक प्राणायाम की जो प्रक्रियाएं हैं वो सबसे पहले हम जान लेते हैं, विधि जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों त्राटक प्राणायाम करने के लिए हम सिद्धासन में कहीं पर भी आप स्वच्छ जगह पर चटाई बिछा करके, चद्दर बिछा करके हम बैठ जाएंगे। तत्पश्चात त्राटक
योग करने की जो सबसे एक सरल प्रक्रिया है जिसे हम अपने घर में आसानी से किसी भी जगह पर बैठ करके, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम बेड पे या हम कहीं पर भी, या जैसे सोफे पे, बेड पे, हम कहीं भी बैठ करके कर सकते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि हम ज़मीन पर ही बैठ करके इस प्राणायाम को कर सकते हैं। हम सोफे पे, बेड पे, कुर्सी पे, कहीं पर भी इस प्राणायाम को नियमित रूप से और आराम से हम बैठ करके कर सकते हैं, जिससे हमें और हमारे शरीर और हमारी आँखों को लाभ मिलेगा। तो आइए सबसे पहली प्रक्रिया हम जान लेते हैं। इस योग को करने के लिए सबसे पहली जो प्रक्रिया है दोस्तों, वह है मोमबत्ती जलाएं और इसे आँखों के सामने रखें, यानी आपकी आँखें जो हैं वो ना तो ऊपर होंगी आँखों की पुतलियाँ और ना ही नीचे होंगी, बिल्कुल आपको सीधे एक ही दिशा में इसको रखना है। थोड़ा सा अगर हम ऊपर रख लेंगे ज़मीन से, अगर हम बेड पे बैठे हैं तो किसी टेबल पे ऐसे स्थान बनाएं कि मोमबत्ती हमारे आँखों के बिल्कुल सामने आए और उसकी जो लौ है वो हमारे आँखों के बिल्कुल सामने ही रहे। जैसे हवा आती है और लौ थोड़ा बहुत हिलती ढुलती है, वैसे ही हमारी आँखें जो हैं, जो हमारी आँखों की पुतलियाँ हैं, वो उस लौ के ही आधार पर जो हमारा प्राणायाम है वह स्टार्ट होगा। हाथों को घुटनों पर रखकर आरामदायक ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे और शरीर को आराम देने के लिए धीरे धीरे सांस लेंगे। जैसे हम बिल्कुल तेजी से सांस नहीं ले सकते हैं, बहुत आराम से सांस लेंगे धीरे धीरे। और त्राटक प्राणायाम ही अपने आप में ऐसा मुख्य प्राणायाम है जिसे बहुत ही आरामदायक कहा गया है। उसके बाद इसकी जो दूसरी प्रक्रिया है वह है, जब आंखें बंद करें और कुछ सेकंड बाद धीरे धीरे आंखें खोलें और बिना पलक झपकाए मोमबत्ती की लौ को एक टक देखने की कोशिश करें। कैसे करना है, जैसे हमने मोमबत्ती जला ली और हम बिल्कुल हम ध्यान मुद्रा की स्थिति में बैठ चुके हैं, हमारी आंखें उस मोमबत्ती को देख रही हैं और लगातार देखती जा रही हैं। आप यह व्यायाम सबसे पहले आप टाइमर लगा लेंगे, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, सबसे कम का हम इसमें लगाएंगे टाइमर, जैसे सबसे पहले हम 1.5 मिनट का लगाएंगे। उसके बाद में आँखों की जो पुतलियाँ हैं वह बिना इधर उधर घुमाए, आँखों की जो पलके हैं उनको बिना नीचे ऊपर झपकाए सिर्फ एक टक हमें मोमबत्ती की ओर देखना है और देखते देखते एक टक देखते रहना है। आंखों पर बिना दबाव डाले जितना संभव हो सके उतना उस लौ को देखें और जरूरत पड़ने पर फिर से आंखें बंद कर दें। आंखें बंद करके अपना पूरा ध्यान भवों के केंद्र की ओर करें, यानी हमारी आईब्रोज के बीच में ध्यान होना चाहिए और इस अवस्था में मस्तिष्क में मोमबत्ती की लौ की कल्पना करें। आप इमेजिन करें हमारी जो ये मोमबत्ती हमने जलाई है वो हमारी कल्पना में है और उसी पर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और साथ ही साथ हमारी आंखों की नज़र सामने वाले किसी भी रंग कप पर पड़ सकती है। यदि हम मोमबत्ती को एक तक देखते रहेंगे दोस्तों तो आप कुछ टाइम के बाद देखेंगे कि हमें अनेका अनेक उसमें रंग उसमें हमको दिखाने लगेंगे, जैसे कभी लाल दिखने लगेगा, कभी पीला दिखने लगेगा। तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम त्राटक प्राणायाम कर रहे हैं और एक तक हम देख रहे हैं, तो हमारी आंखों की पुतलियां जो हैं बिना पलक झपकाए हम किसी भी एक चीज को केंद्रित होते अगर हम देखते हैं तो इसमें ऑटोमेटिक क्या होने लगता है कि उसकी जो लौ है वो हमारी आंखों में जाने लगती है, जिससे आपको लगेगा कि हमें अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब मस्तिष्क के भीतर उभरने वाली छवि गायब होने लगे, यानी जैसे मैंने अभी आगे बताया कि हम उस मोमबत्ती को अपनी भवों के बीच में बिल्कुल ध्यान एकत्रित करके देखेंगे, तो ध्यान रहेगा कि 3 से 4 मिनट, जब हमारा 2 से 2.5 मिनट हो गया है तो हमें लगेगा कि हम उसको बिल्कुल ध्यान से देखते हुए हमें ये महसूस होगा कि हम उसको देख रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं। और उसके बाद से जब हमें लगे कि हमारी आंखों से पानी गिरने लगे तो हम स्वतः आंखें धीरे धीरे बंद कर देंगे और आंखें बंद करने के बाद में हम
एकाग्रचित हो करके 30 से 30 सेकंड या एक मिनट बैठ करके हाथों की हथेलियों में घर्षण करके वो जो हमारी हथेलियाँ गर्म हो जाएंगी अपनी पुनः आँखों पे लगाएंगे और चेहरे पे लगा करके धीरे धीरे हम आँख को खोल सकते हैं। तो ये हुआ हमारा त्रैटक प्राणायाम करने की विधि। अब जान लेते हैं त्रैटक प्राणायाम से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें। तो दोस्तों, हमने त्रैटक प्राणायाम कैसे किया जाता है यह तो हमने जान लिया, पर इसकी विशेष कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें जानना भी जरूरी है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं त्रैटक प्राणायाम अभ्यास जो है वो हमें कब करना है और कितनी देर के लिए करना है। यदि हमारा खाली पेट होगा तो यह अभ्यास सुबह 5 से 6 के बीच में अधिक प्रभावकारी होता है, क्योंकि दोस्तों जब हम सो करके सुबह उठते हैं तो हमारी आंखों में आपने खुद देखा होगा एक अजीब प्रकार की एक जैसे लार आंखों में आ जाती है। जब हम उठते हैं अपनी आंखों को मसलते हैं उसके बाद हमारी आंखें जो हैं स्पष्ट रूप से देख पाती हैं। तो यदि इसको हम सुबह उठने के बाद ही अगर हम कर लेंगे तो हमारा इसका जो साथ में इसका प्रभाव है वो दोगुना हो जाएगा। आप रात में सोने से पहले भी इस योग का अभ्यास कर सकते हैं। जैसे यदि हम जैसे सोने जा रहे हैं तो हमें 5 मिनट पहले अपने जैसे हम बिल्कुल ये लगे कि हाँ बस अब हम सोने ही जा रहे हैं तो 5 मिनट पहले इस प्रक्रिया का आरंभ कर सकते हैं, और जैसे लगे कि हमारी यह प्रक्रिया पूर्ण हो रही है पूर्ण होने के बाद में हम आराम से सो सकते हैं। इसके बाद हमें यह ध्यान रखना है कि त्राटक योग का अभ्यास करते समय हमें महत्वपूर्ण इस बात की जानकारी करनी है कि कमरे में ना तो रोशनी से भरा हो और ना ही उसमें बहुत अंधेरा हो, मतलब मीडियम होनी चाहिए, ना तो बहुत रोशनी होनी चाहिए और ना ही बहुत ही अंधेरा होना चाहिए। प्रतिदिन दोस्तों 3 से 4 मिनट यह अभ्यास किया जा सकता है। इसकी जो समय अवधि है वो 10 से 15 मिनट तक भी हो सकती है, लेकिन हम स्टार्टिंग में इसको 2 से लेकर 5 मिनट के अंदर तक कर सकते हैं। नेत्र विकार बहुत सारे हो गए हैं आजकल, तो उस नेत्र विकार की जितनी भी समस्याएं हैं उन सब को खत्म करने के लिए यह त्राटक जो प्राणायाम है यह उपयुक्त बहुत है। तो आइए दोस्तों हम अब त्राटक प्राणायाम के इस योग के लाभ जान लेते हैं। सबसे पहला जो बिंदु है यह हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है, उसके बाद आंखों को शुद्ध करता है, और एक ही बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यह व्यायाम हमारी आंखों की मांसपेशियों को भी मजबूत करता है। जी हाँ दोस्तों, आंखों में भी हमारी मांसपेशियां होती हैं, और जब हम किसी चीज़ को एक तक देखते रहेंगे तो उस पर प्रेशर पड़ेगा, हल्का प्रेशर पड़ेगा, और इससे हमारी आंखों की जो भी मांसपेशियां हैं वह उनको मजबूती मिलेगी। इस योग के नियमित अभ्यास से निकट दृष्टि दोष ठीक होता है। हाँ दोस्तों, जिनको पास की रोशनी जिनको बहुत प्रॉब्लम होती है उनको यह जो है योग करना चाहिए, जिससे इस जो निकट दृष्टि दोष होता है वह ठीक होता है। त्राटक योग दृष्टि एकाग्रता स्मृति में सुधार तो करता ही है, इसलिए स्कूली बच्चों को यह योग का अभ्यास जरूर करना चाहिए। जैसा कि मैंने आगे बताया कि स्कूलिंग वाले बच्चों को आजकल चश्मे लग गए हैं, तो यह अभ्यास जो है यदि हम उसे बच्चों को हमेशा से अपनी निरंतर प्रतिक्रिया में इसको हम लाएंगे तो बहुत सारा हमें लाभ मिल सकता है। त्राटक योग के जरिए नींद से संबंधित विकार जैसे सिर दर्द, अनिद्रा व बुरे सपने आदि को भी ठीक कर सकता है। त्राटक योग का नियमित रूप से अभ्यास करने से बेचैन मन शांत होता है, जैसे हमारा किसी काम करने में मन न लगे और हमें एकाग्रता नहीं आती है, तो दोस्तों यह प्राणायाम करने से हमारा मन शांत होता है और हमें एकाग्रता आती है। यह विभिन्न प्रकार की मानसिक, व्यवहारिक और भावात्मक बीमारियों को भी दूर करने में मदद करता है। त्राटक योग से आपका आत्मविश्वास, धैर्य, इच्छा शक्ति तो बढ़ती ही है, साथ में हमको जीवन जीने की एक नई शैली भी प्राप्त होती है। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, सुना आप लोगों ने आज कि हमने आज त्राटक योग के बारे में इतनी ढेर सारी जानकारी ली,
और हमें उम्मीद है कि त्राटक योग जो है आप अपनी नियमित योगशाला में आकर के आप इसे नियमित रूप से अपनाएंगे और अपने जीवन में इसको ज़रूर से ज़रूर लाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने त्राटक प्राणायाम के बारे में बात करने के साथ साथ हमें बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ मिली। मैं आशा करती हूँ आज का सेक्शन भी आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, करें योग, रहें निरोग। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी समता योगा एक्सपर्ट योग की योग पाठशाला में आपका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप अपना ध्यान खूब सारा रखते होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नए प्राणायाम के रूप में कुछ ऐसी बातें।

नमस्कार आदरणीय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं पहली किरण, वो किरण जो सिर्फ सूरज की नहीं बल्कि उम्मीद, विश्वास और ईश्वर से जुड़ाव भी है। सुबह की इस पवित्र बेला में जब हवा में शांति है और मन अभी भी कल की भागदौड़ से दूर है, तो आइए कुछ पल अपने आराध्य को समर्पित करें। पूजा तभी फलीभूत होती है जब उसमें प्रत्येक विधि विधान का पालन किया जाए। इसलिए आज का जो एपिसोड होगा वो आपकी अपनी आरजी आकांक्षा पूरी तरह से आरती पर केंद्रित करेगी। आरती, आरती वो है जब हम पूरी पूजा करने के उपरांत दो पल ईश्वर को गीत, लय, ताल सभी के द्वारा वंदन समर्पित करते हैं। और कहा भी जाता है कि अगर आपने मात्र आरती पूरे मन से कर ली तो समझ लीजिए ईश्वर की पूरी पूजा आपने पूरी कर ली। तो चलिए इसी क्रम में आज की सबसे पहली वंदना, सबसे पहली आरती जो हर पूजा में सर्वप्रथम की जाती है, किसकी? प्रथम पूज्य श्री गणेश की। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा, निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अर्थात हे भव्य शरीर, वक्र सुंड, सूर्य की चमक वाले गणेश जी, मेरे सारे कर्मों को विघ्नों से सदैव मुक्त करते रहना। इस मंत्र का जप अति उत्तम माना गया है। साथ ही गणपति की आरती आइए मिलकर करें।

श्रोताओं, आरती केवल दीपक घुमाना नहीं, आरती है अहंकार का अंधकार हटाना, मतलब मन के मंदिर में श्रद्धा का दीप जलाना। जब हम आरती करते हैं तो हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं, ऐसा नहीं है, हम कुछ नहीं मांगते बल्कि खुद को उनके श्री चरणों में अर्पित कर देते हैं। दीप जले तो भीतर के मन में भी एक उजाला सा हो जाता है, मन की हर नकारात्मकता दूर हो जाती है। तो चलिए इसी भाव से माँ लक्ष्मी की आराधना इस आरती के माध्यम से करते हैं। उससे पहले माँ लक्ष्मी का ये सबसे प्रचलित मंत्र ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए यदि विधिवत माता लक्ष्मी का नित्य पूजन किया जाए तो जातक के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में धन संपदा बनी रहती है। आइए माँ को मनाते हैं माँ की आरती से।

मित्रों, वैसे तो हम अपनी पसंद से कोई भी आरती का चुनाव कर सकते हैं, और एक आरती है जो कि सार्वभौमिक है, जिसके बोल हैं, आरती कीजिए प्रभु की, मन मंदिर में दीप जले, दुख दरिद्र सब दूर हो, जीवन पथ पर सुख फले। तो ये आरती जो सभी धर्मों के लिए एकदम उपयुक्त है। इसके अलावा आरती हमें ये सिखाती है कि अगर मन सच्चा हो तो हर सांस भी प्रार्थना बन जाती है। आज का दिन किसी से शिकायत नहीं करना, किसी के लिए दुआ बनने का दिन हो जाए, ऐसी भावना के साथ में हमें आज का दिन बिताना है। लेकिन उससे पहले, घर में हो या सफर में, काम पर हो या अकेले, बस मन से एक दीप जला लीजिएगा। किसके लिए? ईश्वर के लिए, जो कि हर जगह व्याप्त है। चलिए तो उन्हीं ईश्वर की वंदना करते हैं, उनके श्री चरणों की ओर फिर से बढ़ते हैं। और इस बार हम आरती में चयन करके लाए हुए हैं श्री जगदीश्वर यानी जगत पिता श्री विष्णु जी की आरती। उससे पहले ये मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कितनी मधुरता है और कितनी मिठास है इस प्यारे से मंत्र में। अर्थात, मैं भगवान वासुदेव को नमन करती हूँ। ये मंत्र महर्षि नारद के मुख से उत्पन्न माना जाता है। इस मंत्र का जाप करने से मन मस्तिष्क शुद्ध होते हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, करते हैं ना श्री हरि की आरती।

हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9289176, 9260981976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816 9817 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। अरे सुना
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
3: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: बस इतनी सी सिंपल सी बात कि भाई ये प्यार कैसे होता है, ऑब्वियस सी बात है यार, इसमें करना ही क्या है, ज़रा सा आंखें खोलना है और हल्की सी अंगड़ाई लेते हुए आज की इस बारिश को एंजॉय करना है। जी हाँ, आज एक बार वापस से शुरुआत जो है वो बारिश से हो रही है। सो आप सभी को आज की पहली पहली, आज की पहली पहली बारिश बहुत बहुत मुबारक। और साथ ही साथ अब चूंकि बारिश भी है, सितंबर भी है, मॉर्निंग वाला शो भी है, सो मॉर्निंग वाली वाइब तो होना बनता है बॉस। तो चलिए अब बताते हैं कि आज का थॉट ऑफ द डे क्या है आपके मॉर्निंग स्पेशल का, सिर्फ और सिर्फ आपके गुड मॉर्निंग गुंडा शो में विद योर मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।
1: Now you're listening. Good morning, Koda. With your favorite, Aajya Khan. Aajya Khan.

हाँ जी, इतनी गहमा गहमी और इन सारी चीज़ों के बाद जो है वो वापस से आ गए हैं आपके मॉर्निंग जॉक का आरजे अदनान, और अब हम लोग बढ़ने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ। लेकिन उससे पहले कुछ तो बात कहेंगे। यस, ऑफ कोर्स, जो बात हमेशा आपसे कहते हैं, हर बार हो सकता हो कहने से लगता हो कि यार हम एक ही बात कहते हैं, लेकिन दरअसल बात ये कभी पुरानी होती नहीं है। हर रोज़ सुबह को उठ करके देखना, उसको निहारना, उसको समझना, ये अपने आप में एक नयापन लेके आता है और रोज़ लेके आता है। क्योंकि अगर आप गौर से देखेंगे तो कभी भी आपको बादल सेम नहीं नज़र आएगा। सो कुदरत जो है वो हर पल चेंज हुआ करती है, बिल्कुल जो हमारे ज़िंदगी में मिला वक्त है उसी की तरह चला ही करती है और चलती रहती है उसी तरह जैसे हमारा वक्त चलता है। तो क्यों ना इस बदलते हुए वक्त को हर रोज़ थोड़ा सा ही सही, लेकिन कुछ हिस्सा अपने पास रख ही लेना चाहिए, है ना। यस, मॉर्निंग जब उठिएगा आज, अभी तो मुझे लग रहा है कि आप लेटे सुन रहे हैं। नहीं जी, मजाक कर रहे हैं, अब तक तो आप उठ ही जाते हैं आराम से। सो इन सभी बातों के मद्देनज़र रखते हुए जब भी आप उठिएगा तो थोड़ा सा ज़रूर आसमान अपने हिस्से का आज आप ले लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत खुश नसीबों को मिलता है। जी हाँ, वजह बाकी लोग जान ही नहीं पाते और मैंने बता दिया आपसे। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ और बताते हैं कि क्या है थॉट ऑफ द डे। दरअसल आज का थॉट ऑफ द डे कहता है कि हम अपने चारों तरफ जो दीवारें बनाते हैं दुख को दूर रखने के लिए, वो खुशी को भी दूर रखती है। बहुत बड़ी बात है, जरा गौर से समझिएगा। हम अपने चारों तरफ जो दीवारें बनाते हैं दुख को दूर रखने के लिए, वो खुशी को भी दूर रखती है। और ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि हम सोचते हैं कि भाई हम जब किसी से मिलेंगे नहीं, हम जब कोई काम करेंगे नहीं, हम जब कोई शुरुआत करेंगे नहीं, तो हमको फेल होने का डर ही नहीं होगा। बात तो सही है भाई, जब कुछ करेंगे नहीं तो फेल कहाँ होंगे, तो फिर क्या होगा? तो फिर नया कुछ नहीं करेंगे, उससे क्या होगा? कोई डर नहीं होगा। फिर तो सही है। लेकिन एक सेकेंड, अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं और कुछ करने वाली लाइफ मिली है तो क्या ये चल पाएगा? बिल्कुल नहीं। सो फिर क्या करना है? यस, सो हम जो दीवारें बना रहे हैं ताकि हम लोगों से मिलना छोड़ रहे हैं, लोगों पे यकीन करना छोड़ रहे हैं, उसके बदले जो हमको फीलिंग्स मिलने वाली थी, जो हम जो कुछ महसूस करने वाले थे खुद से ही, किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करते वक्त जब हम किसी नई चीज़ को देखते हैं तो देखिए कुछ नए नए थॉट्स आते हैं मन में और कुछ पुराने थॉट्स से हम कनेक्ट करते हैं उस नए थॉट को। सो कुछ नया ही एक्सपीरियंस बन के आता है, कुछ नया सा फील बन के आता है। और हमारी लाइफ में हमको बहुत कुछ तो याद ना हो, लेकिन अगर हम इस तरह की चीज़ों को देखे हुए होते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, हमने भी काफ़ी कुछ देखा है, काफ़ी कुछ फील किया है। क्यों? क्योंकि वो अंदर से सेंस आता है, उसे कोई अलग से बताता नहीं है। इसीलिए आज का थॉट ऑफ द डे कह रहा है कि भाई जो एक खोल, जो एक शेल, जो एक दीवार हमने बना ली है ना दुखों को दूर करने के लिए, बैरियर्स जो लगा लिए हैं, उसकी वजह से हम उस चीज़ को नहीं फील कर पा रहे हैं, उन चीज़ों से महरूम रह जा रहे हैं जो हम कभी फील कर सकते थे। अगर हमने बैरियर बना लिया कि भाई हमको बहुत सारा वक्त बता करके सिर्फ और सिर्फ काम करना है तो हम बहुत सारा वक्त बचा लेंगे, लेकिन उसके बाद जो रिश्तों को फील कर सकते थे, जो खुला आसमां देख सकते थे, जो किसी गाने को सुन करके महसूस कर सकते थे, जो कहीं दो पेजेस पढ़ने के बाद अपनी सी कहानी लग सकती थी, वो सब कुछ हम मिस कर देंगे। और इतनी बड़ी चीज़ों को मुझे नहीं लगता है कि हमारी समझदारी होगी मिस करना। यस, क्योंकि आज का थॉट यही कहता है कि जो दुखों से बचाने के लिए हम खुद को तैयारी कहते हैं इस तरह करना, ये समझदारी की बात तो नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई जब कुछ नया नहीं करेंगे, कुछ गलतियां नहीं होंगी, तो हम उन चीज़ों को समझ कैसे पाएंगे? ये तो वही वाली बात है कि हम
शुरू भी नहीं हुए और हमने बैठे बैठे कह दिया कि आगे तो कुछ है भी नहीं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो आगे जाकर देखने वाले के लिए ही 100% सही होगा कि वो बताए कि उसके लिए आगे क्या है, क्योंकि ये जहाँ कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे आके ख़त्म हो जाता हो, ये तो गोल गोल घुमाता है, फिर भी हम इसको क्रॉस नहीं कर पाते। तो चलिए, मुझे लगता है कि आज की बात से हमें उन बैरियर्स के बारे में सोचना चाहिए जो हमने बना के रखा है दुखों को दूर करने के लिए, जिसमें हम शायद लोगों पे कम यकीन कर पा रहे हैं, जिसमें हम शायद रिश्तों को कम प्रायोरिटी देकर के काम ही काम को प्रायोरिटी ज़्यादा ही देने लग गए हैं, जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ों का डर आ गया है कि हटाओ, ऐसा करेंगे नहीं तो फिर डर ही ख़त्म हो जाएगा। तो शायद उन बैरियर्स को हटाना है, उन दीवारों को गिराना है और हर वो कुछ महसूस किया करना है जो कुछ कुदरत ने हमारे लिए इस जहां में रखा हुआ है। जो हमको फील हो सकता है वो तो फील करना ही करना है। यही कहना है आज के थॉट ऑफ द डे का। इतना सही संदेश है आज के थॉट ऑफ द डे का। सो अपने चारों तरफ जो दीवारें हम बना लेते हैं दुख को दूर रखने के लिए, वो हमको खुशी को भी दूर रखती है। ये बस इतनी सी बात थी लेकिन बहुत ही अहम बात थी, इसलिए ये आज के थॉट ऑफ द डे के रूप में आप तक आया। और आज है ट्यूसडे मॉर्निंग स्पेशल शो। यस, सुबह आपको भाई आज का थॉट कैसा लग रहा है ये हमको आप कमेंट करके फटाफट से बता सकते हैं। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गुड मॉर्निंग गुंडा शो अपने रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर। क्यों? क्योंकि यही तो है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन।

0: मुझे लगता है कि अब तक तो आपने उन दीवारों के बारे में सोच लिया होगा जो गिराने का सोच रहे हैं आप। कौन सी दीवार? अरे भाई, वही दीवार जो हमने दुखों को बचाने के लिए रखी है, लेकिन उससे हमारे सुख भी अंदर नहीं आ पा रहे हैं। ऐसी कई सारी चीज़ों को देखा होगा ना कि अगर एक चीज़ हम बचाने के लिए जाते हैं तो बाकी चीज़ों को भी हम बंद कर देते हैं। बिल्कुल वैसी जैसे हम सेफ्टी के नाम पर अब घर बंद कर देते हैं तो हवा भी नहीं मिल पाती और वो खुली जो आसमान से आने वाली रोशनी है वो भी नहीं आ पाती है और कैद हो जाते हैं हम ऐसे ही कपड़ों में। फिलहाल वक्त हो गया है आपके मैसेजेस जो भेजते हैं आप 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से सुनते हुए चैट पर, उसको देखने का टाइम है क्योंकि आप हमको ट्यून करते हैं फ्रीक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से और साथ ही साथ रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से। सो इसी एप्लीकेशन पे आप जो कुछ लिखते हैं वो हम तक भी पहुँच ही जाता है। सो अभी क्या कुछ लिखा है आपने मॉर्निंग वाले शो को लेकर के, मॉर्निंग विशेस को लेकर के और आज के थॉट ऑफ द डे को लेकर, आइए बताते हैं आपको आपके मॉर्निंग चौकार चरना।
1: Now you're listening Good Morning Kota with your favorite RJ Khan.

हाँ जी, तो जो सबसे पहला मैसेज आया है मॉर्निंग वाले शो में वो सोनिया तिवारी का आया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका स्वागत है, वेलकम है सोनिया मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। सनी पांडे आपको भी राधे राधे, आपको भी अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। हमारी सविता जी लिखती हैं हरखापुर गोंडा

से सुप्रभात, सभी को सुप्रभात, आपको भी। महेंद्र देपन है फ्रॉम राजस्थान से, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू। लिखते हैं अदनान सर जी और सभी श्रोताओं को सादर नमस्कार। रेडियो सिर्फ आवाज़ नहीं, भावनाओं को जोड़ने वाला एक खूबसूरत सा रिश्ता है। आपकी आवाज़ और अपनापन इस रिश्ते को और भी ख़ास बना देता है। आज ही मेरा जो अपनापन है और मेरी आवाज़ इस रिश्ते को ख़ास ज़रूर बनाती है, लेकिन आपकी मोहब्बत इस रिश्ते का बेस बनती है, सो वो हमेशा जारी रहनी चाहिए। तो चलिए भाई, आज बहुत सारी बातें होने वाली हैं, क्योंकि आज है ट्यूज़डे और ट्यूज़डे को हम कई सारी बातों का पिटारा लेकर चले आते हैं, जो आपके काम की भी होती है, आपको गुदगुदा भी जाती है और समटाइम्स आप सोचने पर भी मजबूर हो जाते हैं। सो इन सभी के बीच में हम ये कैसे भूल सकते हैं कि हम जिस म्यूज़िक में टेस्ट रखते हैं, वो म्यूज़िक जो है न जाने कितनी ज़्यादा खूबसूरती से बनाई जाती है। तो चलिए, ऐसी एक बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया ये गीत आपके लिए, आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में आप मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान ले आए हैं।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: भैया 4 घंटे में तो बहुत कुछ हम ऑफकोर्स एंटरटेन कर लेते हैं खुद से, लेकिन फिलहाल इसी 4 सितंबर 2026 को ही आई है मिर्ज़ापुर, और मिर्ज़ापुर के बाद एक बार वापस से इसके पुराने जो मूवीज़ के सीन्स थे वेब सीरीज़ के, वो काफ़ी ज़्यादा वायरल होने लगे हैं। सो एक कैरेक्टर ऐसा है जिसका नाम सभी ने सुना है और जिसको कहीं ना कहीं जब मिर्ज़ापुर जैसी सीरीज़ या मूवीज़ की बात आती है तो वो कैरेक्टर सबसे पहले नाम आता है जहन में। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं किस कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ मिर्ज़ापुर के, जिनके नाम में थोड़ा सा शालीनता झलकती है और जिनके नाम में ऐसा लगता है जैसे हैंडीक्राफ्ट हुआ है। आप तो आपने पक्का अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हम किसको कहना चाह रहे हैं। हम दरअसल बता रहे हैं कालीन भैया के बारे में। जी हाँ, सो कालीन जो है, कालीन भैया का भौकाल हर कोई जानता है इस मूवी के ज़रिए, सभी ने देखा है। लेकिन आपको हम बता दें कि ये शहर कभी पूरे एशिया का कालीन कैपिटल था। यकीन नहीं आता ना, कहाँ कालीन, कहाँ कालीन भैया, कहाँ कालीन कैपिटल, राइट? चलिए हम बता दें पूरी बात दरअसल क्या है।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan.

दरअसल मूवी जो है वो 2026 सभी 4 सितंबर को ही रिलीज हुई है, 4 दिन पहले। लेकिन ये जो बात हम बताने वाले हैं ये 4 दिन पुरानी नहीं है, ये 500 साल पुरानी बात है। अब आप सोचेंगे 500 साल पुरानी बात का आज के 4 दिन पहले वाली फिल्म से क्या लेना देना। दरअसल बात ये कि 500 साल पहले अकबर ने ईरान से जो माहिर बुनकर हैं उनको बुलाया था, पर रास्ते में डाकुओं ने उन्हें लूट लिया था। सो जान बचाकर मिर्ज़ापुर के गांव में पहुंचे इन कारीगरों ने यहीं के लोगों को कालीन बुनना सिखा दिया था। यानी जब वो उन पर डाका डला तो वो कारीगर जो हैं वो जान बचाकर के मिर्ज़ापुर के गांव में पहुंच गए थे, और इन्हीं कारीगरों ने यहीं के जो लोग थे लोकल के मिर्ज़ापुर के, उन लोगों को कालीन बुनना सिखा दिया था। सो सदियों तक ये काम गांव तक ही महदूद था, लिमिटेड था, सीमित था। फिर 1920 में अंग्रेज़ों ने मिर्ज़ापुर के जो स्थानीय बुनकर हैं उनके साथ हाथ मिला करके ओबीटी कंपनी की नींव रखी। इसके बाद ये छोटा सा काम एक बहुत बड़ा उद्योग बन गया और ये पूरा इलाका एशिया का सबसे बड़ा कालीन का हब बन गया। दरअसल यहाँ एक कालीन बनने में कई महीने लग जाते हैं। कारीगर सिर्फ एक इंच में 100 से 400 बारीक गांठे और अपने हाथों से बांधते हैं। इसी हुनर के दम पर नई संसद भवन से लेकर के दुनिया भर के महलों तक मिर्ज़ापुर के ही कालीन अगर आप देखेंगे तो बिछे हुए हैं। एक वक्त ऐसा भी आया था जब भारत से विदेशों में बिकने वाले 60% कालीन अकेले इसी इलाके से जाते थे। सो नई संसद भवन से लेकर दुनिया भर के बड़े बड़े महलों के फर्श पर आज भी मिर्ज़ापुर के ही कालीन बिछे हैं। फिर बाजार में चीन और तुर्की की सस्ती मशीनी कालीन भी आई। दिन रात पसीना बहाने के बाद जब भी बुनकरों को सही पैसा नहीं मिला तो लोगों की हिम्मत टूटने लगी और नई पीढ़ी ने करघों से किनारा कर लिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। सरकारी मदद और ODOP ने इस काम को नई जिंदगी दी, और सबसे अच्छी बात यह कि आज मिर्ज़ापुर की सैकड़ों महिलाएं खुद करघा संभाल कर कहीं ना कहीं कालीन बना रही हैं और इस 500 साल पुरानी विरासत को जिंदा रखे हुए हैं। सो अगली बार जब भी कालीन भैया या गुड्डू भैया का जिक्र हो तो इन शानदार कारीगरों के हाथों की कला को भी जरूर याद रखिएगा, है ना। सो फिलहाल क्या आपको मिर्ज़ापुर की इस खूबसूरत कला के बारे में पता था? मिर्ज़ापुर मूवी की बात नहीं कर रहा, डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, ज़िले की। क्या आपको इस मिर्ज़ापुर की खूबसूरत आर्ट के बारे में पहले से पता था या नहीं पता था, यह आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर ये आपके लिए नया रहा होगा तो आपको ज़रूर सुन करके बहुत अच्छा लगा होगा और आप सोच रहे होंगे वाह क्या बात है ना। सो यस, ये आर्ट की कहानी थी और मुझे लगा आप तक आनी ही चाहिए, क्योंकि बहुत खुशी होती है जब हम ऐसी चीज़ों को ज़िंदा होते हुए देखते हैं, इतनी पुरानी पुरानी आर्ट्स को, तो बहुत अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं एक जुड़ाव सा महसूस होता है जो आर्ट्स हाथ के ज़रिए बनी होती है, जो मेहनत से बनती है। मशीनों से तो बहुत कुछ बन जाता है, लेकिन जो फील है, जो वाइब है, जो एहसासात हैं, वो तो हाथ से ही बनी चीज़ों में आते हैं। अब कई बार देखा होगा कि किसी को कोई नॉर्मल सा तोहफा दे दीजिए और कई बार उससे भी नॉर्मल कुछ आप लिख करके अपने हैंड रिटन नोट में दे दीजिए, फिर देखिए दिखता है वो एफर्ट, फील होता है वो सब कुछ। यस, फिलहाल इस फील में तो हम ज़रूर खो गए होंगे, हमको बहुत सारे ऐसे तोहफे मिले होंगे जिसने सच में ये याद दिला दिया होगा जो हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन दरअसल अगर आपको सच में नहीं पता था मिर्ज़ापुर की इस खूबसूरत आर्ट के बारे में, तो आई होप आज आपके लिए एक वैल्यू ऐड हो गई होगी मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट के लिए आपके दिल में, राइट?

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। अब कैसा भी मूड, हर सॉन्ग डूड को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6।

हाँ जी भाई, और इतने खूबसूरत से गाने के बाद आप क्यों ना एकदम हाई वाले मूड में चले जाइए। यस, एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो को होस्ट करने वाले मॉर्निंग जॉक कार्यनान आप तक आ गए हैं। और देखिए ना कितना खूबसूरत सा गाना था और ज़बरदस्त भाई साहब, मज़ा आ गया। मतलब ऐसे गाने जो हैं ऐसे नोट्स के साथ सुनना ऐसा लगता है सुबह को बना देता है। वैसे आपको क्या लगता है, आपके साथ भी ऐसे ही होता है? मेरे साथ तो फिलहाल ऐसे ही होता है कि कहीं ना कहीं जब ऐसे कोई हाई नोट के सॉन्ग सुन लो तो ऐसा लगता है अरे भैया बस, बस बस बस बस बस बहुत ज़्यादा हमने तो सोच लिया है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिलहाल चूंकि बातचीत हमने कहा था आज काफ़ी सारी होने वाली है, सो जो हम वादा करते हैं वो निभाने की पूरी पूरी कोशिश तो एटलीस्ट रहती रहती है। सो अभी क्या होने वाला है, अभी है बहुत बातों के पिटारे में बहुत कुछ जो आपसे कहना है और जो आपसे जानना है। सो फिलहाल चूंकि हम मॉर्निंग का टाइम अक्सर साथ में बिताते हैं तो हमें मॉर्निंग से जुड़ी हुई चीज़ें बहुत सारी ध्यान आती है। सो फिलहाल अब आपको बताने वाले हैं सुबह उठते ही नाश्ता करना ज़रूरी है या नहीं, है ना। सो किस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए, वैसे मैंने इस पर कई बार आपसे चर्चा भी की है, बताया भी है, लेकिन मुझे लगता है ये थोड़ा सा सही से जानना ज़रूरी होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि भाई सुबह उठने के बाद एक गिलास सादा या गुनगुना पानी लेना या रात भर बॉडी को हाइड्रेट करने में भी मदद करता है। इसके अलावा फौरन भारी नाश्ता करने से बताया था कि भाई भारी अगर हम नाश्ता करते हैं या बहुत ज़्यादा ऐसा तला भुना सुबह सुबह खाते हैं तो इससे एक्स्ट्रा जो है वो प्रेशर क्रिएट होता है और अपने बॉडी के हंगर सिग्नल को भी समझना होता है कि कब सच में भूख लगी और कब हमें बस यूं ही मंचिंग करने का मन है। और इसके अलावा हर किसी की चूंकि बॉडी का टाइप जो है वो काफ़ी अलग अलग होता है तो भूख की ज़रूरत भी सबकी अलग अलग होती है। और अगर भूख लगती भी है तो बहुत हल्का सा जो मेवे आते हैं वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होते हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि भाई ओट्स, दलिया, पोहा, उपमा, मूंग दाल, चीला, उबले अंडे, अंकुरित अनाज जो है ये सब में से अगर कुछ भी ऐसा खाते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी हेल्दी ऑप्शन होता है। जबकि उठते ही चाय पीना जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो जाता है। जी हाँ, उठते ही चाय पीना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। सो आई होप कि इन बातों का ख़ास ख्याल रखेंगे और कहीं ना कहीं अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ ज़रूर बढ़ रहे होंगे। फिलहाल एक ऐसे शख्स और शख्सियत के बारे में बताने वाले हैं जो बच्चे स्कूल तक नहीं जा सकते, वो उनके घर के अंदर ही स्कूल ले जाते हैं। जी हाँ, दीवारों को ब्लैक बोर्ड, सड़कों को क्लासरूम बना करके 10,000 बच्चों को जो है वो एजुकेट कर चुके हैं। कहाँ के मास्टर? रास्ते के मास्टर। अब ये है कौन रास्ते के मास्टर, चलिए ये तो हम बताएंगे। इस म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस से आते हैं तो बताते हैं कि आखिर ये रास्ते वाले जो मास्टर साहब हैं ये कौन है और आखिर ऐसा क्या है जो इनका नाम पड़ गया है रास्ते के मास्टर।

0: मास्टर, जुबान पर लगाम लियो लगाई।
1: आगे के हम सुनाई?
2: हाँ हाँ हाँ सुनाओ बेटा।
1: बी से चंटू ज्यादा पुलियो तो ठीक ना खाई, और फिर सी से तोहार आता होई सुताई, आता होई सुताई, आता ना होई सुताई, क्योंकि बाद डी से तू गदावन ढेचो ढेचो

0: तो वादे के हिसाब से मुझे आपको ले चलना है रास्ते के मास्टर्स आपके पास में, जिनके बारे में हमने बस इतना बताया था कि भाई जो बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते वो स्कूल लेकर खुद ही बच्चे के घर तक पहुंच जाते हैं, दीवारों को ब्लैक बोर्ड और सड़कों को क्लासरूम बना करके 10,000 बच्चों को जो है वो एजुकेट कर चुके हैं रास्ते के मास्टर। तो आखिर ये रास्ते के मास्टर हैं कौन और आखिर इनका ये वाला नाम क्यों पड़ा, आइए बताते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Ajay Khan.

तो आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव के रहने वाले 38 साल के दीप नारायण नायक की सड़क पाठशाला की बदौलत में दूर दराज के गांव के 10,000 से ज़्यादा बच्चों को एजुकेशन मिल चुकी है, और इसी वजह से आज लोग इन्हें रास्ते का मास्टर के नाम से जानते हैं। जाहिर है, दीप खुद बिना बिजली के एक कच्चे मकान में पले बढ़े, बचपन में गरीबी देखा, और इनके फिदा जो फादर थे वो सुबह मजदूरी और रात को चौकीदारी करके 9 लोगों का परिवार चलाते थे। सो आर्थिक मुश्किलें बढ़ीं तो इनकी 4 बहनों की पढ़ाई छुड़वा दी गई। फिर क्या था, सब भाई बहनों में वही थे जिन्होंने स्कूल पूरा किया, लेकिन जल्द से जल्द कमाई का जरिया ढूंढना था, तो बीएससी के बाद टीचर ट्रेनिंग करके प्राइमरी स्कूल टीचर बन गए। एक दिन सरकारी स्कूल में आने वाले गरीब बच्चों को देख उन्होंने अपना बचपन याद आया कि कैसे उनकी बहनों को एजुकेशन का मौका और उन्हें कभी नई यूनिफॉर्म या किताबें नसीब ही नहीं हुई। सो भले ही वो तब अपनी बहनों के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अब अगली पीढ़ी को सशक्त बनाने की ठान ली है। तो सिर्फ 2 बच्चों के साथ इन्होंने अपनी पहल की शुरुआत की थी। घरों की दीवारों को ब्लैकबोर्ड और गांव की सड़कों को क्लासरूम में बदल करके दीप ने एक साथ सैकड़ों बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। सो जमुरिया ज़िले से शुरू हुई उनकी ये मुहिम जल्द ही बंगाल, झारखंड और बांग्लादेश तक पहुंच गई, और लोग उनको रास्ते का मास्टर के नाम से पहचानने लगे। सो अब तक 10,000 से ज़्यादा बच्चों को एजुकेट कर चुके हैं, जिनमें से कई बच्चे आज गांव से निकल करके बड़े शहरों में अपने सपने को पूरा कर रहे हैं। तो एजुकेशन के अलावा वो ये भी ध्यान देते हैं कि बच्चों को प्रॉपर खाना मिले और लड़कियों की जो ज़िंदगी है वो बेहतर हो, इसके सारे खर्चे ये खुद ही उठाते हैं। सो दीप नारायण जैसे टीचर हैं जो एजुकेशन की लौ से हज़ारों लाखों बच्चों की ज़िंदगी में फैला कर जो अंधकार था वो उसको दूर कर रहे हैं, और आज की यंग जनरेशन को मजबूत बना करके देश में तरक्की का सच्चा योगदान सच में दे रहे हैं। और ये स्टोरी रियल लाइफ स्टोरी है दीप नारायण, जो कि एक प्राइमरी टीचर हैं, और जैसा कि मैंने बताया आपको, ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, और आज जो है ये रास्ते में ही सड़कों को क्लासरूम बना करके और दीवारों को ब्लैकबोर्ड बना करके बच्चों को पढ़ा चुके हैं। और इतने सारे बच्चे, मतलब यकीन कर पाना भी मुश्किल होता है कि भाई कोई 10,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा करके एजुकेट कर चुका, और वो आज अपने अपनी राहों पर निकल करके अपने सपनों को पूरा करने के लिए निकल गया। सो भाई, कैसी लगी आपको दीप की कहानी, यानी दीप नारायण की कहानी, जो आज इतना बड़ा योगदान अकेले ही कर रहे हैं, है ना? तो ये हैं हमारे रियल लाइफ के हीरो, क्योंकि हम जो है अपने शो में ऐसे रियल हीरोज़ को ज़रूर याद करते हैं जो रियल लाइफ के हैं। फिलहाल दीप की ये रियल स्टोरी सुनने के बाद आपके थॉट्स क्या हैं, आपका क्या रिएक्शन है, चैट बॉक्स पर आकर के बता सकते हैं।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेख बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
5: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
5: आज ही कॉल करें 9281 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
5: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: कि राता लंबिया लंबिया रे भाई। और वैसे तो आजकल राता लंबिया होती नहीं है, मतलब ऐसे सो झट से और फट से उड़ जाओ, ऐसा लगता ही नहीं कि रात आए भी। ये मेरे ही साथ है या आपके साथ भी ऐसा कुछ लगता है? अगर आपके साथ भी है तो आप भी अपनी शिकायत दर्ज कहाँ करा सकते, कहीं नहीं करा सकते भाई। मैं खुद अभी तक कहीं अपनी कोई शिकायत ये दर्ज नहीं करा पाया हूँ कि ये रात आखिर इतनी तेज़ी से कैसे निकल जाती है। ये सच में सोचने वाली बात है कि भाई रात आती नहीं है कि उससे पहले ही निकल जाती है। जब तक समझो समझो कि अच्छा रात है, सोना है, तब तक ले जा चुकी होती है। सो मुझे तो लगा था कि वैसे ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे ही साथ है, बट आप लोगों के बारे में सोच के ऐसा लग रहा कि नहीं, ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, मे बी ये आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। खैर ये तो आप जब बताएंगे तभी हम समझ पाएंगे। अब हम खुद से कैसे अंदाज़ा लगा लें कि हाँ ये आपकी प्रॉब्लम भी है, राइट? सो आप बताइए ना कि आपके साथ भी क्या ऐसे ही होता है क्या कि आप भी सोचते रह जाते हैं और वक्त निकल जाता है, उसके बाद आपको अचानक से पता चलता है अरे रात तो गुजर गई। चलिए, ये भले ही पता हो या ना हो मुझे, लेकिन ये ज़रूर पता है कि जो फ़िलहाल वैकेंसी आई है बैंक ऑफ बड़ौदा में, स्पेशली फीमेल्स को वरीयता है, यानी कि जो महिला कैंडिडेट्स हैं उनको वरीयता दी जाएगी, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। सो ये वैकेंसी आखिर BOB में किस चीज़ की है, कितनी है और क्या है, इसके बारे में सारी जानकारी आई हम आपको मुहैया कराते हैं आपके अपने मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में, आप ही के मॉर्निंग जॉक RJ अदनान।
1: Now you're listening Good Morning Gonda with your favorite RJ अदनान।

हाँ जी, फिलहाल आपको हम बताते चले भाई कि 2049 फिलहाल पदों पर भर्ती का मौका है और महिलाओं को जो है वो प्राथमिकता दी जा रही है, बिना एग्जाम्स के हो जाएगा सिलेक्शन। अब आप सोचेंगे बिना एग्जाम्स के कैसे, सब्र करिए बताता हूँ मैं। दरअसल बात यह कि बैंक ऑफ बड़ौदा में 2049 पदों पर फिलहाल भर्ती निकाली गई है। सो BGSSL ने निकाली है भर्ती और देश भर के अलग अलग विभागों और केंद्रों पर इसकी नियुक्तियां होनी है। सो महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी जा रही है। जी हाँ, योग्यता पूरी करने वाली महिला कैंडिडेट्स को जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस में प्रायोरिटी दी जाएगी। सो रिटायर्ड जो अग्निवीर हैं उनको भी इसमें प्रायोरिटी देने का प्राविधान है। सो किन कैंडिडेट्स को मौका है इसमें, जो ये जो वैकेंसीज आई है 2049 वाली जिसके बारे में हमने बताया, तो आपको बता दें कि जो ग्रेजुएट्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं या MBA है, CA है, CS है और इंजीनियरिंग डिग्री वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सो पद के हिसाब से DRA और NSEIT सर्टिफिकेट वाले भी इसके लिए पात्र हैं। सो बिना एग्जाम्स के कैसे सिलेक्शन होगा, ये एक सवाल उठता है। सो आपको बता दें कि जो कैंडिडेट्स हैं उनका सिलेक्शन शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यू के बेस पर किया जाएगा, यानी भर्ती के लिए कोई रिटन एग्जाम होना ही नहीं है, सीधे इंटरव्यू होगा। दूसरी बात है कि कितनी मिलेगी सैलरी और उम्र सीमा क्या है। सो चुने गए कैंडिडेट्स को कंपनी के नियमों के हिसाब से जो है वो सैलरी दी जाएगी और नियमों के हिसाब से तय की जाएगी। जी हाँ, कैसे आवेदन करना है सबसे बड़ी बात, कि भाई अगर इसमें मान लीजिए आप भी आवेदन करना चाहते हैं BOB के ये 2049 वैकेंसीज में, तो किस तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो जो भी कैंडिडेट्स हैं वो BGSSL की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जा करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं एंड करंट ओपनिंग्स में जा करके रजिस्ट्रेशन और फॉर्म सबमिट करना होगा। तो आप BGSSL अगर सर्च करेंगे गूगल पर तो आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी मिल जाएगी और BGSSL पे ही जा करके आपको करंट ओपनिंग्स का ऑप्शन मिलेगा जहां पर जा करके आप अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो ये रही बैंक ऑफ बड़ौदा में निकली 2049 वैकेंसीज के बारे में, BGSSL ने जो निकाली है भर्ती, देश भर के अलग अलग विभागों और सेंटर्स पर इसकी नियुक्तियां की जाएंगी। सो आई होप कि भाई ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये एक अच्छा मौका हो सकता है आपके लिए अगर आप भी इसमें इंटरेस्टेड हैं और बैंकिंग में आना चाहते हैं। स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो आपको ज़्यादा वरीयता दी जाएगी एंड आपके लिए एक ऐसा मौका हो सकता है जब आप खुद से अप्लाई करके देखना चाहें। ऑफ कोर्स तो BGSSL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके आपको इसकी और भी डिटेल्ड जानकारी मिल जाएगी और साथ ही साथ जो ज़रूरी बातें थी वो हमने आपको पहले ही बता दी हैं। आई होप कि ये जानकारी भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम की होने वाली है और आपको भी इसका काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा। सो देर मत करिएगा, अगर आप इंटरेस्टेड हों तो आप जा करके भी देख सकते हैं एंड आई होप कि आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो। राइट, चले आप सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट और इस तरह की कोई भी वैकेंसीज की अपडेट्स होती है, इस तरह की कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, कोई फेलोशिप होती है, कोई कंपटीशन होता है, तो RJ अदनान अपने मॉर्निंग वाले शो में ज़रूर मेंशन करते हैं जो उन तक आ जाता है। सो इसलिए हमेशा स्टे कनेक्टेड, क्योंकि कब कौन सी जानकारी आपके लिए ही हो, गॉड नोज।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क डेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891446 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: मैप है
4: नफरत करने वालों के सीन में प्यार भर दूं, लो गाऊं ऐसा गाना दिल्ली को पा

0: शेर खुल जाएंगे तो भाई साहब ये हम लोग शहर में रहने लायक नहीं बचेंगे और भागना पड़ेगा जो तेज़ी से, वो तो आप समझ ही रहे हैं। फिलहाल एक बार वापस से आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन।
1: Now you're listening, Good Morning Gonda with your favorite Aajya Khan.

सो भाई मेरा जहन ऐसा है कि कई सारे सवाल हमको वैसे ही आया करते हैं, मतलब बैठे बैठे लेटे लेटे हम न जाने क्या ऐसे ऐसे अजीब अजीब सोचा करते हैं। आप भी सोचेंगे यार ऐसे ख्याल कैसे, कभी कभी आपको भी आते हैं, झूठ मत बोलिएगा, है ना। हाँ जी, तो जो कभी कभी आते हैं उसी तरह मुझे भी आते हैं कभी कभी। सो ये बताइए, अगर आपकी ज़िंदगी पर एक बॉलीवुड फिल्म बने तो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक कोई इमोशनल गाना होगा या धमाकेदार आइटम सॉन्ग? जब म्यूजिक की बात आती है तो मुझे ऐसा लगता है सुनने में भले ही आपको सैड सॉन्ग पसंद है, लेकिन जब लाइफ की बात आती है कि आपकी लाइफ कैसी गुजरी है, तो फिर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपकी जिंदगी पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई मूवी बनती है और उसमें कोई गाना प्ले किया जाता है, तो गाना क्या इमोशनल सॉन्ग्स होने वाले हैं या आइटम सॉन्ग्स होने वाले हैं? चलिए कमेंट करिए और बताइए। सवाल बहुत ही अहम है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी, मतलब मुझे लगता है कि यार ये तो बड़ा मज़ेदार जवाब है इसका देने के लिए। अब जैसी भी लाइफ रही है आप बता सकते हैं, बाकी हम समझ लेंगे।

क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840 3395 84। अब बारी है आपकी।

ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ रिश्ता है इस जगह से? स्ट्रेंज, मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ। सब कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, क्यों? रंजना?

होए। सवाल बड़ा ही आसान सा था कि अगर आपकी जिंदगी पर एक बॉलीवुड फिल्म बने तो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक कोई इमोशनल गाना होगा या धमाकेदार आइटम सॉन्ग। सो मुझे लगता है सबकी लाइफ जो है वो अलग अलग है, और शायद इस पर मुझे जवाब जो है वो आ चुका है, और इस पर जवाब दिया है महेंद्र देपन ने फ्रॉम राजस्थान। लिखते हैं, आदरणीय आरजे अदनान सर जी, अगर मेरी बीती और आने वाली जिंदगी पर कोई बॉलीवुड गीत फिट बैठे तो मैं रुक जाना नहीं। क्या बात है, चुनूंगा। बीती जिंदगी संघर्षों से भरी रही, कई मुश्किलें आई, लेकिन हौसला कभी कम नहीं होने दिया। अब लगता है कि आने वाला वक्त थोड़ा सुकून और आराम लेकर आ रहा है, इसीलिए मेरे इस गीत का भाव है, संघर्ष कितना भी हो सफर जारी रखना और बेहतर कल की उम्मीद कभी नहीं छोड़नी है। थैंक यू सो मच इतने अच्छे से डिफाइन करने के लिए महेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड यस, आपने बताया कि भाई अगर आपकी लाइफ पर कोई बॉलीवुड मूवी बने तो आपकी मूवी में जो सॉन्ग्स होंगे वो ऐसे होंगे जो आपको इंस्पायर हमेशा से करते रहें। थैंक यू सो मच टू यू। वैसे मेरी ज़िंदगी पे अगर बनेगा तो हाँ, कई सारे आइटम सॉन्ग्स होंगे और कुछ तो भाई जाहिर सी बात है इमोशनल गाने भी होंगे। सो कुछ मैशअप जैसा होने वाला, जैसे कि लाइफ होती है मिली जुली होती है, बिल्कुल वैसे ही। सो मुझे लगता है कि शायद ये सिर्फ मेरे साथ का नहीं बल्कि और भी कई ऐसे लोग होंगे जिनके साथ में ये सिचुएशन ज़रूर होगी, राइट? सो आपके साथ भी अगर मुझे लगता है तो कहीं ना कहीं आप भी इस बात को बखूबी समझ रहे होंगे। यस ऑफ कोर्स। सो चलिए भाई, ये तो मुझे जान करके अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं उम्मीद का जो दामन नहीं छोड़ने की बात है वो पुख्ता है, और ये बहुत अच्छी बात है, ये बड़ी ही खूबसूरत सी बात है अगर आपके जहन में ऐसी चीज़ें हैं कि भाई आप कभी भी उम्मीद को नहीं छोड़ने वाले हैं। सो चलिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा रहने वाली है, और ये जो आप जो कुछ सोच रहे हैं इसमें आप ज़रूर कामयाब होंगे, ऐसी मेरी दुआएं आपके साथ में। फिलहाल वक्त है आपको आगे ले चलने का, और ऑफ कोर्स एक मस्त सा बेहतरीन सा सॉन्ग सुनाने का आपके मॉर्निंग वाले शो में, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।

ओह वाओ, क्या बात है भाई। जब ये इस तरह से हम बढ़ते बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो कसम से ऐसा लगता है कि क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सो एक बार वापस से आपका स्वागत है, वेलकम है। और कुछ सॉन्ग्स तो हमने सुनाया और आपको बहुत मज़ा आया, लेकिन कुछ मैसेजेस भी बाद में आए हैं जो ऑफकोर्स हमारे मैसेजेस रीड करने के काफ़ी बाद में आए थे। तो चलिए हम बता देते हैं फटाफट क्या क्या आया है, कहाँ कहाँ से मैसेजेस आए हैं। सो रोशनी रावत जी हैं फ्रॉम उन्नाव, आपको भी गुड मॉर्निंग, आई होप कि आप ज़रूर अच्छी होंगी। एंड आशु जी फ्रॉम लखनऊ लिखती हैं, सुप्रभात सर जी, जीवन के कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो किसी पद प्रतिष्ठा के मोहताज नहीं होते, वो स्नेह और विश्वास की बुनियाद पर टिके होते हैं। एंड इरफान लिखते हैं, छोटे बच्चों को हर चीज़ चॉकलेट समझकर नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मीठे से ज़्यादा उनकी सेहत मिठास ज़रूरी है। प्यार में दी गई सही चीज़ बच्चे के अच्छे भविष्य की सबसे प्यारी सौगात है। थैंक यू सो मच इरफान, स्वागत है, वेलकम है। अब्दुल हकीक मौजूद हैं, आपको भी हेलो हाय। धर्मेंद्र मोहन जी हैं फ्रॉम आवाज़ फिकस, अदनान सर जी गुड मॉर्निंग, बेस्ट ऑफ लक सर जी, आज का दिन आपका मंगलमय हो। थैंक यू, आपका भी ज़रूर हो। अरविंद फ्रॉम मनकापुर, अकेले रहकर स्वयं की संगति का आनंद लेना नकली लोगों से घिरे रहने से बहुत बेहतर है, आपको भी गुड मॉर्निंग अरविंद। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट मैसेज आया प्रीति जी का बहराइच से, सर जी वेरी लवली मॉर्निंग, अ वेरी लवली मॉर्निंग, बहुत सुंदर संगीत, थैंक यू। पप्पू हार्डवेयर गोंडा से, आपको भी अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। नगेश्वर धाकड़ मौजूद हैं मध्य प्रदेश से, गुड मॉर्निंग आपको भी नगेश्वर। एंड इसके बाद जो है नाजिया अंसारी, आपका भी स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। एंड यस, पहली रो में आप लोग मौजूद हैं, जाहिर सी बात है। तो चलिए भाई, फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। आई होप कि आप लोगों को ज़रूर आज का शो पसंद आया होगा, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन थी। अब सीधे मिलने वाले हैं आपसे थर्सडे मॉर्निंग के, फिलहाल आप बने रहिए अपने गुड मॉर्निंग गोंडा शो के बाद गोंडा FM पर।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में GMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
0: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
0: आज ही कॉल करें 9281976, पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
0: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
5: समता दी, आज आप सभी को इमलिया गांव जाने की तैयारी करनी है। हम सभी यानी किरण दीदी, गीता दीदी और आपको मेरे साथ साक्षी की शादी में जो जाना है।
6: पर जया, अभी तो उसकी शादी में काफी समय है, और किरण दीदी आपकी तो नंद के घर ही शादी है, वो इमलिया गांव वाली, जिनके गांव को जाते समय रास्ते में पावर हाउस भी पड़ता है, जहां से पूरे शहर की बिजली की सप्लाई होती है।
7: हाँ समता और जया, केवल इतना ही नहीं, वहाँ तो पावर हाउस के बगल में ही जिला कारागार भी है। ये वो जगह है जहाँ जिला कारागार में स्वतंत्रता सेनानी राजेंद्र नाथ लहरी को फांसी दी गई थी। उन्हें काकोरी कांड से जुड़े होने के कारण 17 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई है। आज भी इस दिन वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। आसपास के हर विद्यालय द्वारा प्रभात फेरी निकाली जाती है और रंगारंग कार्यक्रम के साथ इस दिन जनता को वो हर जगह घूमने की विशेष अनुमति दी जाती है।
8: अरे तो का, हम सबे हुए तो घूमे जावा जात है, चलो फिर से तैयारी कर लिया जाए। हुए जाए की शादी और सात वचन ना हो, ये कैसे हो सकत है?
5: हाँ सही कहा आपने,
7: बिल्कुल सही। और आज का पहला गीत जो हम साक्षी की शादी के लिए तैयार कर रहे हैं, वो है पता क्या, सात वचनों की लाज बचाना। सात वचनों की लाज बचाना, ये सिर्फ शब्द ही नहीं बल्कि पति पत्नी का वो भरोसा है जो दो दिलों को जोड़े रखता है।

0: समता दी, ठंड का मौसम चल रहा है, मक्के की रोटी और सरसों का साग तो गांव में खूब बनता है। लगता है इस बार हमें इमलिया गांव में चूल्हे पर बनी मकई की रोटी, सरसों का साग, गाय का शुद्ध मक्खन और सर्दी वाली सजाव दही के साथ आंवले की चटनी, अचार, कई चीजें खाने को मिलेंगी। आहा, सोच के ही मजा आ गया।
1: अरे जया, बस करो ख्याली पुलाव के शेफ। दरअसल बात ये है कि अब वो पहले जैसी खेती नहीं रही और ना ही फसलों में वो बात रही, क्योंकि अब अनाज को ज्यादा उपज के लिए केमिकल का प्रयोग किया जाता है, और इन सब पे हम बाद में बात करेंगे, पहले एक गाना हो जाए।
2: आज

0: हाँ समता, सच में बहुत ही दुखद है ये हमारी धरती और आने वाली पीढ़ी के लिए। अरे इतना रसायन, उफ़ो, इससे धरती माँ की उर्वरा शक्ति छीण हो जाती है और तो और मिलावटी उपज से बीमारी इतनी फैलती है कि क्या बताऊँ, और हमारी उम्र में भी कमी देखने को मिलती है।
1: अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम सब ये बताओ कि ये बार कौन खेत घूमे जाए मिली वहाँ जाए पर। अच्छा अच्छा, ये सब छोड़ो, तनिक कौनो ठीक गौ नहीं हुई जाए तो नीक लागे।
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं। और अब हम सब चलते हैं दिव्यता की ओर, उस पल की ओर जब बेटा दूल्हा बनता है, माँ की आंखों में भीगती खुशी होती है, जैसे माँ कौशल्या रानी के गोद आज राम दुल्हा बने। अरे भाई, आज हर माँ को लगता है कि उसका लाल राम जैसा दूल्हा है, और दामाद को देखते ही ससुराल वाले खुद को दशरथ समझ लेते हैं।

0: जया, पता है इस समय दिसंबर चल रहा है तो रबी की फसलें जैसे गेहूं, जौ, सरसों, चना और विभिन्न प्रकार की सब्जियां जैसे पालक, धनिया, मेथी, मटर, मूली ये सब लगाई जाती है और इसी के दौरान तुरैया और कद्दू जैसी फसलें जो है पक के तैयार भी हो जाती हैं और साथ ही बरसीम भी लगाई जाती है जिसकी इस समय कटाई चल रही है। अच्छा, तो इसके साथ साथ अब की बार साक्षी की शादी भी देखे का मिली। वाह भाई वाह, खूब मजा आई।
1: अरे इतना ही नहीं, खाने को सारे शुद्ध पकवान, दही, दूध, घी और बहुत कुछ होगा।
2: हाँ समता, पर आजकल वो स्वाद कहाँ जो चूल्हे की बनी रोटी साग और रात की बासी सगपहता वाली दाल को चूल्हे पर घी, हींग, लहसुन, जीरा और हरी मिर्च आदि के तड़के के साथ जब गरम किया जाता था, आहा मजा आ जाता है भाई, मेरे मुंह में तो लार गिर रही है।
3: हाँ दी, अब तो कोई चूल्हा जलाना जानता ही नहीं है। पहले तो पूरा घर और चूल्हा चिकनी मिट्टी का होता था, द्वार पर नीम आम जैसे बड़े पेड़ होते थे। अब तो गांव भी शहर सा बनता जा रहा है, कोई पेड़ लगाना ही नहीं चाहता।
0: हाँ जया, पर हमारी गांव की गूंज की टीम अपने उसी प्राकृतिक परिवेश को पुनः जीवित करने का काम कर रही है। हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से वो दिन याद दिलाते हैं कि जब लोग ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ हुआ करते थे, शुद्ध वातावरण भी होता था और उम्र सबकी लगभग लगभग 80 पार हुआ करती थी, कुछ तो 100 और उससे भी अधिक जीवित रहते थे। अब आजकल देखो 60 पार हो जाए तो जानो तो ये बड़ी बात होगी कि अगर कभी कोई 60 की उम्र पार कर ले।
1: एकदम सही कहा दीदी। अच्छा जरा एक और गीत सीखते हैं। अरे भाई, दुखड़ा लेकर आप कहाँ बैठ गई? आप भूल गई कि हम सब शादी की तैयारी के लिए यहाँ पर आए हैं? फिर से वही अपने जमाने का वार्तालाप।
2: अरे अरे, अब हल्दी की बातचीत कर लेते हैं। देखो भाई, ढोलक बजेगा, सखियाँ उस दिन गाएंगी और क्या गाएंगी, लागी लागी रे बन्नी को हल्दी आज अरे शुभ होवे, ऐसे ही कुछ गाएंगी। और पता है हल्दी की चमक और बन्नी की जो निखार, फिर गांव के लड़के लाइन लगाते दिखते हैं, काकी हमको भी थोड़ी हल्दी लगा दो, शायद लाइफ चमक जाए।

0: वाह दीदी, तो शादी हल्दी की तैयारी पूरी हो गई।
1: हाँ, तो इस बार इमलिया गांव में खूब धूम मचेगी। जिधर आसपास की गोंडा मेडिकल कॉलेज, सर्किट हाउस और बादशाह बाग भी पड़ता है।
2: अरे आजकल गांव गांव कहाँ रह गया है। जहाँ परिवहन के साधन हो तो गांव और शहर की दूरियां ना के बराबर हो जाया करती हैं।
1: जाते जाते एक और गीत हो जाए।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे भाई, अब आते हैं शादी के सबसे हंसी मजाक वाले रस्म की ओर, सुहाग रात के किस्सों पर। अंजोरिया की रात पिया काहे डराएगो, आओ ये गाना सुनते हैं किरण की आवाज में।
1: अरे पिया डराएंगे नहीं तो क्या करेंगे। भाभियां कमरे के बाहर खड़ी हैं, दोस्त फोन पर लाइव अपडेट मांग रहे हैं, और इधर दुल्हन भी सोच रही है, और ये तो ऐसे ही चुपचाप है जैसे इंटरव्यू देने आए हूँ।
3: अजूरिया के रात पिया काहे डराएंगे,

आया सावन का महीना, सखी डालो रे झूला। के आया सावन

0: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
4: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
5: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
6: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
7: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
8: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
9: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
10: मतलब
9: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
11: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
4: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
10: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
4: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
10: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
4: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।

0: आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं,
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 981 976, 9260 981 976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी करें 7234020202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

0: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: हेलो लिसनर्स एंड वेलकम टू 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन पे आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी आरजे तन्वी और आज है शानदार बुधवार, यानी कि वो दिन जब हम लाते हैं आपके साथ सेहत सही लाभ कई बैनर के तले हमारा स्वास्थ्य संगिनी। 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन और स्मार्ट एनजीओ ने मिलकर ठाना है कि 2030 तक मलेरिया को मार भगाना है, और इसी मुहिम के तले आज लाए हैं हम एक और बुधवार, यानी कि एक और कड़ी हमारे इस स्वास्थ्य संगिनी की। तो मैं हूँ आरजे तन्वी और मैं आज आपके साथ लेकर आई हूँ हमारा स्पेशल एपिसोड ऑन मलेरिया। तो भाई, मलेरिया की बात तो बहुत सारी हम कर चुके हैं ऑलरेडी, और मलेरिया का जो मच्छर है ना, वो बहुत परेशान करता है काफ़ी लोगों को, क्योंकि जब मलेरिया होता है सुनते हैं कि गर्मी में भी चिलचिलाती हुई ठंड का एहसास होता है। तो आजकल हालांकि जिस तरह की गर्मी है उसमें तो कोई भी ठंड का एहसास लेना चाहेगा, पर भैया ठंड का एहसास लेने के लिए मलेरिया थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि ठंड के लिए लोग नैनीताल, मसूरी, शिमला जाते हैं, पर कुछ लोग ठंड का एहसास गर्म इलाकों में भी पा ही लेते हैं और जब उनको मलेरिया हो जाता है। तो ऐसे ठंड के एहसास से दूर रहिएगा, क्योंकि ये ठंड का एहसास ठंड के साथ साथ बहुत कुछ देकर जाता है, खूब तेज़ बुखार और शरीर में बहुत समय तक रहने वाली कमज़ोरी। तो चलिए चलते हैं इस जर्नी की ओर, लेते हैं छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं हमारे मलेरिया स्पेशल एपिसोड को लेकर।

कुछ ऐसा ही जुर्म कर रहा है मलेरिया का मच्छर भारत में, और भारत ने ठाना है कि मलेरिया को मार भगाना है। तो भाई ये कैसे होगा, तो हम आपको बताते हैं। जब राष्ट्रीय नेता सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर काम करते हैं तो इसका प्रभाव सीमाओं से परे तक पड़ता है तथा इससे कार्रवाई और प्रतिबद्धता को प्रेरणा मिलती है। ये शक्तिशाली कथन को तब नया जीवन मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में ये बात स्पष्ट की कि हम उसके 117वें एपिसोड में के दौरान उन्होंने ये बात स्पष्ट की कि मलेरिया उन्मूलन प्रकाशों पर मलेरिया उन्मूलन पर बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। लाखों भारतीयों ने उन्हें फॉलो किया। इस सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती को समर्पित करके प्रधानमंत्री ने ना केवल मलेरिया को महत्व दिया परंतु इसके महत्व को देश विदेश तक फैलाया। नीति निर्माताओं, हितधारकों और नागरिकों को एक मजबूत संकेत भी दिए कि भारत को इस बीमारी से मुक्त करना है तथा तत्काल राष्ट्रीय प्राथमिकता का विषय इसको बनाना है। पिछले दशक में भारत ने मलेरिया के मामलों और मौतों को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति की है, जो सरकार के नेतृत्व वाले मजबूत कार्यक्रमों, मजबूत निगरानी प्रणालियों और समुदाय आधारित हस्तक्षेपों को दर्शाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया के लिए वैश्विक तकनीकी रणनीति और एशिया प्रशांत नेताओं मलेरिया गठबंधन मलेरिया उन्मूलन रोडमैप के साथ तालमेल बिठाते हुए भारत ने 2030 तक मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। पहले से ही इस महत्वपूर्ण प्रगति की गई है। लंबे समय तक चलने वाले कीटनाशक जाल वितरित करने से लेकर त्वरित निदान परीक्षणों और मलेरिया रोधी दवाओं तक पहुंच का विस्तार करने तक सरकार और उसके सहयोगियों ने यह प्रदर्शित किया है कि बड़े पैमाने पर लामबंदी वास्तव में जीवन बचा सकती है। एक तरह से देखा जाए तो सरकार ने ना ही सिर्फ कीटनाशकों को बांटा है बल्कि जो सेफ्टी नेट्स हैं, मस्कीटो सेफ्टी नेट्स, उनको भी बांटा है और मलेरिया के खिलाफ एक नई मुहिम छेड़ी। कई लोग मलेरिया को अक्सर भूल जाते हैं, और क्योंकि डेंगू का प्रकोप इतना बढ़ गया है कि मलेरिया की इम्पोर्टेंस थोड़ी सी कम हो गई है। तो इम्पोर्टेंस कम होने का मतलब ये कतई नहीं है कि मलेरिया अब इस देश से चला गया है। इम्पॉर्टेंस कम होने का मतलब ये है कि भाई डेंगू जो है वो मलेरिया से भी ज़्यादा आतंक फैला रहा है, और मलेरिया जो है वो इतना सामने नहीं आता क्योंकि उसमें जो उसके एवज में डेंगू के पेशेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ऐसे में हमें मलेरिया से बचने के लिए क्या करना चाहिए? मलेरिया से बचने के लिए सबसे पहले तो आपको कोई ना कोई कीटनाशक या कोई ना कोई मच्छर भगाने की तकनीक अपनानी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि आप इसके नेचुरल तरीके भी अपना सकते हैं, जैसे कि आप गाय के गोबर को सुखा के उसे घर में जला सकते हैं। उससे जो सुगंध आती है वो बहुत अच्छी लगती है अपने आप में, साथ ही साथ वो मच्छरों को भी भगाती है। इसके अतिरिक्त आप कपूर और शहद को जला के भी मच्छर भगा सकते हैं। साथ ही साथ आप फॉगिंग करवा सकते हैं, जैसे कि जो नगर परिषद या नगर पालिका या नगर निगम कराता है समय समय पर, तो उनको फ़ोन कर सकते हैं, उनको एप्लीकेशन दे सकते हैं। साथ ही साथ प्राइवेट फॉगिंग कंपनीज भी हैं जो थोड़ा सा पैसा लेके आपके घर के आसपास इर्द गिर्द उस क्षेत्र में फॉगिंग कर देती हैं। इससे काफ़ी असर होता है और मच्छरों को की जो तादाद है उसमें कमी आती है। इसके अतिरिक्त अगर एक बहुत आवश्यक चीज़ पर नज़र डालें तो वो ये है कि मच्छरों को पनपने ही ना दें, और ये तब होगा जब आप घर में साफ सफाई के साथ कहीं भी पानी को इकट्ठा होने ना दें। मलेरिया को 2030 तक अगर भगाना है और सरकार का इस मुहिम में हमें साथ देना है तो हमें कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। उनमें से कुछ बात यही है कि हम मलेरिया के मच्छर को पनपने ही ना दें, और इसके लिए जो खाली बाल्टी है, खाली बर्तन है, उनमें हम बारिश का पानी इकट्ठा ना होने दें। गर्मियों में ज़्यादातर इस तरह की बीमारी होती हैं, और जब बरसात आती है, खूब सारी बरसात जो होती है वो अपने साथ साफ पानी लाती है जो जगह जगह इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पर मच्छर पनपते हैं। ये सिर्फ आपके घर तक सीमित नहीं है, बाहर तक सीमित नहीं है, पर हर एरिया में मच्छर पनप सकते हैं। जैसे यदि आप अपने घर के अंदर पानी नहीं भी इकट्ठा होने देंगे तो भी आपके गेट से मच्छर आ सकते हैं, अंदर दीवार से आ सकते हैं फांद के, क्योंकि उनके लिए तो कोई बाध्यता ही नहीं है।
कोई सीमा ही नहीं है। वो तो ऐसे चोर हैं जो आएंगे चुपचाप और आपका खून चूस कर चुपचाप निकल भी जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, बस लगेगा हाँ मच्छर ने काटा और आप खुजाते रह जाएंगे। ये कैसे पता चलेगा कि वो मलेरिया का मच्छर था कि नहीं, आपने तो ध्यान से देखा भी नहीं था। और यदि मलेरिया का मच्छर था भी और आपको पता भी चल जाएगा तो आप कर ही क्या लेंगे, सिवाय इसके कि जब आपको बुखार शुरू हो जाए या आपको लगे कि आपको बुखार हो रहा है, आपके शरीर में एक थकान महसूस हो रही है, आपके सेहत में गिरावट आ रही है और ये सीज़न मलेरिया और डेंगू का है, तो देर ना करें, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और इलाज करवाएं। यदि डॉक्टर खुद की तरफ से भी नहीं बोलते हैं कि आपको मलेरिया हो गया है, तो भी आपको खुद से उनको याद दिलाना चाहिए कि डॉक्टर साहब डेंगू और मलेरिया का सीज़न फैल रहा है, कहीं मुझे मलेरिया तो नहीं हो गया है, जाँच करा लूँ। तो ये आपको डॉक्टर को याद दिलाना है। उल्टा होता क्या है कि हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं मलेरिया डेंगू की का संशय लेकर, तो हम इस बात से खुश होते हैं कि डॉक्टर साहब ने मलेरिया डेंगू का नाम ही नहीं लिया और ना ही हमें जांच के लिए भेजा, बहुत अच्छा है जांच के पैसे बच गए। हम इस बात से ही खुश हो जाते हैं क्योंकि हमको लगता है एज इंडियंस सारे ही पूरे एशिया में, इनफैक्ट अगर आप एशिया कॉन्टिनेंट का सोचें तो पूरे एशिया में डायग्नोसिस यानी कि चेकअप को लेकर एक बहुत नेगेटिव धारणा बनी हुई है। हमको ये लगता है कि टेस्ट के लिए डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ अपने कमीशन के लिए भेजते हैं। हो सकता है कई स्थिति में ये बातें सच भी होती हैं, पर आपको बता दें कि अगर सही जांच नहीं होगी तो सही दिशा में दवाइयां नहीं चल पाएंगी। यही नहीं, डॉक्टर जो है वो आपका इलाज गलत सलत कर देंगे, इसीलिए कई बार डेंगू और मलेरिया के पेशेंट्स की हालत में बहुत ज़्यादा गिरावट देखी गई है। मलेरिया और डेंगू का इलाज संभव है और बहुत जल्दी संभव है, परंतु आप क्या करते हैं और आपके डॉक्टर क्या करते हैं कि जैसे मलेरिया का बुखार आपको आया, आपने जांच नहीं कराई, डॉक्टर ने भी, आप पहले तो दो दिन तक अपने आप ही कॉम्बिफ्लेम और पैरासीटामोल खाते रहे, ऐसी स्थिति में हर एक मिनट बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हर एक मिनट में आपकी प्लेटलेट्स जो हैं वो घटती चली जाती हैं, साथ ही साथ आपके शरीर में सेहत में गिरावट शुरू हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में एक एक दिन तो बहुत बड़ा माइलस्टोन की तरह ऐड करता है, यानी कि आप देखेंगे कि अगर आपको आज से बुखार चढ़ा है और आप तीसरे दिन डॉक्टर के घर गए तो तीसरे दिन डॉक्टर के पास गए तो तीसरे दिन तक ही आपकी जो प्लेटलेट्स हैं, जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं और जो प्लेटलेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा घट जाती हैं, और आपको डॉक्टर कहता है कि आपको एडमिट होना पड़ेगा, यानी कि आपको अस्पताल में ही भर्ती होना पड़ेगा और यहीं पर आपको खून चढ़ाया जाएगा, ग्लूकोज चढ़ाया जाएगा, ये सब आपके लिए किया जाएगा। तो उसका कारण ये है कि जब आप मलेरिया या डेंगू से ग्रसित होते हैं तो हर मिनट बहुत ही तेज़ी से आपकी जो आपकी प्लेटलेट्स हैं, जो आपकी कोशिकाएं हैं, वो घटती रहती हैं और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। इसीलिए कई बार आप देखते होंगे कि आपने सुना होगा कि मलेरिया से मृत्यु हो गई या डेंगू से मृत्यु हो गई, क्योंकि आपने डॉक्टर के साथ पास पहुँच कर सही उपचार कराने में काफ़ी देर कर दी। तो ये देर ना हो इसलिए आपको खुद से ही डॉक्टर को याद दिलाना है कि डॉक्टर साहब मेरी मलेरिया या डेंगू की जांच करा दीजिए, क्योंकि जांच में पैसे बचाना ठीक नहीं है, और जांच में पैसे बचाने से अच्छा है कि आप सही इलाज सही समय पर शुरू कर दें, वरना वो पैसे बचाने के बदले में आपको शायद अपनी जान से भी हाथ धोने पड़े। तो इसलिए बहुत ही अलर्ट रहिएगा। और मलेरिया और डेंगू में अंतर क्या होता है और इसके दोनों के लक्षणों में क्या अंतर होता है और ये किस सीज़न में होता है और क्यों होता है और आपको क्या खाना चाहिए, क्या पकाना चाहिए और कैसे आप मलेरिया डेंगू से और बच सकते हैं, बातें करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें होने वाली हैं, क्योंकि ये जो मच्छर है इन्हें हमें मार भगाना ही है और 2030 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने ठाना है मलेरिया को मार भगाना है।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है, वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि
1: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे।
0: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे।
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को
1: प्राथमिकता देंगे।
0: प्राथमिकता देंगे।
1: क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे। और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे। ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे। और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे। ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।
0: सेहत सही तो लाभ कई।

0: फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
1: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
0: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे बड़े बूढ़े सभी के लिए।
1: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
0: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत।

भारत में जैसे ही किसी दंपत्ति की शादी होती है, सब पूछने लगते हैं अच्छी खबर कब आएगी। लेकिन सच तो यह है कि ज्यादातर जोड़े जल्दबाजी में माता पिता बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें गर्भ निरोधक के सभी विकल्पों की सही जानकारी नहीं होती। जब दंपतियों को अपने सभी विकल्पों की पूरी जानकारी मिलती है तो वो मिलकर फैसला ले सकते हैं कि वो कब और कितने बच्चे चाहते हैं। वो आर्थिक रूप से तैयारी कर सकते हैं और अपने आजीविका पर ध्यान दे सकते हैं, साथ ही अपने बच्चों को बेहतर शुरुआत दे सकते हैं, ताकि हर बच्चा किसी मजबूरी से नहीं बल्कि सोच समझकर लिए गए फैसले से जन्म ले। तो झिझके नहीं, अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और जानें कि आपके लिए कौन सा आधुनिक गर्भ निरोधक तरीका सही है। आज ही बातचीत करें।

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में न जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी न चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण पूरा करने के लिए दिसंबर माह को टीकाकरण उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। अपने 5 साल तक के नन्हे मुन्ने बच्चों को 12 खतरनाक बीमारियों से बचाइए और उनके भविष्य को सुरक्षित कीजिए। याद रखिए, 5 साल 7 बार 12 बीमारियों पर वार। यदि छूटे न टीका एक भी बार, टीका लगवाने के लिए आपके आस पड़ोस में ANM बहन जी द्वारा हर बुधवार व शनिवार में आयोजित किए जा रहे टीकाकरण सत्रों में जाए व अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जनहित में जारी।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।
3: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
0: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर एस सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
0: आज ही कॉल करें 9860 9816 9819 1976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
0: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
5: अरे सुना?
6: क्या?
5: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
6: वाओ!
5: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
2: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
1: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, कभी डॉक्टर तो कभी कुक
2: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
1: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
2: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मेनी मोर शोज।
1: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
2: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

0: गई आपकी आज इस सप्ताह और साथ में आज हमारे साथ अंशिका नहीं है, तो हमारे साथ है आज संध्या जी। संध्या को हम करते हैं वेलकम।
1: हेलो मैम, नमस्ते। हेलो लिसनर्स, कैसे हैं आप? थैंक यू मैम, आज आपके साथ फिर से शो करने का मौका मिला।
0: थैंक यू सो मच, थैंक्स टू यू संध्या, कि जब जब अंशिका नहीं होती हैं तो आप हमारा साथ देती हैं। एंड थैंक टू यू कि आप फटाफट रेडी हो जाती हैं, क्योंकि आपको भी मन करता है कि हम लिसनर से मिलें, उनसे बातें करें और अपनी आज क्षमता के साथ बैठ करके शो करें, क्यों?
1: यस मैम, एकदम सही कह रही हैं,
0: है ना?
1: Yes,
0: तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के शो को। और आज का शो यानी कि आज है ट्यूजडे, एंड अगेन लास्ट ट्यूजडे भी मेरे साथ में आई थी संध्या। क्यों संध्या?
1: यस मैम।
0: तो क्या किया था लास्ट संडे, ये बताओ मुझे पहले।
1: मैं क्या की थी आपके साथ? बच्चे को सेफ रखने की अच्छी सी सजेशन दी थी अपने लिसनर्स को।
0: ओके, उसके बाद में मजा आया था कि नहीं आया था ये बताओ।
1: बहुत मजा आया था।
0: ठीक है, मजा आया था। तो आज आपको बताने हैं रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ, ठीक है?
1: Yes,
0: कि आपके जीवन में, पहले मैं पोयम बताऊंगी, एंड आपकी लाइफ में रियल फैक्ट क्या है जिसको आपने जब महसूस किया, जाना, तो आपको लगा कि हाँ ये हमारी जिंदगी का रियल फैक्ट है, ठीक है? बट हम आपको टाइम देते हैं अभी, पहले मैं बताऊंगी पोयम, ठीक है? लेकिन सबसे पहले आई विश कर देते हैं कि आपका अपना पसंदीदा शो शुरू हो चुका है, जिसका नाम है सुन सहेली। और सुन सहेली में मैं हूँ आपकी आरजे समता, और आती है मेरे साथ में आरजे अंशिका। लेकिन आज अंशिका नहीं है, तो हमारे साथ कौन है वो खुद बताएंगी।
1: हेलो लिसनर्स, मैं हूँ संध्या। और सबको शुभ दोपहर।
0: शुभ दोपहरिया संध्या जी बोल रही हैं। संध्या जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा खाना वाना खा करके तब आया करिए घर से, क्योंकि आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। एंड लिसनर्स भी बोलेंगे अभी कि भाई दूसरी आरजी की तो आवाज आई नहीं रही है।
1: यस मैम, मैं थोड़ा और एनर्जी के साथ बोलती
0: हूं। हाँ, थोड़ा सा और एनर्जी की तरह, मतलब आप खाना तो खा के आई है ना? आई होप सो।
1: सॉरी मैम, मैं अभी खाना नहीं खाई।
0: नहीं खाया है खाना?
1: यस मैम।
0: ठीक है, ठीक है, चलिए अच्छी बात है, खाना नहीं खाया तो कोई बात नहीं। तो चलिए अभी आप खाना खा लीजिएगा। लेकिन आइए शुरू करते हैं आज की पोयम का सेक्शन, जो कि हमारा सबसे बेहतर वाला होता है।
1: Yes,
0: तो सुना दूं?
1: यस मैम।
0: ओके। छोटे हैं कदम मगर, छोटे हैं कदम मगर, सपने बड़े रखो, मुश्किलें चाहे जितनी भी हो, हौसले खड़े रखो, गिरकर फिर उठ जाना, हार कभी मत मानना, मेहनत की राह पर चलकर अपना मुकाम पाना, आंखों में हो सपने, दिल में विश्वास रखो, हर दिन कुछ नया सीखो, आगे बढ़ने की आस रखो, जो आज कठिन लगता है कल आसान हो जाएगा, जो आज कठिन लगता है वो कल आसान हो जाएगा, तुम्हारा हर एक प्रयास तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा, दूसरों से आगे बढ़ना ही जीत नहीं कहलाती है, दूसरों से आगे बढ़ना ही जीत नहीं कहलाती है, खुद को कल से बेहतर करना असली जीत बन जाती है, गलतियों से कभी डरना नहीं, उसने सीखते जाना, गलतियों से कभी डरना नहीं, उनसे सीखते जाना, हर छोटी सी कोशिश को अपनी ताकत बनाना, हर छोटी सी कोशिश को अपनी ताकत बनाना, कभी रास्ते में आएंगी परेशानियां हजार, तुम अपने हौसलों से करना हर मुश्किल को पार, सच्चाई को साथी रखना, अच्छे कर्मों को अपनाना, अपने माता पिता और गुरु का सदा मान बढ़ाना, तुम में छिपी है ताकत, तुम में नई उड़ान है, तुम में छिपी है ताकत, तुम में नई उड़ान है, तुमसे ही तो रोशन भारत का आसमान है, आज तुम नन्हे बच्चे हो, कल देश की शान बनोगे, अपनी मेहनत और लगन से एक दिन महान बनोगे।
1: बहुत अच्छा पोयम था मैम, बहुत अच्छा पोयम।
0: अच्छी लगी?
1: यस मैम।
0: ओके जी, तो भाई आज की पोयम के लिए थोड़े से फीडबैक हम चाहते हैं कि आप हम लोग को दें। एंड नाजिया अंसारी, गुड आफ्टरनून, कैसी हैं आप मुझे ये बताएं। एंड हमारी जो कि हमेशा से लिसनर्स जो होती हैं, हमारी जो पुरानी लिसनर्स हैं, वो पता नहीं कहाँ चली गई, यानी हमारी लिसनर्स नहीं, हमारी दोस्त लिसनर्स हैं, हमारी दोस्त यानी हमारी सहेलियाँ हैं, तो जल्दी से आ जाएं क्योंकि शो शुरू हो चुका है आपका पसंदीदा। तो आइए फटाफट जानते हैं, क्योंकि अभी तक संध्या के दिमाग में तो आ ही गया होगा कि आज हमारी लाइफ में रियल फैक्ट्स क्या है।
1: यस मैम, मेरा मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है कि कभी एक छोटी सी गलती से हार नहीं मानना चाहिए.
0: वेरी नाइस.
1: यस मैम. और अगर आप हार नहीं मानेंगे तो फिर कुछ नया ट्राई करेंगे और एक होप के साथ. अगर आप हार गए तो डिसअपॉइंट ना हो कि हाँ मुझसे नहीं होगा या नहीं हो रहा है. आप ट्राई करिए. अगर आपका हारना आपको आगे बढ़ने का एक अच्छा चांस देता है. हाँ, तो हार को आप अपना
0: हार को जीत में बदलने का हौसला रखें.
1: यस मैम. मतलब वो हारना आपका स्ट्रेंथ है ना कि बीस.
0: वाओ, मतलब कितना प्यारा सा रियल फैक्ट्स ऑफ आज बताया है संध्या. यस आई इम्प्रेस्ड. मैं इसको ऑन एयर कहने में मुझे बिल्कुल भी वो नहीं होगा कि यस आई एम इम्प्रेस्ड कि इतनी प्यारी सी बात बोली कि हार को कभी भी आप जिंदगी का वो लास्ट पड़ाव ना समझें. इट मीन्स यही होगा ना. और उसको आप अपनी जीत में आप समझें कि अगर मैं हार गई तो यानी मुझे जिंदगी ने एक और मौका दिया है.
1: yes, ma'am.
0: अगर हम जीत जाते तो हम फिर एक जगह रुक जाते. हारे हैं यानी कि आगे बढ़ने के लिए. तो इस प्यारे से रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ के साथ हम यहाँ एक ब्रेक ले लें संध्या.
1: yes, ma'am.
0: और हमारे दोस्त लिसनर्स को एक गाना सुना देते हैं. ठीक है, तो उस गाने के उस पार आएंगे. आजकल का वायरल फीवर जो कि बहुत ज्यादा फैला हुआ है, हर घर में 3 से 4 मरीज तो ये पाए जा रहे हैं. इनके प्रिकॉशन हम बताएंगे, इनकी इनको ये कैसे हो रहा है, बच्चों में कैसे हो रहा है, बड़ों तक कैसे पहुंच रहा है, क्या कुछ है, हम सब बातें करेंगे. लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद. तो आपको कहीं नहीं जाना है, आपको हमारे साथ रहना है और सुनना है सुन सहेली, जो कि आपका फेवरेट से फेवरेट शो है और दोपहर का फेवरेट शो सुन सहेली. हम यूं गए, बस यूं आए. स्टे ट्यून्ड.
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं. कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं. समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है. बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें. संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें.

वो जो मऊआ घटवारन का घाट था ना, उसी मुल्क की थी मऊआ। थी तो घटवारन लेकिन सौ सतवंती में एक। उसका बाप दिन दिहाड़े ताड़ी पी के बेहोश पड़ा रहता था। उसकी सौतेली माँ थी साक्षात राक्षसनी। मऊआ कुंवारी थी, हरी पूरी दुनिया में कोई ना था उसका।

कैसे करूं महुआ के रूप का बखान, हिरनी जैसी कजरारी आंखें, चांद सा चमकता चेहरा, एड़ी तक लंबे रेशमी बाल, जब वो मुस्कुराती तो जैसे बिजली।

जवान हो गई थी मऊआ, फिर भी कहीं शादी ब्याह की बात नहीं चलाई किसी ने। सुबह शाम वो अपनी मरी माँ को याद करके रोती, रात दिन कलपता था बिचारी का मन। मन समझती है ना आप।

एक दिन एक थका प्यासा मुसाफिर नदी किनारे पानी पीने आया। महुआ को देखते ही उसपे रीझ गया। नादान महुआ भी उसे दिल दे बैठी। जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई उनकी प्यार की बात। सौतेली माँ भला कैसे देख सकती थी उनका सुख। उसने महुआ को एक सौदागर के हाथ बेच दिया। रोती छटपटाती महुआ चली गई सौदागर के साथ। बिछड़ गई जोड़ी। महुआ का प्रेमी आज भी जैसे रोता है।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
3: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
5: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
6: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
7: गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
8: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में है आज हमारे संध्या जी। तो चलिए भाई, फटाफट शुरू करते हैं आज का पहला सेक्शन, सेकंड सेक्शन यानी कि वायरल फीवर। तो अंशिका क्या, अरे यार अंशिका मेरे मुंह में रहती है। तो संध्या आप मुझे बताएं कि क्या ऐसा कारण है जिसके कारण से आजकल वायरल इतना फैला हुआ है। दिखाइए। हाँ, बिल्कुल।
9: तो मतलब ये रीजन होता है कि कभी कभी बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते हैं, पार्क में जाते हैं या फिर खेलने गए, और कहीं दूसरे बच्चे को जुकाम है, कोल्ड है, उनकी खांसी से, उनके साथ रहने से, टच करने से भी बहुत जल्दी ये वायरल फीवर बहुत जल्दी इन्फेक्टेड बच्चों में दूसरे एक बच्चे से दूसरे बच्चे में बहुत जल्दी ट्रांसमिट हो जाता है। अगर बच्चों का इम्यून सिस्टम वीक है और बच्चे वायरल फीवर के इफेक्ट में आ रहे हैं, तो क्या है कि उनका जब इम्यून सिस्टम अभी स्ट्रांग नहीं है, तो उनका बॉडी जो है इतनी जल्दी एंटीबॉडीज नहीं बना पाता कि वो डिजीज से लड़ सके।
8: बिल्कुल।
9: तो इसीलिए बच्चे बहुत ज्यादा, बहुत हाईली उस पे वो इफेक्ट दिखाता है, मतलब ये फीवर जो। तो मैम इसलिए बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सेफ रखें। और मैम ये कहीं कहीं गंदगी भी इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार है। बच्चे बाहर खेलने जाते हैं और हाथ नहीं धुलते हैं, खाना खाने से पहले हाथ नहीं धुलते हैं। तो कहीं ना कहीं हम पेरेंट को या गार्जियन को इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे के लिए जितना भी ज्यादा हाइजीन आप रख पाए इतना उनके लिए सेफ हो। और फिर इस टाइम तो मैम इतना एकदम रेड जोन चल रहा है ये वायरल फीवर का, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी होता है,
8: ग्रो करते हैं। एक्चुअली जो संध्या बता रही है, इट मींस में कि अगर कहीं पे भी आपके घर के आसपास या कहीं पे भी अगर गंदी,
9: यस सर,
8: जी तो संध्या जी, हम बात करेंगे आज वायरल फीवर पे।
10: यस मैम, वायरल फीवर ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है अगर हम लोग अपने तरीके से देखरेख रखें तो, क्योंकि अब बच्चे इससे बहुत जल्दी इन्फेक्टेड होते हैं।
8: हाँ जी,
10: तो अपने बच्चों को, जैसे हम लोग के बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है अभी एडल्ट के कंपेयर इतना ज्यादा स्ट्रांग फुली डेवलप नहीं हुआ।
8: एक्चुअली जो संध्या कह रही है कि छोटे बच्चों की जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो ज्यादा ग्रो नहीं होता है अभी, जिसके कारण से उनमें संक्रमण को ग्रेप करने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है।
10: यस मैम, क्योंकि अगर अभी उनका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज्यादा वीक है।
8: हाँ, अभी वो छोटे होते हैं। हाँ, और एक्चुअली आजकल के बच्चों को तो पता ही है कि ज्यादा कुछ खाते नहीं है, जंक फूड ज्यादा खाते हैं पूरा।
10: यस मैम, और जब जंक फूड वो ज्यादा खाते हैं, कोई न्यूट्रिशन वाली चीज वो लेते नहीं है, तो फिर कैसे उनकी इम्यूनिटी पावर
8: बिल्कुल
10: स्ट्रांग होगी कि अगर बाहर से कोई डिजीज उन पे अटैक कर रहा है तो वो तुरंत उनकी बॉडी एंटीबॉडी बना के वो कैसे उनसे तुरंत लड़ लेगी।
8: एग्जैक्टली, एग्जैक्टली,
10: बहुत जल्दी मतलब
8: इन्फेक्टेड हो जाता है, जल्दी जल्दी असर हो जाता है।
10: यस मैम,
8: तो इसका कारण तो आपने बता दिया कि ये है, ठीक है।
10: यस मैम,
8: अब मैं आपसे पूछूंगी कि टीनेजर्स को भी, अगर मैंने अभी आज ही कॉलेज में देखा कि एक बच्ची को वायरल फीवर था और उसने खाली पेट दवा खा ली।
10: यस मैम,
8: मतलब उसने कुछ खाया नहीं था सुबह से और खाली पेट दवा खा ली, ठीक।
10: यस मैम,
8: अब हुआ क्या कि उसकी पूरी बॉडी जो थी वो ठंडी पड़ गई।
10: यस मैम,
8: और उसके कारण से उसको इतना ज्यादा उसके पसीने छूटने लगे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी, ठीक है। तो इसका टीनेजर्स पे भी, स्पेशली गर्ल्स पे और जो 15+ हैं उन पे ज्यादा असर हो रहा है।
10: यस मैम, उसका मैम ये सबसे मतलब जो मेन चीज होती है कि वो होता है कि अगर पहली बात तो अगर हम सुबह कुछ खाए पिए नहीं है तो फिर अगर हम खाली पेट दवा खाते हैं तो दवा भी तो अपने आप में एक ड्रग टाइप का होता है,
8: एक्चुअली होता है।
10: यस मैम, तो फिर अगर आप कुछ खाए पिए नहीं, दवा खा लिए हैं तो वो अंदर जाके डाइल्यूट होगा।
8: हाँ,
10: तो अपना जब इफेक्ट दिखाएगा, अगर कोई मान लिया मेरे अंदर फीवर है, मैंने फीवर की कोई पैरासिटामॉल टेबलेट ले ली।
8: हाँ,
10: है और मैं कुछ खाए पिए नहीं हूँ तो उसका साइड इफेक्ट जब वो खुद पे डाइल्यूट होके आपके बॉडी में काम करने लगेगा तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ी दिक्कतें आएंगी। इसीलिए कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आप नहीं ज्यादा नहीं सॉलिड कोई नाश्ता ना करिए, फिर भी हल्का नाश्ता करके फिर भी कोई पेन किलर खाइए।
8: हाँ जी, संध्या के कहने का मतलब है कि अगर हम मॉर्निंग में आ रहे हैं, मतलब कॉलेज आ रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं या फिर किसी काम पे जा रहे हैं, तो सबसे पहला काम जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपने जा रहे हैं तो सबसे पहला काम जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपने कुछ नहीं अच्छा लग रहा है, अब आजकल के बच्चे तो वैसे भी कुछ नहीं खाते हैं, अगर आपको नहीं भी अच्छा लग रहा है ना तो आपने क्या करना है कि एक बिस्किट या फिर एक ब्रेड को अच्छे से रोस्ट करके और बटर करके आप वो ले सकते हैं, या फिर आप बच्चों को तो मलाई बंद बहुत पसंद आता है, आप वो चाय के साथ में, दूध के साथ में आप ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे ना तो आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रहता है एंड आपको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं।
10: यस मैम,
8: तो क्या नाम है संध्या जी, मैं चाहूंगी कि इसका निवारण है तो निवारण अभी हम जानेंगे, लेकिन एक गाना सुन लेते हैं।
10: ओके मैम,
8: आपको आपको तो सुनना ही नहीं होता, आप तो कुछ बोलते ही नहीं कि गाना सुनना है कि नहीं सुनना है।
10: मैम सुनना है मुझे, सॉन्ग सुनना है।
8: लेकिन उसके पहले बता दूं कि थैंक यू सो मच धर्मेंद्र जी, आपने बताया कि संध्या की आवाज कम आ रही थी। हाँ जी, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था लेकिन अब आ रही होगी ना। तो शुभ दोपहरिया महेंद्र जी एंड धर्मेंद्र जी और सनी पांडे एंड नाजिया जी, थैंक यू सो मच कि आप सभी लोग आते हैं और हमारे इस प्रोग्राम को एंजॉय करते हैं। तो चलें एक ब्रेक की ओर और आइए सुन लेते हैं, एंड ब्रेक के बाद इम्पॉर्टेंट है कि आपको इसका निवारण बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने बच्चों के इम्यून सिस्टम को

0: स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं एंड टीनेजर्स की इम्यूनिटी को आप कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो मिलते हैं आफ्टर ब्रेक, स्टे ट्यून।
1: हर कलाकार का सफर तन्हा शुरू होता है, लेकिन साथ होती है आपकी सद्भावना और आशीर्वाद की मंगल ध्वनि। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
3: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता, यानी मैं हूँ आपकी आज समता एंड हमारे साथ है आज संध्या। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं वायरल फीवर के उपचार, यानी कि अगर प्रकॉशन आपको घर में ही करना है तो कैसे कर सकते हैं।
4: यस मैम, बच्चों को खाना देने से पहले, टॉयलेट जाने से पहले या खाना खाने के बाद, या बच्चे खेल कर आते हैं तो सबसे पहले उनका हाथ धुलवाना न भूलें। और बच्चे जिस खिलौने से खेलते हो तो आप रोज तो उस खिलौने को धुल नहीं सकते, लेकिन हाँ दूसरे या तीसरे दिन उस खिलौने को जरूर धुल दें या सैनिटाइजर डाल दें।
3: हाँ जी साधना
4: मैम, इस तरीके से बच्चों का ध्यान रखना जरूरी है। मैम अच्छा, ये बच्चे कभी कभी ना बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड इसलिए होते हैं क्योंकि मैम बच्चों की इम्यूनिटी को भी ध्यान में रखते हुए हम इनसे मतलब सोल्यूशन पा सकते हैं वायरल फीवर से। उन्हें न्यूट्रिशन वाले एलिमेंट ज़्यादा दें, जैसे बच्चों को फल खिलाएं, हरी सब्जियां खिलाएं, दूध और नट्स शामिल ज़रूर करें उनके, तब ताकि उनका इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग हो सके। और हाँ, पानी तो बिल्कुल, आज के जनरेशन में बच्चे पानी मैम बहुत कम पीते हैं।
3: हाँ जी,
4: तो उनको मतलब आप ऐसा नहीं है कि आप उनको एक प्रेशर डाल दो, नहीं बेटा आपको इतने से इतने लीटर पानी पीना है।
3: हाँ जी, और इसी पे मुझे एक बात आ रही है संध्या, याद आ रही है, मेरी बेटी है और वो है 9 साल की, एंड ना वो इतना पानी वानी इतना कम पीती है यार, मतलब स्कूल से आने के बाद में ना उसे इतना बार बार कहना पड़ता है, और पानी के साथ साथ पता है वॉशरूम भी नहीं जाती है, मतलब जैसे लगता है ना कि बच्चे वॉशरूम को अवॉइड करते हैं। तो मैं उन पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ कि सबसे पहली नज़र बच्चों के इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक करने के लिए ये पहला कदम होता है कि आप उन्हें भरपूर पानी पिलाएं, पानी की मतलब नज़र रखें कि वो पानी पी रहा है, पी रही है कि नहीं, एंड वॉशरूम जाना, मतलब टॉयलेट को बच्चे बहुत ज़्यादा रोकते हैं, मतलब कहते हैं कि अरे यार मतलब नहीं जाना है खेल में, पढ़ाई में या फिर जानबूझ के। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं पेरेंट्स को ध्यान में रखनी चाहिए। और मैं तो पता है मैंने तो एक स्टिक बनाई हुई है घर पे संध्या।
4: क्या मैम?
3: स्टिक बनाई, डंडा बनाया हुआ है मैंने।
4: हाँ।
3: और जैसे मैं, अगर वो स्कूल से आती है, अगर उसने पानी नहीं पिया, मैं पूछती हूँ घर जा करके मम्मी से कि इसने पानी पिया था कि नहीं पिया था, इसकी पूरी वाटर बॉटल खाली हुई कि नहीं।
4: अगर वो ना पिए तो फिर आप उसे पनिशमेंट देती हैं स्टिक से।
3: हाँ जी
4: मैम, तब तो वो डरती होगी, इसलिए डर की वजह से पानी पीती हूँ।
3: डरती है, बहुत डरती है, डंडा मेरा बना हुआ है पता है, और उसके बाद से जब मुझे लगता है कि मेरे जाने से पहले ही वो पूरा मुझे बताती है कि देखो मैंने पूरा पानी पिया था, आज मैंने ये किया था वो किया था। और शाम को जब वो ट्यूशन से आती है, सबसे पहले मैं कहती हूँ तुम वॉशरूम, मतलब पहले पानी पिला देती हूँ, एक गिलास आधा गिलास पानी पियो, उसके बाद वॉशरूम।
4: मतलब मैम वो अपना पूरा डे वर्क आपको बताती है,
3: डे वर्क बताती है। हाँ हाँ, और रात में भी कि मैंने इतने गिलास पानी पिए, ये वो। और पता है सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि ज्यादा पानी पीने से ना आपकी स्किन ग्लो करती है।
4: यस मैम।
3: तो मैंने उसके अंदर ये बात डाल दी है। तो एक दिन ऐसे ही हम लोग लेटे हुए थे तो बोली कि ना आपकी स्किन क्यों इतनी अच्छी लगती है, मतलब ग्लो करती है। अच्छी क्या, ग्लो करती है। तो मैंने बोला कि देखो ऐसा है ना कि मैं पानी बहुत पीती हूँ और पानी पियोगी ना तो तुम्हारी स्किन बहुत ग्लो हो जाएगी, फेयर हो जाएगी, अच्छी लगोगी। कुछ भी पहनोगी, कुछ भी खाओगी, जितना जंक फूड्स खाओगी, बाहर का खाओगी, वो तुम्हारी स्किन पे असर नहीं पड़ेगा।
4: लिटरली मैम, मैंने आपको खुद देखा, बहुत पानी पीती है।
3: मुझे ना मुझे लगता है कि पानी ये एक सीक्रेट चीज थी। तो इस सीक्रेट को मैंने खोला था, मैंने श्वेता को बताया था, मेरी फ्रेंड थी यहाँ पर, मैंने उसको बताई थी ये बात कि पानी पियोगे ना तो आपका कलर फेयर होगा, आपके पिंपल्स जाएंगे और स्किन आपकी शाइन करेगी। आप कुछ भी नहीं लगाओगे ना, एक्चुअल में स्किन जब शाइन करती है तो उसको हमें कैसे पता लगाना होता है, जब आप मॉर्निंग में नहा के आते हैं, ठीक है, नहाने के बाद जब आप तुरंत आकर के आपने शीशे में देखा और बिना क्रीम लगाए हुए जो नाक के पास में, चीक्स के पास में जो शाइन करती है स्किन, ये होती है रियल
4: नेचुरल शाइन।
3: हाँ, नेचुरल शाइन होती है। उसके बाद तो आपने क्रीम लगाना है, जो भी लगाना है। तो मैंने उसके दिमाग में ये बात डाल दी है कि अगर तुम्हें सुंदर बनना है ना तो तुम पानी, क्योंकि बच्चों को ना ये सब बातें जल्दी समझ में आती हैं।
4: और मैम, अगर बच्चे पानी तो पी ही रहे हैं लेकिन अगर घर पे आप जूस बना के दें, हाँ, किसी चीज का सूप दें,
3: हाँ,
4: तो उससे भी बच्चे हाइड्रेट रहेंगे।
3: हाँ जी।
4: और उससे भी मान लिया कि अगर दाल बनाया और दाल का
3: पानी दे दिया,
4: अरे तो फिर आप उन्हें अपने जान में वो जूस पिला रहे हैं, लेकिन उनके लिए आप एक इतनी अच्छी पावर वाली चीजें उन्हें दे रहे हैं कि वो उनकी वजह से बहुत ज्यादा सेफ रहे।
3: एग्जैक्टली। और पता है, दाल के पानी में हल्का सा नींबू डाल दिया, काला नमक डाल दिया, उससे फ्लेवर चेंज हो जाता है।
4: यस मैम।
3: और इस समय जो वायरल फैला हुआ है ना, उसमें तो ये बेहद अच्छा काम करता है। एंड वायरल के लिए मैं एक और अच्छे टिप देना चाहती हूँ, वो ये है कि वायरल के बाद में, दवाइयाँ खाने के बाद में ना, आपका मुंह फीका हो जाता है, जुबान बहुत फीकी फीकी सी हो जाती है।
4: Yes, ma'am.
3: तो आपको करना क्या है कि आपने नींबू लेना है और आधा कर लेना है और उसको तवे पे पूरा सेक लेना है, बहुत ही अच्छे से उसकी जो स्किन होती है, बाहर की स्किन होती है, वो बिल्कुल जल जानी चाहिए, हल्की सी जल जानी चाहिए, काली हो जानी चाहिए। एंड उसके ऊपर ना आप ना काला नमक एंड काली मिर्च हल्की सी ऊपर से डाल दीजिए एंड वो पूरा नींबू आपको मतलब जुबा पे, मतलब जैसे नहीं कुछ भी, जैसे उसके ड्रॉप को डालिए जुबा पे और उसको अच्छे से पूरा, उसका नींबू को पूरा मतलब पीना है उसका रस को। मुझे इतना अच्छा लगता है ना, मेरे मुंह में पानी आ रहा है।
4: मैम रहने दीजिए, मैं भी आप
3: है ना
4: तो पता है, के नाम से मेरे
3: तो पता है, वो जरूर से करें, उससे आपकी मुंह का फ्लेवर बदलेगा एंड आपको भूख लगेगी।
4: यस मैम,
3: है ना।
4: और मैम, हाइड्रेट रहने से जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है, वायरस उससे अच्छा बहुत मतलब लड़ने में सबसे ज्यादा
3: फाइट करने के लिए ना, ये बहुत ज्यादा
4: हाइड्रेट रहना बहुत बेस्ट है। यस मैम। और मैम, वो अगर रेगुलर नहीं या पर मंथ नहीं, लेकिन हाँ 6 मंथ में तो फ्लू वैक्सीन आता है, उसे जरूर लगवाएं बच्चे को।
3: हाँ।
4: बहुत लोग मैम सोचती है ये वैक्सीन लग रही है, मैं क्या लगवाने जाऊं, लेकिन नहीं, वो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। मैम उन्हें फ्लू का वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए।
3: बिल्कुल।
4: यस मैम।
3: और ऑप्शंस
4: मैम, और मैं सब लिसनर को और मैं आपको और खुद को मैं ये समझाती हूँ कि अगर कोई इन्फेक्टेड इंसान घर में है तो उनसे, बच्चों को तो सबसे पहले दूर रखो, भले उन्हें लेकिन उनसे ऐसे बता दो कि बच्चे को बुरा भी ना लगे कि मम्मी मुझे इनसे दूर रहने के लिए मना कर रही है, और आपका काम भी हो जाए, क्योंकि अगर कोई इन्फेक्टेड इंसान घर में है तो उससे बच्चे को दूर, खुद को भी दूर रखो, उसकी हेल्प करो लेकिन खुद को सेफ्टी में रखते हुए।
3: एग्जैक्टली। हम अभी संध्या की बात को यहीं स्टॉप करते हैं एंड कल संध्या हमारे अरविंद फ्रॉम मनकापुर, तो वो लिख रहे हैं आरजे मैम सॉरी कल के लिए, इट्स नॉट टू वरी, क्योंकि अरविंद जी मुझे आपका मैसेज मिल गया था फ्रॉम साइड उन्नति, तो मुझे इसके लिए आप बिल्कुल भी अपोलोजाइज ना करें, क्योंकि देखिए अच्छा आप खुद सोचो कि अगर आप कहीं गए हैं, मैं आपको ऐसा समझाती हूँ कि अगर आप किसी के घर गए हैं एंड जाते ही अगर आप वो घर वाले को आपने ये बोल दिया कि चलो सब लोग सो जाते हैं, और मतलब सॉरी आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है और आपने उस गेस्ट को देखते ही आपने ये बोल दिया कि अब कोई आपस में बात नहीं करेगा, चलो सोते हैं और फिर 4 बजे उठते हैं, तो वो उस गेस्ट को क्या फील होगा, आप मुझे ये बताएं। तो सेम थिंग ये है कि एक प्रोग्राम के लिए आप बाकी सारे प्रोग्राम्स को ऐसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं ना, और फिर उस प्रोग्राम को जो प्रेजेंट करती हैं आरजेस या करते हैं तो उनको तो फील होगा ही ना कि मतलब हम इतनी मेहनत से, आपको पता है कि हम लोग जो भी आप तक मैसेज पहुंचाते हैं, जो कंटेंट आपके लिए लेके आते हैं, हमें यूं ही नहीं मिल जाता है, हम उनके लिए घंटों बैठ करके मेहनत करते हैं। और हर दिन नया लाना इट्स नॉट पॉसिबल, बट आरजेस के लिए होता है, वो सर्च करते हैं सारी चीज़ों को, तब जा करके नई नई चीज़ें हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं और सही चीज़ें लेके आते हैं, फेक कुछ भी नहीं होता है।
4: सरी मैम, ये माइक के पीछे ना हम आरजे की एक अपनी एक खुद की एक स्ट्रगल होती है।
3: हाँ, स्ट्रगल होती है, बट लिसनर्स को कुछ लिसनर्स हमारे ऐसे हैं जो हमारी मेहनत को एवी समझते हैं, तो बट प्लीज़ ऐसा नहीं किया करिए। आपको नहीं सुनना था, आपने मैसेज आप चले जाते चुपचाप से, बट आप ये कह करके गए कि चलो अब 3 बजे मिलते हैं, तो इट्स नॉट फेयर ना, ठीक है। बट मेरे मन में कोई भी बात नहीं रहती, अभी आपने आज समता को जाना नहीं है क्योंकि आप बहुत ही जल्दी आए हैं और हमारे एफएम से जुड़े हैं। जो मेरे पहले लिसनर्स हैं, जो मेरी पहली लिसनर्स फ्रेंड्स हैं, फीमेल फ्रेंड्स हैं, आप उनसे पूछें कि आज समता क्या है और उनका नेचर कैसा है, तो इट्स ओके, बाकी सॉरी कहने की कोई नीड नहीं है हमें। आइए इसी खुशी में आपको गाना सुना देती हूँ, एक बहुत ही प्यारा सा। अरे कुछ नहीं महेंद्र जी, ये कब हुआ था, कब ऐसे ही बस मैसेज आ गया था, कोई बात नहीं है, ठीक है। चले तो सबको एक प्यारा सा गाना सुना देते हैं, आइए। और क्योंकि आज की प्लेलिस्ट के लिए आप लोग नहीं बता रहे, आज की प्लेलिस्ट जो है वो 70s की प्लेलिस्ट लगाई है मुकेश दा, उषा जी, तो आइए इंजॉय करते हैं इस प्यारे से गानों को, आते हैं ब्रेक के उस पार। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, स्टूडेंट एंड टीचर के बीच का कॉम्बिनेशन।
4: मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ।
3: हाँ जी, मी ऑल्सो। तो चले फटाफट अभी सुना देते हैं गाना, और ये गाना स्पेशली मैं बता दूं कि ये गाना डेडिकेट टू अरविंद जी, ठीक है अरविंद जी, आइए सुनते हैं।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंब्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आगे आपकी आज समता और साथ में है संध्या जी। तो अभी स्टूडेंट और बात हो रही थी कि स्टूडेंट और टीचर का जो तालमेल है, हम उसको किस तरीके से एक फॉर्म में डालने का काम करेंगे। तो चले शुरू करें।
6: यस मैम।
5: तो टॉपिक क्या है पहले, कि एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच का जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है।
6: यस
5: आइए, तो मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले मुझे कुछ आपसे पूछना है, ठीक है?
6: ऑब्वियसली मैम, वैसे आप तो मेरी मैम है ही है। मैं हमेशा से आपकी स्टूडेंट ही रही हूँ रियल लाइफ में।
5: जी तो पूछू।
6: यस मैम।
5: संध्या क्या बात है, कुछ पिछले दिनों से देख रहे हो कि तुम क्लास में कुछ खोई खोई रहती हो और 12th बोर्ड एग्जाम भी खत्म हो गए, तो अब तुम्हें खुश होना चाहिए ना, कोई परेशानी है क्या?
6: मैम नमस्ते।
5: नमस्ते।
6: हाँ मैम, सच कहूँ तो मैं बहुत ज्यादा करती हूँ।
5: क्यों?
6: समझ नहीं आ रहा है कि 12th के बाद आगे क्या करूँ।
5: ओके, तो बैठो अभी मेरे साथ और अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारी उलझन उस उम्र में स्वाभाविक है जिस उम्र में तुम हो, ठीक है? एंड 12th के बाद से अचानक जिंदगी का एक बड़ा फैसला लेना पड़ता है, तो तुम किस बात को लेकर परेशान हो?
6: मैम दिक्कत ये है कि मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एवं क्रिएटिंग राइटिंग में बहुत इंटरेस्ट है।
5: हाँ।
6: पर मैं इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहती
5: हूँ। ओके।
6: लेकिन कल रात मेरे पापा मेरे पास आए बैठे और कहा कि तुम्हें BTech इंजीनियरिंग करना।
5: ओके।
6: क्योंकि उसमें करियर सेफ है और अच्छी सैलरी मिलती है।
5: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये बात है कि तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हैं कि तुम एक सेफ रास्ता चुनो।
6: जी मैम, पर मेरा मन उस तरह बिल्कुल नहीं लगता। अगर मैंने उनके प्रेशर में आके इंजीनियरिंग कर भी ली मैम, तो कभी दिल से काम नहीं कर पाऊंगी। मुझे डर है कि मैं अगर असफल हो जाऊंगी तो मेरी बहुत सी फ्रेंड्स भी इसी कंफ्यूजन में है कि पेरेंट्स की पसंद चुने अपने दिल की। मैम
5: तो देखो भाई, ये तो होता ही है ना कि हम दो नाव में आ जाते हैं, कि हम पेरेंट्स को अगर इग्नोर कर रहे हैं तो भी हम बहुत परेशान होते हैं, और अपनी बात को चुनते हैं तो भी बहुत सही, मतलब वो बात है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि हर साल ऐसे काफी बच्चे जो होते हैं, मैं देखती हूँ कि इस चौराहे पर आकर के खड़े हो जाते हैं जहाँ पेरेंट्स कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, वे तुम्हारी सुरक्षा को लेकर डरे रहते हैं, लेकिन उनका तरीका कभी कभी बच्चों पर भारी दबाव बना देता है। जिस फील्ड में बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है, वहाँ वो उन्हें पूरी पोटेंशियल कभी नहीं दिखा सकता है।
6: जी मैम, तो मैम मैं क्या करूँ, पापा की बात मान लूँ या उनसे अपनी बात कहूँ?
5: नहीं संध्या, लड़ना या बिना मन के बात मान लेना किसी भी प्रॉब्लम का हल नहीं है। तुम्हें उन्हें खुलकर बताना चाहिए, और सबसे पहले तो तुम अपने इंटरेस्ट वाले फील्ड यानी कि जो फोटोग्राफी और मास कम्युनिकेशन है उसके बारे में पूरी तुम रिसर्च कर लो और देखो कि आगे क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, उसमें कौन से कॉलेजेस हैं, आपके लाइफ के क्या, आपके फ्यूचर के क्या स्कोप्स हैं, और आपने अगर पूरी जानकारी ले भी ली है तो आपके माता पिता जो हैं वो आपके पक्ष में मजबूती से खड़े होते हैं या नहीं?
6: क्या मैम वो मेरी बात मानेंगे तब?
5: जब वे देखेंगे कि सिर्फ ये शौक नहीं है, ये अपनी जो मेरी बेटी है वो सिर्फ शौक के पीछे नहीं भाग रही है, उसका एक पूरा करियर प्लान है, तो उनका डर कम होगा। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात कर सकती हूँ, और तुम्हारे पेरेंट्स को समझाना बहुत ज़रूरी है। और ज़बरदस्ती थोपा गया करियर हमारे बच्चे की मेंटल हेल्थ को भी टेंशन में देता है। और रही बात आपके पैशन की, तो वो आपको तो फील्ड में कभी भी सक्सेस दिलाई सकता है।
6: थैंक यू मैम सो मच, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके मैम बहुत खुद को लाइट फील कर रही हूँ।
5: जी
6: आज ही मैं अपने पसंद के कोर्स का एक लिस्ट बनाऊंगी और उसका पूरा करियर स्कोप तैयार करूंगी।
5: ओके
6: और फिर मम्मी पापा से बैठकर बात करूंगी।
5: बहुत बढ़िया। अब हमेशा याद रखना कि अगर करियर तुम्हारा है, तुम्हारा फैसला है, तुम्हारी काबिलियत है और रुचि के हिसाब से ही होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अ ब्राइट फ्यूचर।
6: थैंक यू सो मच, यू आर माय लवली टीचर।
5: ओहो थैंक यू सो मच।
6: ये इतना अच्छा एडवाइस आपने दिया, आज हम जैसे बहुत सारे स्टूडेंट के जो प्रॉब्लम है आपने वो सॉल्व कर दी मैम, थैंक यू सो मच।
5: देखो ऐसे ही होता है, जब हम अपनी प्रॉब्लम को किसी भी टीचर के सामने खुल के रखते हैं ना, तो काफी चीजों का निवारण तो बस चुटकियों में हो जाता है। तो ये पूरी चीज बताने का मतलब सिर्फ ये था स्टूडेंट्स कि आप भी अपनी लाइफ को इस तरीके से अपने पेरेंट्स से खुल के बात करेंगे, अपनी बात को रखेंगे, तब जा करके आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी, जैसे संध्या की हो गई है ना संध्या?
6: यस मैम, तो सच में आपने एकदम से मेरी टेंशन ही खत्म कर दी, इतना अच्छा सलूशन दे के।
5: तो चलिए, जैसे संध्या खुश है वैसे हम चाहते हैं कि हमारे सभी लिसनर्स भी खुश हो जाएं। तो अभी एक लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के उस पार आएंगे फिर एक प्यारा सा टॉपिक यानी कि मॉरल स्टोरी लेकर के। तो बस हम यू गए
6: क्यों आए
5: स्टे ट्यून्ड।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9970931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: बता शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका। वेलकम बैक दोस्तों, आ गई है आपकी आज समता। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं अब जो कि है मॉरल स्टोरी टाइम। तो आज की मॉरल स्टोरी बताएंगी आपको संध्या जी। तो चलिए संध्या शुरू करते हैं और मॉरल स्टोरी को हमें ऐसे प्रेजेंट कर मतलब सुनाना जैसे लगे कि हाँ हम लोग वाकई में उस कहानी से कुछ प्रेरित हो रहे हैं।
2: यस मैम। बहुत समय पहले की बात है, एक कछुआ था जो किसी गांव में एक तालाब में रहता था। उसकी मित्रता दो बगुलों से हुई थी।
1: किससे हुई थी?
2: दो बगुलों से।
1: बगुलों से हुई थी।
2: यस मैम। तीन दोस्त मिलकर एक साथ खूब मजा किया करते थे। एक बार उनकी गांव में बारिश नहीं हुई।
1: अच्छा।
2: जिस कारण वहां बहुत भयंकर सूखा पड़ गया। नदी तालाब सूखने लगे, खेत भी मुरझा गए, आदमी और पशु पक्षी सब प्यासे मरने लगे।
1: ओके।
2: वह सब अपनी जान बचाने के लिए गांव छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाने लगे। बगलों ने ये भी अन्य पक्षियों के साथ दूसरी जगह जाने का फैसला ले लिया, क्योंकि मैम जब पानी नहीं था तो हाँ। फिर वो दूर जाएंगे ही कहीं कुछ सरवाइव करने के लिए। जाने से पूर्व वह अपने मित्र कछुए से मिलने गए। उनके जाने की बात सुनकर कछुए ने उनसे भी अपने को साथ ले चलने के लिए कहा। उसने कहा कि मुझे भी साथ ले चलो। इस पर बगुले ने कहा कि मैं उसे वहां छोड़कर नहीं जाना चाहती, परंतु मुश्किल यह थी कि कछुआ तो उड़ नहीं सकता था और वह उड़ नहीं सकता तो कहीं जा भी नहीं सकते।
1: बिल्कुल।
2: उनकी बात सुनकर कछुआ बोला कि ये सच है कि मैं उड़ नहीं सकता, परंतु उनके पास इस समस्या का हल है।
1: ओके।
2: कछुए की बात सुनकर बगलों ने उनसे तरीका पूछा। कछुआ बोला, तुम एक मजबूत डंडी ले आओ। उस डंडी के दोनों कोनों पर तुम अपनी चोट से पकड़ लेना और मैं उस डंडी को बीच में पकड़ कर लटक जाऊंगा।
1: अच्छा, उसने कहा बगुले ने
2: ये बात उसने कछुए ने बगुले से कही कि तुम जाके एक डंडी ले आओ और मैं उस दोनों साइड में तुम दोनों मतलब बगुले इधर उधर पकड़ लेना
1: जी,
2: और फिर मैं बीच में उसको पकड़ लूंगा अपने मुंह से। फिर क्या था, फिर वो बगुले डंडी लेकर आए और अपन इधर उधर दोनों साइड में अपने चोट से उसे पकड़ लिया लकड़ी को
1: जी,
2: और कछुआ बीच में उसको पकड़ लिया डंडे को।
1: ओके।
2: इस प्रकार वो कछुए को लेकर उड़ गए। तो इससे हम ये मतलब वो कर सकते हैं कि हाँ, अपनी जान बचाने के लिए हम दूसरे को खतरे में नहीं डाल सकते।
1: हाँ।
2: यस मैम।
1: ओके, तो इसका मॉरल स्टोरी क्या हुई
2: जी मैम?
1: इसकी मॉरल क्या निकला, इसमें इस कहानी की सीख क्या थी?
2: इस कहानी की सीख ये थी कि किसी को मूर्ख नहीं समझना चाहिए ना, किसी को मूर्ख बनाना चाहिए।
1: किसी को मूर्ख नहीं समझना चाहिए और किसी को मूर्ख बनाना नहीं चाहिए।
2: हाँ, क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि मैं बहुत शार्प माइंड की हूँ और सामने वाला इंसान बेवकूफ है, तो ये गलती ना करें।
1: हाँ,
2: सब अपने आप में परफेक्ट होते हैं। किसी को अपने खुद को बहुत ज्यादा सही और स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें
1: और दूसरे को बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। एग्जैक्टली, यानी कि हमें अपने आगे ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ही हम हैं जहाँ और पानी कम है, ऐसा मतलब ऐसी लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो, क्योंकि ऐसा कई बार हमने देखा है कि कुछ लोग ओवर स्मार्टनेस में जब आ जाते हैं तो उन्हें ये लगने लगता है कि हम जैसा कोई दुनिया में है ही नहीं, है ना, और वो फिर ऐसी बहुत सारी गलतियाँ कर जाते हैं। तो आज की मॉरल स्टोरी आप लोगों ने सुनी कि भाई कभी भी ऐसा अपने आप को ना समझें कि हम जैसा इंसान कोई इस दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं जब हम जान तो लेते हैं कि हाँ हम मतलब हम जैसा कोई नहीं है, चाहे वो बच्चों के अंदर हो चाहे बड़ों, तो फीलिंग बच्चों के अंदर भी बड़े अगर यही डालेंगे कि अपनों से बड़े का सम्मान और अपनों से बराबर वाले को प्यार देना चाहिए, ताकि उनके अंदर ये फीलिंग कभी ना आए कि हम जैसा तो कोई इंसान और

0: दुनिया में है ही नहीं।
1: मैम जानती हूँ उसमें क्या हुआ था कि वो जब कछुए ने बीच में पकड़ा था और फिर वो लोग ऊपर जब उड़ने लगे तो वहाँ का सीन बहुत अच्छा हो गया था। तो फिर बगले ने बोला कि ये देखो सीन कितना अच्छा है। बगले तो उड़ रहे थे, एंजॉय कर ही रहे थे, तब तक कछुआ भी बोल दिया हाँ कितना अच्छा मौसम है। फिर क्या हुआ, कछुए ने मुंह खोला, बगला तो ऊपर रह गया लेकिन कछुआ सीधे नीचे आ गया था।
0: नीचे आ गया।
1: हाँ, तो यही था, वो बहुत खुद को बहुत चालाक समझ रहा
0: चालाक समझ रहा था और वो सोचता था कि हमारे जैसा कोई तो चालाक है ही नहीं,
1: ही नहीं।
0: लेकिन कछुआ तो कछुआ,
1: कछुआ
0: उसने
1: तो कछुआ।
0: अपनी जान भी बचाई और उसको मूर्ख भी बना दिया।
1: यस मैम,
0: है ना। तो यही होता है कि जब हम अपने से बराबर वालों के साथ में जब हम कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि ईश्वर ने हर किसी के अंदर कोई ना कोई गुण जरूर दिया ही दिया है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बराबर हो, सम्मान हो, सभी को भी बराबर सम्मान देना चाहिए क्योंकि ईश्वर ने हर किसी को एक ना एक गुण जरूर दिया है,
1: स्पेशल क्वालिटी सबके अंदर डाल ही दी है। किसी को कभी कम नहीं समझना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो संध्या, आज के शो को हम लोग करते हैं यहीं पर एंड और हम चलते हैं, लेकिन कल हम फिर दोनों मिलेंगे, यानी सेम प्लेस सेम टाइम पर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर,
1: बाय
0: बाय।

0: करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
0: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
0: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: हाँ जी, हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी आरजुनती, मौजूद हूं आप सभी के साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। एंड क्योंकि आज है आपका ट्यूसडे, और ट्यूसडे में आज मेरे दिमाग में कुछ ज्यादा ही खुरापातें चल रही है, तो आपके अपने कॉल ट्यून गोंडा में हम लेकर आ गए हैं एक जबरदस्त वाला प्रैंक ये होने वाला है कि भैया हमारे दिमाग में था कि आज फरमाइशों को पूरा करते करते क्यों ना आपके साथ छोटा सा गेम खेल लिया जाए। तो आर यू इंटरेस्टेड इन गेम? बताइए अगर आप इंटरेस्टेड हैं ना, तो फटाक से उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए 6393-316-429। तब तक के लिए हम उनसे बात कर लेते हैं जो जुड़े हुए हैं और जो हमारे साथ अभी तक बने हुए थे, इंतजार कर रहे थे कि कब उस गेम की स्टार्टिंग हम करेंगे, कब हम बात करेंगे। और लेट्स सी हमारे पास कौन है आज कॉल टीम गोंडा में। हेलो भैया, नमस्कार, आपकी आवाज़ बड़ी स्लो आ रही है। हाँ जी, पहचान गए हम, आप हमें पहचान गए। अगर रईस साहब, क्योंकि हमने आपसे कहा था कि हमारे दिमाग में थोड़ा सा खुरापात आ रहा है, बाहर बारिश का मौसम था, सूरज निकल आया है, रेनबो आने वाला है ऐसा मुझे लग रहा है, तो आपकी जिंदगी में भी सात रंग भरे क्या?
4: जी?
3: आपकी जिंदगी में भी सात रंग भरे क्या? चलिए, तो उन सात रंगों में से आज मैं सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत रंग पकड़ के लेकर आई हूँ आपके लिए। और रंग में है हमारे पास एक टंग ट्विस्टर। आज मेरे पास आपसे एक लाइन बुलवाने के लिए है, तो क्या आप तैयार हैं बोलने के लिए?
4: कोशिश करता हूँ।
3: पक्का?
4: बिल्कुल।
3: चलिए, तो पहला जो हमारा लाइन है आपके लिए वो ये है कि जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला।
4: जिस ताले की चाबी
3: उस चाबी का ताला। अब पांच बार इसको फटाक फटाक से बोलिए जरा। अब इसी लाइन को पांच बार जल्दी जल्दी बोलिए।
4: जल्दी जल्दी।
3: बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया। अब बारी है हमारे अगले लिसनर की। तो भैया हम अपने गाने की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आइए एंजॉय करते हैं सुनील जी की फरमाइश, और आप प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि ये टंग ट्विस्टर तो हम लेकर आपके लिए आ चुके हैं। जिस चाबी का ताला उस ताले की चाबी। स्टे ट्यून्ड।

कुशवाहा जी की फरमाइश, जा सजना तुझको भुला दिया, लेकिन हम नहीं भूलने देंगे आपको कि आप सुन रहे हैं कॉल ट्यून गोंडा 89.6 FM, आपका अपना रेडियो ज्ञानस्थली। और आज क्योंकि हमारे दिमाग में सुबह से चल रहा है ताला चाबी, और हमने सोचा क्यों ना आपके दिमाग के भी ताले खोल दिया जाए चाबी लगा करके। तो इसीलिए सैटरडे का इंतजार ना करते हुए आपकी कॉल ट्यून गोंडा में आज थोड़ा सा टंग ट्विस्टर वाला फन हो रहा है। और अगर आप बोलने के लिए तैयार है ना कि ताला चाबी चाबी ताला, तो जरा हमें कॉल मिलाइए 6393316429 पर, अपनी फरमाइशों को भेजते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल चलते हैं चैट बॉक्स में आपके मैसेजेस को देखने। एंड हमारे साथ जुड़े हैं धर्मेंद्र मोहन जी, आपका स्वागत करते हैं। आशु मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हैं लखनऊ से, आपका भी स्वागत करते हैं। अरविंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लिख रहे हैं हेलो नति मैम कैसी हैं आप, मैं ठीक हूँ आप बताइए आप कैसी हैं। एंड लिखा है आज कॉल नहीं करूँगा, नहीं तो नति मैम फंसा देंगी किसी ना किसी टॉपिक पर, आज दूर से केवल प्रोग्राम सुनूंगा। अजी ये क्या बात होती है भैया, हम कोई टॉपिक वॉपिक नहीं देने वाले, हम बस एक ही लाइन देंगे। आज हम सुबह से सबके साथ ताला चाबी ही कर रहे हैं, तो सोचा हम आपके साथ क्यों ना करें। आफ्टर ऑल वी आर फैमिली ना, हम लोग कहते भी है कि ज्ञानस्थली फैमिली में आपका स्वागत है, तो इस फैमिली में थोड़ी सी मस्ती तो बनती है बॉस। एंड इसके बाद आई है हमारे पास अगली फरमाइश किसी और की नहीं, हमारी देवी प्रसाद जी की है। आज फिर से हमारे सैड सॉन्ग से शुरुआत हुई है, आगाज हुआ है कार्यक्रम का, आई होप खत्म ये नहीं होगा सैड सॉन्ग पर, क्या ख्याल है आपका? अगर ऐसा है तो अपनी फरमाइशों को भेजते रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं कॉल ट्यून गोंडा विद राजू 89.6 FM रेडियो ज्ञानस्थली पर।

0: और भैया अगर आपको मेरी याद आ चुकी है तो जरा आइए और अपने कॉल को उठाइए, डायल कीजिए 6393316429, क्योंकि आज चुनौती आपका इंतजार कर रही है और आप पता नहीं कहाँ हैं। फिलहाल हमारे साथ एक लिसनर जुड़े हैं, तो क्यों ना ताला चाबी जरा उनसे भी कर लिया जाए फिलहाल के लिए। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, आपका नाम?
1: मैं जुगल किशोर वर्मा, MP से।
0: ओह माय गॉड, तो हमारे पास भैया मध्य प्रदेश से कोई आया है और मैं सोच रही हूँ उत्तर प्रदेश वाले थोड़ा सा परेशान करें आपको तो कैसा चलेगा?
1: कोई नहीं करता है मैम परेशान सब अपने।
0: अरे हम है ना, आपने गलत नंबर पे अभी तक कॉल किया था, आज आपने सही नंबर पे कॉल कर दिया है ना, अब आप देखिए हम कितना परेशान करते हैं आपको।
1: अच्छा
0: अभी तक आपका राइट नंबर लग नहीं रहा था एक्चुअली। चलिए अच्छा। तो आपसे 5 बार आपको एक लाइन बोलनी है और वो लाइन है, जिस ताले की चाबी उस ताले की आगे बोलिए।
1: जिस ताले की चाबी,
0: हाँ, और
1: पर आगे क्या बोला मैम?
0: आगे हमने कुछ बोला ही नहीं था। जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला,
1: जिस चाबी की ताली जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला।
0: हाँ जी, अब 5 बार इसको फटाक से बोल दीजिए।
1: जिस चाबी की ताली नहीं आएगा मैम।
0: अरे ऐसे कैसे नहीं आएगा, आएगा आएगा आएगा आएगा, मुझे यकीन है आएगा।
1: जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस चाबी की
0: बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने कहा था ना आज आपका राइट नंबर लग गया है। चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंजॉय करते रहिए कॉलर ट्यून गोंडा। तो अगर आप भी करना चाहते हैं मेरे साथ ताला चाबी तो जरा उठाइए अपना फोन, डायल कीजिए 6393316429, और अगर नहीं तो भैया अपने गानों की फरमाइश भेजने के लिए कीजिए क्योंकि मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। फिलहाल आइए ट्यून कर लेते हैं हमारे रईस साहब की फरमाइश, दलाल फिल्म से गुटर गुटर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: भैया आज हमने लोगों के बीच में जो दहशत बैठा रखी है उसी खौफ को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ जुड़ी है एक और लिसनर, तो देखते हैं कौन है। हेलो
1: हेलो, गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड आफ्टरनून जी, आपका नाम?
1: जी गुलफा सिद्दीकी।
0: अरे वाह, आइए मोहतरमा, आपके इंतजार में हम पलके बिछाए बैठे थे।
1: अरे वाह, थैंक यू।
0: तो क्या ख्याल है, आपके साथ भी हो जाए ताला चाबी?
1: जी बिल्कुल हो जाए, देखते हैं।
0: आज सैटरडे तो है नहीं, लेकिन फन हम बिल्कुल वही कर रहे हैं।
1: मतलब कितना आगे बढ़ पाएंगे नाव लेके अपनी?
0: बढ़ जाएंगे, इस किनारे से उस किनारे तक तो पहुंच ही जाएंगे, और कहीं ना सही। तो
1: जी जी बिल्कुल, फिर शुरू हो जाए।
0: चलिए, तो हमारा लाइन है, जिस चाबी का ताला उस ताले की चाबी।
1: जिस ताले की चाबी उस ताले की नहीं बोल पाएंगे मैं।
0: अरे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसा हमने सुना था।
1: जी मैम, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला। नहीं,
0: हाँ, अरे सही तो था
1: जी, ऐसा ही था ना?
0: ऐसा ही था। आप ही कंफ्यूज हो गई
1: जी, हम भी वो हो गए। और जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला।
0: अब फटाक से पांच बार।
1: जिस चाबी के नहीं मैम, नहीं बोल पाएंगे, गलत हो रहा है।
0: अरे गलत होने दीजिए, गलती तो होती रहती है।
1: जी मैम, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला।
0: क्या बात है
1: मैम, गलत है।
0: चलिए कोई बात नहीं, कोशिश बहुत खूबसूरत की थी आपने। अब आप अपना गाना बता दीजिए मुझे।
1: जी गाना हमें सुना है अजय मूवी का, चम्मक चलो जरा धीरे चलो।
0: सच में मैं तो कह रही हूँ चम्मक चलो थोड़ा धीरे बोल लो। ट्रक ट्विस्टर होता है तो बस यही याद आता है।
1: कैसे बोल सकते हैं जब आपको सुनते हैं?
0: अरे वाह, बस यही तारीफ सुनने के लिए ही मैं करती हूँ जो भी करती हूँ।
1: आपको सुन के कोई धीरे बोल सकता है? जो धीरे बोलता होगा वो भी तेज बोलने लगेगा।
0: आए हाय हाय हाय, ये मेरी तारीफ में मैं चार चांद लगा रही हूँ।
1: जी मैम बिल्कुल, आप हैं तारीफ के काबिल हैं आप।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और बात करके बहुत अच्छा लगा। तो भैया ये तो थी हमारी गुलफ़्शा जी। आइए बढ़ते हैं अगले गाने को ट्यून करने के लिए। अगला सॉन्ग हमारे पास अमित जी का है, तो दोस्त बनके एंजॉय कीजिए, और हम मिलेंगे अगली फरमाइश पर करते हुए दोबारा से ताला चाबी। स्टे ट्यून्ड।

0: देता।
1: और अगर आप हमारे दोस्त बन चुके हैं तो हमारी दोस्ती को देख लीजिए, क्योंकि हमारे बीच में जुड़ी हैं एक और प्यारी सी लिसनर। लेट्स सी कौन है और हम उनसे क्या करा सकते हैं। हेलो
2: हेलो
1: अंजी, आपका नाम?
2: रोशनी रावत।
1: ओह माय गुडनेस, रोशनी जी आप आई, रोशनी आई।
2: बिल्कुल बिल्कुल, हम बिखेरते हुए रोशनी आते हैं।
1: हाँ वही मैं सोचूं, आपके आते ही बत्ती क्यों जल गई थी। फिलहाल कैसी है आप?
2: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए कैसे? और आपका प्रोग्राम सुन सुन के ना बहुत ज्यादा ही अच्छे हो गए हैं।
1: अरे बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि जो वैसे तो कॉलर ट्यून में होता है कि हम सैटरडे सैटरडे कॉल लेते हैं, लेकिन आज मेरे दिमाग में खुराफात बहुत देर से चल रही थी।
2: ये होना चाहिए, हमेशा होती रहनी चाहिए खुराफाते, क्योंकि ऐसे ही तो खुराफाते करेंगे जब आप हम लोगों को लिसनर को ऑन एयर आने का मौका मिलेगा।
1: बिल्कुल, तो चलिए ताला चाबी करते हैं।
2: बिल्कुल करते हैं।
1: आपको याद है ना हम बहुत देर से बोल रहे हैं, किसकी चाबी किसका ताला,
2: किसकी चाबी किसका ताला?
1: अरे नहीं आप बताइए, किसकी चाबी थी किसका ताला था?
2: मैंने सुना ही नहीं पहले था, मैंने तो।
1: अरे ओ माय गॉड, दोबारा बोलना पड़ेगा मतलब मुझे?
2: हाँ जी हाँ
1: जी। जिस चाबी का ताला,
2: जिस चाबी का ताला,
1: उस ताले की चाबी,
2: उस ताले की चाबी।
1: आप फटाक से पांच बार।
2: जिस ताले की चाबी उस, सॉरी, जिस ताले की चाबी उस ताले का।
1: हाँ उस ताले का। उस ताले का चाबा।
2: नहीं गलत है।
1: कोई बात नहीं, एक बार और कोशिश बनती है।
2: जिस ताले की चाबी उस ताले की चाबी।
1: जिस ताले की चाबी उस ताले की चाबी।
2: नहीं गलत हुआ, जिस ताले की चाबी
1: जी,
2: चाबी का ताला।
1: हाँ एक बार तो सही हो गया, चलिए चार बार और बाकी है।
2: अच्छा, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस चाबी की।
1: हाँ जी हो गया, जिस चाबी की।
2: सॉरी।
1: कोई बात नहीं, एक्चुअली बस ये फन करने का तरीका था, हमने सोचा सबका मूड लाइट लाइट किया जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे भी बहुत मजा आया। आप आई, रोशनी आई।
2: बिल्कुल आई,
1: हमेशा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो थी हमारे साथ रोशनी रावत जी, और आई होप आपको भी आज मजा आ रहा होगा। बेवजह मौसम जो हमने क्रिएट किया हुआ है, जिस तरह से आजकल बिना बारिश यानी बिना मौसम बारिश हो रही है, ऐसे ही आज हमारे चेहरे पे भी बिना खुशी हंसी आ रही है। आइए चलते हैं आपके चैट बॉक्स में, और हमारे चैट बॉक्स में बहुत सारे लिसनर्स जुड़ गए हैं, तो आपका स्वागत कर लेते हैं पहले तो, एंड उसके बाद हम चलेंगे हमारे अगले गाने की तरफ। जुगल जी हमारे साथ जुड़े हैं फ्रॉम एमपी, आपका स्वागत करते हैं। एंड इसके बाद है धर्मेंद्र जी का मैसेज। उन्नति जी नमस्ते, बेस्ट ऑफ लक। मैंने सुना है आज आपके घर से फोन आया था, चाबी ताला कहाँ रखे हो, मुझे मार्केट जाना है, तभी तो मेरे दिमाग में ताला चाबी हो रहा है। एंड इसके बाद हमारे साथ जुड़े हैं पप्पू जी, आपका स्वागत करते हैं। गुड आफ्टरनून लिखा है आपने, गुड आफ्टरनून टू यू। गुड आफ्टरनून अति मैम लिखा है नाजिया अंसारी जी ने, गुड आफ्टरनून टू यू। एंड बाबू जी आप मुझे आप कॉल कर सकते हैं, अब लग जाएगा आपका कॉल, क्योंकि हमारा फ़ोन एकदम फ्री में बैठा हुआ है, और फ्री लोग मुझे पसंद नहीं आते, सिर्फ गिफ्ट पसंद आते हैं। एंड इसके बाद महेंद्र जी जुड़े हमारे साथ, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून, नमस्ते आशुनदी मैम जी, नमस्ते, कैसे हैं आप, एंड गुड आफ्टरनून टू यू। इसके बाद आप ही के लगातार मैसेजेस, आपकी बहुत सारी बातें। रोशनी रावत जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। एंड दहशत तो मेरे अंदर है आपकी उन्नति मैम, लिखा है अरविंद जी ने, इसी दहशत को हम और बढ़ाते रहेंगे और आपको यूं ही हंसाते रहेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। एंड इसके बाद है चक दे इंडिया, इंडिया का तो पता नहीं लेकिन गोंडा फिलहाल अभी ताला चाबी का स्वाद जरूर चख रहा है। एंड इसके बाद आपकी हंसी खिलखिलाती हुई, और मुझे हंसता हुआ चेहरा बड़ा पसंद है लोगों का। महेंद्र जी लिख रही हैं यही एक फास्टेस्ट आरजे है जिनकी वजह से मैं इस रेडियो स्टेशन पर हूँ। ओ माई गॉड, थैंक यू सो मच, इस तारीफ को मैं अभी कॉपी पेस्ट करा के गोल्डन फ्रेम में लगवा के अपने दीवार पर टंगवा दूंगी, ताकि कोई भी आए वो देखे कि हाँ जी मैं ही हूँ वो। एंड इसके बाद लिखा कि चाबी की जगह मेरे मुंह से चावा निकल रहा है। कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस में लगे रहिए, कभी ना कभी तो होगा कि चाबी ही निकल के आएगी। एंड इसके बाद है लो पूछो, लो इनको पूछो, नदी मैम जी आज इतनी खुश कैसे हो आई। अब खुश होने की भी वजह बताऊं, मतलब मैं दुखी होने की भी वजह बताऊं, मैं खुश होने की भी वजह बताऊं, मेरे पास वजह नहीं है, मैं भी खुश हो जाती हूं, मैं भी दुखी हो जाती हूं, देयर इज नो वजह। उन्नति मैम आपको ये लाइन बताया कौन है? हमको कोई लाइन नहीं बताया था, हम खुद ही ढूंढ ढांड के लेकर आए हैं, हमको बहुत मज़ा आ रहा था टंग ट्विस्टर करने में। और ऐसा सोचिएगा नहीं कि सिर्फ आप ही के साथ हो रहा है, ये हमारे स्टूडियो में भी हो चुका है, और सुबह से हम यही कर रहे हैं लोगों के साथ। फिलहाल आइए चलते हमारे अगले गाने को ट्यून करते हैं, बिकॉज अगला गाना हमारे पास धर्मेंद्र मोहन जी का है, और वो सुनना चाहते हैं प्यार तुझसे है मुझे। तो एंजॉय करते रहिए, और हम मिलेंगे अगले गाने पर। आई होप आपको भी मोहब्बत होनी चाहिए कॉलर ट्यून गोंडा से, अगर है तो उठाइए अपना फोन 6393316429 6392 6392

0: और डरते डराते यूं ही खिलखिलाते हमारे बीच एक और लिसनर आ गए हैं। हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी, आपका नाम?
1: हेलो
0: हेलो
1: जी,
0: क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है?
1: जी आ रही है।
0: चलिए बताइए आपका नाम क्या है?
1: अंबर।
0: अंबर, अंबर से आई है परियों की रानी।
1: अंबर से आई है परियों की रानी।
0: हाँ वो मैं
1: चांद जब छाए,
0: ऐसे ही जैसे मैं किसी का नाम सुनती हूँ मुझे बॉलीवुड के गाने याद आने लगते हैं।
1: अरे तो मेरा नाम ऐसा यूनिक है कि हर एक गाने में मिल जाएगा आपको।
0: अरे वाह,
1: गाने में अंबर का नाम मिल जाएगा।
0: चलिए इसी बात पर ताला चाबी करते हैं।
1: कर लीजिए।
0: चलिए बताइए, जिस चाबी का ताला उस ताले की चाबी।
1: चलिए हम बोल दे रहे हैं, लेकिन हम हार गए तो आपको ही बोलना पड़ेगा।
0: हम नहीं बोलेंगे। ये नहीं होता, ये होता है मेरी बिल्ली मुझी को मियाऊ वाला काम नहीं चलेगा।
1: नहीं, ऐसा करिए ना, जैसे हम हार गए तो, हाँ तो आप टंकिस्टर ना बोल के जो हम देंगे उसको बोल दीजिए।
0: ओह माय गॉड, लेट्स सी।
1: अगर हम हार गए तो, जीत गए तो कोई बात
0: नहीं। मुझे उम्मीद है कि आप जीत कर ही आएंगे। विजय बाबा,
1: चलिए क्या बोलना है?
0: अरे अभी तो बताया मैंने,
1: नहीं भूल गए,
0: हम भी भूल गए। जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला।
1: जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला। जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला। जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला। जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला। जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला।
0: क्या बात है, अब आप जीत गए, आपको मुबारक हो, और मैं बच गई।
1: क्या दिया नहीं है गिफ्ट में?
0: गिफ्ट में आपको गाना सुनाएंगे, बताइए कौन सा गाना सुनेंगी आप?
1: एक टंग ट्विस्टर आप सुनाइए।
0: मैंने कहा, आपने कहा था अगर आप हार गए तो सुनाना पड़ेगा। देखिए चीटिंग नहीं चलेगी। ऐसा नहीं चलेगा।
1: नहीं चलेगा,
0: नहीं,
1: बहुत छोटा सा है, बस चार वर्ड का है, छोटा सा।
0: चलिए देखते हैं।
1: अपर
0: है
1: रोलर, लोअर रोलर।
0: क्या?
1: अपर रोलर, लोअर रोलर।
0: अब ये मैं अगले वाले को पकड़ाऊंगी।
1: क्या हो गया, बोलिए।
0: अपर रोलर, लोअर रोलर, राइट?
1: हाँ, जल्दी जल्दी बोलिए, पांच बार।
0: अब मैंने बोल दिया,
1: नहीं बोलिए पांच बार।
0: चलिए हमारे पास एक और कॉल आ गई है।
1: चलिए थैंक यू।
0: तो भैया आप एंजॉय करते रहिए, जरा अपर रोलर और लोअर रोलर करके आते हैं हम।

और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। और भैया रोशनी रावत, जिसे मैं कहना चाहूंगी कि अपनी गाने की फरमाइश दोबारा से बता दें, यहाँ पर कुछ टेक्निकल की वजह से आपका गाना मेरे पास सेफ नहीं हो पाया। अगली फरमाइश हमारी आई है सुरेंद्र यादव जी की, क्योंकि आज है मंगल वाला दिन तो वो सुनना चाह रहे हैं सब मंगलमय कर देते हैं। एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं अगले गाने पर। अगली फरमाइश को लेकर क्या आपके अपने कॉल ट्यून गोंडा में स्टे ट्यून्ड।

0: और मंगल को थोड़ा सा और मंगल बनाने के लिए हमारे साथ एक और लिसनर जुड़ गए हैं। लेट्स सी क्या है, कौन है, किस लिए है और क्या करेंगे वो। हेलो
1: हेलो मैम, कैसे हैं आप?
0: मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: बढ़िया है जी।
0: तो क्या आप तैयार हैं?
1: शर्त मंजूर है।
0: लेकिन अपना नाम बता दीजिए पहले।
1: अरविंद।
0: भैया अरविंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फ्रॉम मनकापुर, और जो अभी तक घबरा रहे थे ये सोच सोच कर कि तोतले हो जाएंगे।
1: मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है, धकड़ पकड़ क्यों कर रहा है।
0: तो आप बोला भी गा सकते हो,
1: उसके लिए कोई पहले दवा बता दीजिए।
0: चलिए मैं आपको एक सिंपल सा दे देती हूँ।
1: हाँ।
0: आपको बोलना है त ट क त ट क वो बहुत पुराना हो चुका है। तो या फिर आप यही बोलेंगे त ट क, या फिर आप बोलेंगे जिस चाबी का ताला उस ताला की चाबी।
1: जिस ताले की चाबी उस ताले का चाबा। चाबा नहीं, चाबी चाबी।
0: आज तो टू मच फन हो रहा है।
1: वैसे आप चीटिंग कर रहे हैं मैम, आप चीटिंग कर रहे हैं। आपने अभी कुछ हमसे कुछ और
0: आपने कहा था ना, आपने मुझसे कहा भी तो था कि चलिए मैम ठीक है आज के लिए हम तोतले होने को तैयार हैं।
1: अरे अब तोतला भी तो नहीं हो पाता।
0: ओके ओके, आखिरी बार और कोशिश कीजिए, उसके बाद एंजॉय कीजिए।
1: ओके मैम, थैंक यू।
0: चल अरे एक बार और कोशिश थी।
1: हाँ हाँ, कौन सा करना है पहले ये बताइए।
0: ताला चाबी, ताला चाबी, ताला चाबी, ताला चाबी।
1: जिस ताले की चाबी उस ताले का चाबा। जिस ताले की चाबी उस ताले का चाबी।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कोशिश करने वालों को। कोई बात नहीं,
1: चैट बॉक्स वालों को सबको बोलो एक साथ कॉल करें, सबसे बुलवा दीजिए।
0: अब एक साथ मैं कॉल लूंगी कैसे, ये भी तो सोचिए जरा।
1: कॉन्फ्रेंस करिए ना।
0: अच्छा जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस आइडिया के लिए भी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड इसी के साथ भैया ताला चाबी हमने बहुत कर लिया है, और आई होप आपको मजा आ रहा होगा आज के आपके कॉलर ट्यून वाले गुना में, जो कि असल नाम से कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि आज सच में कॉलर वाला ट्यून चल रहा है। फिलहाल आइए ट्यून कर लेते हैं आपके अगले गाने को। इम्तियाज जी ने हमें अपना गाना भेज दिया है और वो सुनना चाहते हैं ड्रीम गर्ल से राधे राधे। तो एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं अगले सॉन्ग को लेकर के आपके अपने कॉलर ट्यून गुना में, जो कि हमारे राम नरेश तिवारी जी की, जुगल जी की, अरविंद जी की, गुलफ्शा जी की, सुरेश कुमार प्रजापति जी की, रोशनी जी की होने वाली है।

और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आपकी अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे पास आई है बच्चे मन के सच्चे, और ये गाना डेडिकेट किया गया है राम नरेश तिवारी जी की तरफ से एक छोटी सी प्यारी सी नन्नी सी खूबसूरत सी बिटिया रानी। क्षमा को सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कॉल ट्यून गोंडा।

राम नरेश जी की फरमाइश थी। दो गलियां फिल्म से आप सुन रहे थे लता जी की आवाज में। बच्चे मन के सच्चे हैं, बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ, ट्यून कर लेते हैं और आई होप आज का शो आप दिल खोल के एंजॉय कर रहे होंगे। एंड इतना खतरनाक विचार कहाँ से आते हैं? हमारे दिमाग से आते हैं और कहाँ से आएंगे? मेरे दिमाग में बहुत खुरापात है, वो अलग बात है कि आपके सामने हम बहुत कम पेश कर पाते हैं। हम भी पागल तुम भी पागल, ये तो गाना हो गया। एंड इसी के साथ आपके बहुत सारे मैसेजेस लगातार जुड़े हुए हैं। नाजिया जी लिख रही हैं, आज नदी मैम अपने घर पर ताला लगाकर नहीं आई हैं, मुझे ऐसा लग रहा है हम ताला लगाए हैं, चाबी खोए हैं। अब ये सोच रहे हैं कि घर जाएंगे तो मम्मी चाबी पूछेगी कि ताला पूछेंगी, क्योंकि आज आपसे तो ताला चाबी हमने कर ही लिया है। एंड इसके बाद अरविंद जी के लिए तारीफ था कि वाह वाह बहुत मज़ा आ रहा है। एंड फिलहाल आइए बढ़ते अगले गाने की तरफ। अगला गाना हमारे जुगल जी का है, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, और हम उतनी जैसे इतना तेज तेज बोल रहे हैं कि हमको पूरी दुनिया पूरी कायनात ने सुन लिया होगा। फिलहाल सुनते रहिए कॉलर ट्यून कोटा, क्योंकि आपको सुनाने के लिए, आपके साथ सुनने के लिए, इन्जॉय करने के लिए आपकी आरजी मौजूद हैं आपके अपने स्टूडियो में।

मुकेश और लता जी की आवाज में आप एंजॉय कर रहे हैं जुगल जी की फरमाइश, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। और अगली फरमाइश हमारी आई है अरविंद मौर्य जी की, साजन तुमसे प्यार की लड़ाई में। एंजॉय करते रहिए, सुनते रहिए। आप सुन रहे कॉलर ट्यून गोडा, गोडा के अपने एफएम रेडियो ज्ञान असली 99.6 एफएम पर।

वक्त को मद्देनजर रखते हुए आइए बढ़ते हैं अगले गाने पर। ये थी हमारी अरविंद जी की फरमाइश, जो कि बहुत ही कमाल की थी और हमने बहुत ज्यादा एंजॉय भी किया है उदित और अलका जी की आवाज में। समीर साहब के लिखे बोल थे। अगली फरमाइश आई है हमारी गुलफशा जी की, जो सुनना चाहती है चमक छल्लो जरा धीरे चल्लो। तो आइए एंजॉय करते हैं सनी पाजी को पहली बार डांस करते हमने इसी गाने के अंदर देखा था, तो एक बहुत ही कमाल की मेमोरी है मेरी इस गाने से जुड़ी हुई। आप एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं अगले गाने पर अगली फरमाइश के साथ। अब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड लगातार आपके मैसेजेस चैट बॉक्स में मुझे हंसा रहे हैं।

एंड ये थी फरमाइश हमारी गुलफ्शा जी की, जो कि बहुत ही प्यारी थी। आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। एंड इमेजिन कीजिए गाना किसने फरमाइश की होगी, कर पाए क्या? अगर नहीं तो आपको बता दे भाई, ये हमारी सुरेश कुमार प्रजापति जी की है। तो एंजॉय करते रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले गाने को लेकर के, जो कि हमारी रोशनी जी का होने वाला है। स्टे ट्यून्ड।

भाई इतना गम वाला गाना मत सुना कीजिए, हमको लगता है कि आपकी जिंदगी से गम थोड़ा निकालना पड़ेगा, इसीलिए आज हम इतना हंसा भी रहे थे आपको लगता है। हमारे सुरेश कुमार प्रजापति का फेवरेट सॉन्ग और आप एंजॉय कर रहे हैं तो मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग हमारी रोशनी जी ने लिखा है, हम खुश हुए हम खुश हुए हम खुश हुए, और आप आई तो हम खुश हुए, इसीलिए एंजॉय करते रहिए। एंड हम मिलते हैं अगले गाने पर। अगला सॉन्ग सबिया जी का उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में।

हाँ जी, और ये था हम खुश हुए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली फरमाइश पर। अगली फरमाइश हमारी सबिया जी की है, नाजिया जी का हमसे कहना है कि भैया एक कॉल और ले लीजिए, ले लेते अगर हमारे पास वक्त रहता, बट मुझसे बात करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 6393316429 पर। अदरवाइज भैया कल आपका इंतजार रहेगा मुझे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, सुनते रहिए, उठा ले जाऊंगा तो।

और इसी मोहब्बत के साथ आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। जाने से पहले एक और फरमाइश हमारे पास आ चुकी है और वो थोड़ी सी गमे जिंदगी वाली है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम सबसे कम है। आजकल भैया हमारे प्रोग्राम की शुरुआत भी एक सैड सॉन्ग से होती है, खत्म भी सैड सॉन्ग पे होता है, ऐसा हम होने नहीं देंगे। आज जाते जाते आपके लिए एक बढ़िया सा गाना सुनाएंगे, लेकिन तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

ये फरमाइश हमारी रफीक जी की। एंड अरविंद जी लिख रहे हैं, आशुनती मैम की जितनी भी तारीफ करो उतनी ही कम है, बहुत बहुत शुक्रिया इस मोहब्बत के लिए। एंड इसके बाद धर्मेंद्र जी के मैसेज हैं, बहुत सारे मोर भेज दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आशुनती मैम को एक साथ विश करते हैं हम सब, लेकिन विश करेंगे क्या, मेरा तो हैप्पी वाला बर्थडे भी नहीं है, एम ही हैप्पी हो रहे थे हम। इसके बाद लिखा है नाजिया जी ने, उन्नति मैम क्या बोलूँ आपकी तारीफ में, अल्फाज नहीं है मेरे पास, मतलब इतना अच्छा प्रोग्राम, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इसी के साथ एक और मैसेज है कि भैया एक ऐसा प्रोग्राम दिन में होना चाहिए जहां पर सब कुछ अच्छा हो जाए, मूड अच्छा हो जाए। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। और ऐसा प्रोग्राम आपके लिए हम लाते रहेंगे, सरप्राइज आपको मिलते रहेंगे, तो जाइएगा कहीं भी नहीं, सुनते रहिए आपका अपना रेडियो ज्ञान असली। एंड हेलो आरजीनदी मैम, तरस कॉल ले लो आरजीनदी मैम, हम तरस रहे हैं। भैया आपको कॉल कीजिए, लेकिन हमारे पास घड़ी ने भी इशारा कर दिया कि वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले, क्योंकि हमने कहा था सैड सॉन्ग पर विदाई नहीं लेने वाले हैं, तो थोड़ा सा आपको हंसा कर जाते हैं, थोड़ा सा आपको बीट देकर जाते हैं। तदनान सामी की आवाज़ में एंजॉय कीजिए महबूबा। एंड इसी के साथ आप चाहूंगी आपसे इजाज़त, घड़ी ने कर दिया इशारा कि वक्त है विदा लेने का। आई होप आज का शो आपने एंजॉय किया होगा, अपना फीडबैक जरूर से दीजिएगा। ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी यानी कल सुबह आपके अपने गुड मॉर्निंग गोडा में। स्टे ट्यून्ड।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9281 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड। आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ, नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात, आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, शाम 5 बज चुके हैं, प्रोग्राम शुरू हो चुका है और हम

0: तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, फिर आपके कार्यक्षेत्र के बारे में कि ये जो त्वचा विशेषज्ञ होते हैं इनका काम क्या होता है। लेकिन उससे पहले हम जानना ये चाहेंगे कि प्लीज आप बताएं आपकी पैदाइश कहाँ की है, आप कहाँ की रहने वाली हैं, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, फैमिली में कौन कौन है, पिताजी क्या करते हैं, कितने सिबलिंग्स हैं, और आपकी अर्ली एजुकेशन के बारे में।
1: मेरा नाम डॉक्टर श्रुति गुप्ता है, मैं मुरादाबाद से बिलोंग करती हूँ। एक्चुअली वहीं पे पैदा हुई, वहीं पे अर्ली एजुकेशन 12th तक वहीं पे पढ़ी हूँ। उसके बाद प्रिपेयर करके MBBS में एडमिशन हुआ, वो मेरठ में एडमिशन हुआ। 7 साल मेरठ में ही MBBS की पढ़ाई करी पूरी। फिर आगरा से MD में फाइनली एडमिशन मिला। 3 साल MD करके अब यहाँ गोंडा में प्रैक्टिस कर रही हूँ।
0: ऑलराइट, तो ये तो आपने चूंकि डॉक्टर बनने का सफर दावा बताया, अब चलते हैं आपके एक बार वापस से फैमिली की तरफ, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं।
1: मेरे फादर डॉक्टर हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, डॉक्टर अजीत गुप्ता, मुरादाबाद में ही प्रैक्टिस करते हैं। मदर होम मेकर है, और मेरे भाई हैं सिबलिंग, वो डॉक्टर भी हैं, 1 साल बड़े हैं, और डॉक्टर प्रणव गुप्ता नाम है।
0: अच्छा, तो ये ऐसी कौन सी चक्की का आटा खाया था जी, पूरा की पूरी फैमिली डॉक्टर ही बनी, इसके बारे में बताएं।
1: चक्की का तो नहीं था।
0: अच्छा, चक्की का नहीं था, मार्केट का था।
1: हाँ, मार्केट का आटा था।
0: अच्छा, वैसे ही होता है कि जिस प्रोफेशन में फादर होते हैं, वालिद होते हैं आपके, कहीं ना कहीं उसका असर होता है बच्चों पे। और कहीं ना कहीं आपने बताया कि आपके भाई भी डॉक्टर हैं और आप खुद भी चूंकि डॉक्टर हैं यहाँ गोंडा में। ये तो आपने अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया। बच्चे जो होते हैं वो शरारती होते हैं, शैतान होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। आपका बचपना कैसा रहा, मतलब थोड़ा शरारती थी आप या बहुत चुप चुप रहने वाले बच्चों में से थी, क्या थी, कैसी थी आप?
1: बचपन में मैं अपने इस टाइम के एटीट्यूड से बहुत डिफरेंट थी। तब मैं एकदम शांत हुआ करती थी। उस टाइम पे कुछ दोस्तों ने, अब बड़े होते हुए दोस्तों ने ऐसा बना दिया कि अब बातें कर सकते हैं, पर उस टाइम बहुत शांत स्वभाव के थे।
0: ओके, यानी बड़ी शाय पर्सनालिटी की थी, लेकिन उसके बाद होता ना कि दोस्तों की संगत जो होती है बहुत कुछ सिखा देती है। तो ऐसा बनने के बाद अच्छा लगता है या लगता है कि नहीं गलत किया दोस्तों ने?
1: नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा किया दोस्तों ने, सिखा दिया बातें करनी है। बिल्कुल।
0: ऑलराइट, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, ये एक अच्छी बात आपकी बात से निकल के आई कि आपके फ्रेंड्स बड़े अच्छे हैं, और मैं तो चाहूंगा कि भाई ऐसे फ्रेंड्स सभी को मिले जो आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने में आपकी मदद करें। अभी तो बात हो गई ये कि फ्रेंड्स कैसे थे, आप पढ़ने में कैसी थी? आप
1: पढ़ने में एवरेज स्टूडेंट थी, कभी मतलब हाँ कम नहीं था, पर बहुत ऐसे नहीं पढ़ना होता था। पेरेंट्स कभी फोर्स नहीं करते थे कि बहुत ज्यादा पढ़ना है, कम क्यों आ रहे हैं नंबर, हमेशा मस्ती करते हुए ही पढ़ाई करी है।
0: अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, बच्चों को जो है वो कुछ चीजों से डर लगता है, आपको किस चीज से डर लगता था बचपन में?
1: पॉलिटिकल साइंस बहुत टफ लगती थी।
0: अच्छा,
1: बस उसी से डर लगता था और कुछ अलग से कुछ नहीं।
0: अच्छा, वैसे मैं एक चीज याद दिला दूं कि बच्चों को सुई से बड़ा डर लगता है, इंजेक्शन से, और फादर भी आपके डॉक्टर रहे हैं, तो कभी फादर ने ऐसा डराने के लिए नहीं कहा कि अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो इंजेक्शन लगा देंगे?
1: कभी नहीं, मेरे पेरेंट्स का एक ही नियम है, कभी डराना नहीं है बच्चों को।
0: ओके, वाओ,
1: आज भी वही नियम है, कभी डराना नहीं है कि सुई लगा देंगे या पुलिस आ जाएगी।
0: मतलब कह सकते हैं कि फादर से आपकी जो बॉन्डिंग है वो एक फ्रेंड वाली है, उन्होंने मतलब इस तरह से आप लोग को फ्री कर रखा है कि आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को भी शेयर करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और शायद अपनी लाइफ में जो भी चीजें चल रही है उसको भी आप शेयर करते हैं, एक अच्छी बॉन्डिंग है। वेरी नाइस,
1: बहुत अच्छी बॉन्डिंग।
0: मदर से कैसा आपका रिलेशन है आज?
1: मदर तो एकदम फ्रेंड जैसे ही रहती हैं। ओके, उनसे कोई बात नहीं बताई, कोई प्रॉब्लम नहीं बताई तो दिन पूरा नहीं होता है।
0: अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये तो बड़ी एक अच्छा एग्जांपल सामने आया आपका कि दिन की जो भी बातें होती है कहीं ना कहीं आप शेयर करते होंगे। एंड जाहिर सी बात है, आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बैठते हैं, वहाँ हर तरह से पेशेंट्स आते हैं, कभी दिन बहुत अच्छा भी जाता होगा, कभी बड़ा हैक्टिक जाता होगा, तो कहीं ना कहीं आप शेयरिंग करते होंगे अपने मदर से, अपने फादर से करते होंगे
1: हर इंसिडेंट। उनको पता होता है।
0: अच्छा, उनको ये भी पता होता है क्या कि सुबह आज नाश्ते में क्या खाया?
1: बिल्कुल।
0: वेरी नाइस, वेरी
1: उनसे पूछ के ही मनाना होता है कभी कभी।
0: अच्छा, उनसे पूछ के। मुझे अपना वो दिन याद आ गया, वो दिन बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, मेरे ख्याल से कुछ महीने पहले की है। पहली बार लाइफ में खिचड़ी बनाया था, बड़ी सिस्टर को वीडियो कॉल पे लेकर के बाकायदा कि हम क्वांटिटी दिखा सके कि देखो ये हम इतना डाल रहे हैं। एंड यकीन मानी कि बड़ी लाजवाब बनी थी एंड

0: दूसरी बार जब बनाया कि हम लोग शायद जान गए हैं, कॉन्फिडेंट थे, वो खाने लायक नहीं थी। तो ये खैर होता है, ये सब चीजें चलती रहती है, लाइफ का पार्ट है। मैं ये जानना चाहूंगा कि हर किसी का अपना एक एम्बिशन होता है। सो बचपन में एम्बिशन की अगर हम बात करें, आप और अगर हम अपनी बात करें, जो 90s के बच्चे हैं, उनका ज्यादा बहुत ऑप्शंस नहीं हुआ करते थे। डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट या पायलट एक नाम था, तो ये तीन चार चीजों में चूज करते थे। आपका ऐसा तो नहीं कि कोई और सपना था और उसके बाद आज आप कहीं और हैं?
1: नहीं, सपना हमेशा फादर को देखा, क्योंकि पता ही नहीं था कि कुछ और भी कर सकते हैं। मन में सिर्फ यही था कि डॉक्टर बनना है। कभी पेरेंट्स ने कुछ कहा नहीं, जबकि बड़े होके तो बल्कि पेरेंट्स मना करते थे कि कुछ और कर लो।
0: अच्छा,
1: डॉक्टर में बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत साल, बट क्योंकि बनना था, बचपन से सोच रखा था, तो डॉक्टर ही बनना था।
0: तो कह सकते हैं कि पापा की जो प्रोफेशन की छवि थी वो आप पे पड़ चुकी थी, और कहीं ना कहीं आपका कोई डाउट नहीं था, मुझे बनना है तो डॉक्टर ही बनना है।
1: बिल्कुल।
0: सो आप ये त्वचा रोग विशेषज्ञ जो, इसमें कैसे आपका आना हुआ?
1: त्वचा रोग विशेषज्ञ एक्चुअली रैंक इस टाइम पे बहुत अफेक्ट करती है आपकी ब्रांच। जब रैंक आपकी चॉइस की आ जाती है, उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। तो पढ़ाई करके रैंक तो आ गई, तो ऑप्शंस खुल गए। मेडिसिन ले सकते थे उस टाइम पे, बट क्योंकि थोड़ा आजकल ऑप्शंस में वो त्वचा रोग विशेषज्ञ जो होते हैं वो बहुत ऊपर होते हैं।
0: अच्छा, ऊपर होते हैं।
1: हाँ, बहुत कम लोगों को मिलते हैं सीट्स, डॉक्टर्स बहुत कम है त्वचा रोग के,
0: लिमिटेड सीट्स,
1: बहुत कम लोग।
0: ओके।
1: और आजकल लोग कॉन्शियस भी हो गए हैं बहुत ज्यादा, समझने लगे हैं इस चीज को कि कुछ दिक्कत है हमें इससे रिलेटेड भी, तो वो डॉक्टर का ओपिनियन सीख भी करते हैं स्किन के लिए। पहले इतना नहीं हुआ करता था, तो अब थोड़ा सा इस तरफ इंक्लिनेशन हो गया।
0: ऑलराइट, तो मतलब आपने देखा कि कहीं ना कहीं ये जो एक ब्रांच है इग्नोर होती है। मतलब पहले तो लोग ऐसे चल जाता था कि जैसा भी है अपने आप, आपने होम रेमेडी को इस्तेमाल किया, घर की कोई चीज सही कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि नहीं, एक बीमारी है। और देखा गया है कि लोग अपनी त्वचा के प्रति, मतलब खुद के लुक्स के प्रति बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, और सिर्फ महिलाएं नहीं। अभी तक तो समाज में था कि सिर्फ महिलाओं के दो दाने निकल जाते तो परेशान। मैंने अपने कई फ्रेंड्स को देखा है, वो दो दाने निकलते हैं तो सुबह से शाम तक उनको सिर्फ दो दानों की इर्द गिर्द ही बात करनी होती है। तो इसके लिए आप जैसे लोग होते हैं विशेषज्ञ जो इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी चूंकि आपने काम करना स्टार्ट किया है, आपकी पहली पोस्टिंग ये गोंडा में ही हुई या कहीं और हुई थी?
1: नहीं, पहली पोस्टिंग गोंडा में हुई है। MD के बाद में हमें 2 साल सरकारी सेवा देने होती है, जो 2 साल बॉन्डेड होते हैं हम। तो उसमें हम लोग को जो नए मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं ये सब, वहाँ पे पोस्टिंग दी गई है। तो यहाँ पे सबसे पहली पोस्टिंग मेरी गोंडा में मिली है मुझे।
0: ऑलराइट, तो भाई गोंडा पे भी आएंगे, लेकिन गोंडा से पहले भी एक और सफर जो आपने तय किया है MBBS का, उस पे आते हैं। क्योंकि देखिए, आप जब अपने शहर से बाहर निकलते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो वहाँ का माहौल बहुत अलग होता है। वो घर वाला कम्फर्ट नहीं मिल पाता है, ना सोना उठना होता है, ना खाने पीने में होता है, ना लोग आपके पास मम्मी और पापा वाले होते हैं कि आपके नखरों को उठा लेंगे, या जैसा आप कहीं बीमार हो गए हैं तो फौरन उस चीज को लेकर के ट्रीटमेंट, तो काफी अलग होता है। एज फीमेल तो थोड़ा सा मुश्किलें भी आती हैं। आपका कितना चैलेंजिंग रहा उस दौरान, जब आप MBBS में आपने एडमिशन ले लिया और वहाँ पे आप पढ़ाई कर रही थी, कैसा कुछ रहा?
1: MBBS मेरे घर के पास था बहुत, एक्चुअली मेरठ मुरादाबाद से बहुत 100 किलोमीटर की रेंज में था।
0: ओके।
1: तो कभी ऐसे घर की कमी महसूस नहीं हुई।
0: Alright.
1: कभी कुछ दिक्कत हुई तो तुरंत घर चले जाते थे।
0: ओके।
1: और 7 साल बहुत बहुत लंबा टाइम होता है एक्चुअली MBBS वाला। हाँ, तो प्रिपरेशन MBBS से पहले भी प्रिपरेशन किया, तब थोड़ा सा प्रिपेयर हो गए कि अब इतने साल बाहर रहना है। फिर MBBS में तो दोस्त बन जाते हैं जब, तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है।
0: ओके, वेरी नाइस, बिल्कुल सही कहा कि जब दोस्त बन जाते हैं तो लाइफ बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। एक और बात, चूंकि आप जाहिर सी बात है कि पढ़ाई में आप अच्छे होंगे, आपने क्रैक किया, आपको MBBS में एडमिशन मिला, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि वो कौन कौन से चेंजेस थे जब आपके एडमिशन के बाद, ड्यूरिंग MBBS जब आप कर रहे थे, उस दौरान आपके अंदर आए?
1: MBBS के टाइम एक्चुअली हम लोग 12th तक इतना एक्सपोजर नहीं होता, हमारे को सिर्फ पढ़ाई करनी होती है। तो उस टाइम तक हम लोग बहुत शांत अपने काम से, मतलब सिर्फ पढ़ाई करनी है, खेलना कूदना है, घूमना है, ठीक है, दोस्तों तक मतलब रहता है, आप किसी स्ट्रेंजर से बात करना नहीं सीख पाते हो। जब आप MBBS कर रही थी मैं, तो क्योंकि हम लोग को पेशेंट से भी डील करना होता था, क्लिनिक्स होते थे, उसमें हम लोग को समझ में आया एक्चुअली में कितना, मतलब लोग कितना परेशान है, इनसे बात कैसे करनी है, जो एक्चुअली पेशेंट्स हैं, पेशेंट्स से बात करना हम लोग MBBS में सीखते हैं, उनकी प्रॉब्लम समझना, उनसे किस तरीके से बात करनी, कितनी बात करनी है,
0: यानी पब्लिक डीलिंग।
1: जी, पब्लिक डीलिंग।
0: ओके।
1: वो हम लोगों ने MBBS में सीखी है।
0: और मुझे लगता है ये सबसे जरूरी पार्ट होता है, क्योंकि पढ़ाई जब आप कर रहे होते हैं तो आपका सिर्फ जो सामना होता है, या तो अपने कलीग्स जो आपके क्लासमेट्स होते हैं, या फिर प्रोफेसर्स होते हैं, टीचर्स आपके होते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो आपका रियल एक्सपीरियंस होता है वो जब डीलिंग आप करते हैं पब्लिक को, पेशेंट्स को जब आप डील करते हैं, वहां पे होता है। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी के लिए जब आप कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील करते हैं आपको लेकर के, और कुछ ऐसे होते हैं कि भड़क भी जाते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम्स को या आपके चैलेंजेस को नहीं समझ पाते, वो शायद सिर्फ अपनी बात आगे रखते हैं। सो ऑफकोर्स ये पब्लिक डीलिंग समझना इस प्रोफेशन के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब आपने किया होगा, वहां पे देखे होंगे केसेस, तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। देखिए, जिस भी आप ब्रांच में जाइए, कुछ ना कुछ ऐसी बीमारी, कुछ ना कुछ ऐसे एक्सीडेंटल केसेस आते हैं जिसमें आपको ट्रीट करना ही करना होता है। उस दौरान क्या वो डर लगा था, क्या लगा कि नहीं यार गलत आ गए, डॉक्टर गलत बन गए, कुछ और बन सकते थे, या कैसा क्या था इसके बारे में?
1: डॉक्टर बन के हमेशा सिर्फ एक सैटिस्फेक्शन वाली फीलिंग थी कि पेशेंट्स की आप हेल्प कर सकते हो। कोई और प्रोफेशन कभी इस तरीके का सेटिस्फेक्शन नहीं गेन कर सकता कि आप किसी की हेल्प कर रहे हो, उनको ठीक कर रहे हो। आजकल समाज में तो ये डिफरेंस आ गया है वैसे, कि पेशेंट्स भी अब इतना नहीं समझते। पहले डॉक्टर्स को इतना भगवान कंसिडर किया जाता था कि ये तो भगवान मिल गए। अभी बोलते हैं बहुत लोग कि हमें तो भगवान मिल गए, बट ठीक है, इंसान ही समझे, बट अच्छा लगता
0: है। बट आपकी भी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी समझे। ऑफ कोर्स डॉक्टर भी एक इंसान होते हैं, और मुझे लगता है कि ये प्रोफेशन इतना आसान नहीं होता। और जो आपने एक बात कही सेटिस्फेक्शन की, अगर सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तो शायद ये काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका कोई टाइमिंग नहीं होता है। बाकी जगह वर्किंग आवर्स जो होते हैं वो डिसाइड होते हैं कि आपको इतने घंटे काम करना है, लेकिन हेल्थ सेक्टर में स्पेशली डॉक्टर्स के लिए, उनके लिए बिल्कुल नहीं पता होता है कि कब केसेस आ जाएंगे, कब आपको उठ के भागना पड़ेगा, या आपको कितना टाइम लग जाएगा, कितने बुरे केसेस आपको देखने होंगे। अच्छा, इस तरह से केसेस देखते हैं, इतना ज्यादा पब्लिक को डील करते हैं, इतने ज्यादा लोगों से आप मिलते हैं, एट द एंड आप भी एग्जॉस्ट हो जाते होंगे। खुद को कूल करने के लिए, खुद को रिलैक्स करने के लिए क्या चीजें आप करते हैं?
1: खुद को रिलैक्स करने के लिए दोस्त हैं, सिर्फ दोस्त हैं, घर वाले हैं, बात करो, कूल डाउन हो जाता है खुद। वैसे मेरी जो ब्रांच है एक्चुअली स्किन में, इतना कभी हाइपर होते ही नहीं हम, सब रिलैक्स रहता है सब कुछ।
0: अच्छा, बहुत रिलैक्स रहता है। लेकिन अभी आपने फ्रेंड्स की बात की, आपके फ्रेंड्स तो बाहर होंगे ना, आप तो गोंडा में है अभी, कैसे मतलब?
1: आजकल सोशल मीडिया है, फोन है, सबसे इजी।
0: अच्छा, जेंजी वाली आपने जो वेपन है वो आपने भी अपना लिया, जैसा हम सभी लोगों ने अपना लिया। बेशक बेशक। एंड ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं फैमिली के साथ में जुड़े रहना, फ्रेंड्स के साथ में जुड़े रहना, यही आपको थोड़ा रिलैक्स कर सकता है, क्योंकि आप अलग अलग जगह जाते हैं और बहुत सारी चीजें आपके साथ दिन भर में होती रहती हैं, जो अगर आप शायद खुद अकेले ही सिर्फ सोचा करेंगे तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे आप। तो उसको शेयर करना या उन चीजों पर डिस्कस करना,
1: ओपिनियंस लेना, कहां हमने कुछ गलती कर दी, वो लोग भी बताते हैं कि थोड़ा कूल डाउन हो जाओ, नहीं ऐसा दूसरे का भी कुछ ओपिनियन हो सकता है।
0: एग्जैक्टली। वैसे क्या हम जाना चाहेंगे, डॉक्टर साहिबा को गुस्सा बहुत आता है क्या? नहीं, अभी बिल्कुल नहीं लग रहा है स्माइल देख के। ऑलराइट। सो खैर, ये पेशा ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा पेशेंस की आपको खुद भी जरूरत होती है, क्योंकि हर तरह के लोग आपको डील करने होते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी चूंकि हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर श्रुति गुप्ता से, जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही है, त्वचा विशेषज्ञ के रूप में काम कर रही हैं, और साथ ही साथ अभी हमारे एक छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के उस पार वापस आने वाले हैं, और त्वचा से संबंधित जो भी बीमारियां हैं, जो परेशानियां हैं, जो हम अपनी जनरल लाइफ में फेस करते हैं, उसको लेकर के बातचीत करने वाले हैं। सो कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए अपना इवनिंग वाला शो गोधली अपने फेवरेट आरजे अदनान के साथ, ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये है गोंडा, शहर की धड़कन।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
3: आज ही कॉल करें 9281-976-9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
3: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
0: ब्रेक के बाद एक बार वापस से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान आपके अपने प्रोग्राम गोधुली में। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा।
5: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण, याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान, टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
6: छूने दो बच्चों की।
1: घंटी बजी और आपको याद आ गई किसी की। यस यस यस, वो है आपकी आरजे मीना। तो जी हाँ, आपने कुछ बातें सुनी और देखिए, हमेशा से शुरुआत होती कुछ नई सी चीज़ सुनने से, और वो नई सी चीज़ सुनने के बाद हमें लगता है कि यार मतलब कुछ बढ़िया सा तो सुनने को मिल ही रहा है एटलीस्ट। तो चलिए सबसे पहले तो शुरू करते हैं आप लोग के साथ आज की बात के लिए विज्ञानशाला में। आज हम बात करेंगे पिछले एक हफ्ते से जो एक बहुत ही मुहिम की तरह मनाया जा रहा था दिन हमारे देश में, और आज भी उसकी लहर जो है वो बरकरार है। अब आप सोच रहे होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पोषण सप्ताह की, न्यूट्रिशन वीक। हाँ भाई, अब आप सोच रहे होंगे ये पोषण सप्ताह क्या होता है। पोषण सप्ताह बेसिकली जानते हैं क्या होता है। पोषण सप्ताह में हम लोग क्या करते हैं कि न्यूट्रिशन को लेके बात करते हैं। न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन से जुड़ी सारी चीज़ें, चाहे वो अलग अलग एज ग्रुप के लिए क्यों ना हम उसको कैटेगराइज या क्लासीफाई क्यों ना करें। तो सबसे पहले तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये पोषण सप्ताह कब से कब मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे की मतलब जो कहानी है वो क्या है, मतलब क्यों शुरू किया गया। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि हर साल 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है पोषण सप्ताह, और इस बार की जो इसकी थीम थी वो थी पोषण की शक्ति को पहचाने, यानी कि आप जो खा रहे हैं, यानी कि जो आप खा रहे हैं उसमें कुछ एनर्जी है भी या नहीं, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। भाई आप डाइट पे डाइट ले रहे हैं और आप कहते हैं, और अक्सर ये हम सुनते हैं ना कि यार मैं तो इतना खा रहा हूँ और मतलब मेरे शरीर में कुछ नहीं लग रहा है, ये सुनने के लिए मतलब हमेशा मुझे मिलता है। और ऐसा मैं खुद भी कभी कभी कह देती हूँ कि यार मैं तो इतना खा रही हूँ और मतलब पता नहीं खाना कहाँ चला जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो आप खा रहे हैं वो आपकी बॉडी टाइप के लिए नहीं है। तो सबसे पहले इसका उद्देश्य ये है, इस हफ्ते को मनाने का उद्देश्य ये है कि संतुलित आहार मिले हर किसी को। मतलब एक बेसिक नीड जो है वो खाना है। अगर किसी को खाना नहीं मिल रहा, समझ लो कि उस देश में अभी बहुत पिछड़ापन है, ठीक है ना।
7: तो सबसे पहले आज मैं ये बता दूं कि सबसे पहले खाना सबको संतुलित मिले, पर्याप्त मिले और खाने से जुड़ी सबको जानकारी हो कि वो क्या खा रहा है, इसीलिए ये वीक मनाया जाता है। स्वास्थ्य खान पान को अक्सर हम लोग जरूरत से ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए फूड की जब बात करेंगे आप तो आपको फूड में ऐसा नहीं है कि रोटी सब्जी दाल चावल ये सारी चीजें समझ में आए। इसके साथ ही मैं अगर बात करूं खाने से जुड़ी हर वो चीज़ की जो आपके और मेरे शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी, लेकिन पहले आप एक गाना सुनिए फिर मैं बताती हूँ कि वो कौन सी चीज़ है जो मेरे आपके या छोटे बच्चों के लिए ज़रूरी है। सारेगामा कारवा, द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस।

देखिए, ये गाना जैसे एनर्जी के साथ गाया जा रहा है। आपको लग रहा होगा कि आपके शरीर में इतनी एनर्जी क्यों नहीं रहती है जितनी इस गाने में एनर्जी है। तो सबसे पहले वो एनर्जी आपको आपके खाने से मिलती है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। तो ये गाना सुनाने के पीछे पहले तो उद्देश्य ये था कि इस गाने की एनर्जी को फील करिए और आप ये समझिए कि कैसे आप अपने शरीर को फूड के थ्रू बैलेंस रख सकते हैं। और सबसे बड़ा कारण है हमारे बॉडी में अलग अलग बीमारियों के होने का, मतलब ना सिर्फ एक बीमारी, कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमें अक्सर हो जाती हैं और हमें पता नहीं चलता, अरे यार ये बीमारी कैसे मुझे होगी, मैं तो कोई नशा भी नहीं करता, मैं तो कभी ऐसी वैसी चीज़ खाता भी नहीं, मैं तो जंक फूड भी नहीं खाता। लेकिन क्या आप जो खाना खा रहे हैं वो आपके शरीर के लिए सही है, यानी कि जो खाना आप खा रहे हैं वो पूरा संतुलित आहार है कि नहीं, क्या ये आपको पता है? तो सबसे पहले पोषण के लिए ज़रूरी है, पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन क्या होता है? वो खाना जो आपको हर पोषक तत्व संतुलित मात्रा में दे, वही है संतुलित आहार, या उससे मिलने वाले पोषण को ही आप संतुलित पोषण बोलेंगे। अब पोषण की जब बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि ऐसे कौन से पोषक तत्व हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता। जी हाँ, पोषक तत्व की बात करें तो सबसे पहले इन्हें मेन जो मेजर हैं, मतलब जिनकी बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है, इनके बिना तो हमारी बॉडी चल नहीं सकती, तो टॉप पे आता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जिसे हम लोग शुगर या फिर शर्करा भी बोलते हैं। दूसरे नंबर पे आता है फैट, जिसे आप वसा बोलते हैं। तीसरे नंबर पे प्रोटीन, वैसे प्रोटीन और फैट को मैं एक ही पायदान पे रखती हूँ क्योंकि प्रोटीन की मात्रा हमारे शरीर में फैट से ज़्यादा ही होती है, तो प्रोटीन ही आप मानिए। प्रोटीन के बाद चौथे पायदान पे आपका आ जाता है मिनरल्स, जो कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको चाहिए होते हैं। फिर उन मिनरल्स के बाद आ जाते हैं आपके विटामिंस, जो कि आपके शरीर में बहुत कम मात्रा में होते हैं, लेकिन अगर वो ना हो तो शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, और अगर उनकी मात्रा बढ़ जाए तो भी बीमारियां हो सकती हैं। तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए ही ये पूरा सप्ताह मनाया जाता है, 1 सितंबर से लेके 7 सितंबर तक हम मनाते हैं पोषण सप्ताह। तो अब चलिए हम इस दिवस से जुड़ी कुछ और बातें भी समझ लेते हैं कि स्वस्थ खान पान के लिए जो अक्सर सबसे ज़्यादा जटिल सवाल हमारे दिमाग में आता है कि हम किससे जाके पूछें, डाइटिशियन से पूछें, नहीं, हम अपने हिसाब से खा ले। हमारी दादी जो बताती थी खाने के बारे में कि घी ज़्यादा खाओ, तेल ज़्यादा खाओ, ये सही है, या दूध पीने से ही हमको पूरा पोषण मिल जाएगा, तो कई सवालों से हम लोग घिरे हैं और हमें समझ नहीं आता कि क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या घर का खाना हम खा रहे हैं तो हमें पोषण मिल रहा है। तो कई सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज मैं आपके साथ हूँ। फिलहाल आप लोग ये समझिए कि 2026 की जो थीम है उसको समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये समझना कि अच्छा भोजन क्या होता है, मतलब ऐसा खाना जो आपके शरीर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो क्या होता है। तो सबसे पहले तो खाना वो अच्छा है जो तुरंत बना हो, मतलब खाना अगर काफ़ी देर का है, काफ़ी देर से रखा है, तो वो डेफिनेटली कई सारी बीमारियों को अपने साथ लेके बैठा हुआ है। तो सबसे पहला जो नियम है खाने का, वो खाना ताज़ा होना चाहिए, ठीक है, और खाने की जो मात्रा है वो बिल्कुल एडिक्वेट होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको 2 रोटी की भूख है तो आप 1 खा रहे हैं, या आपको भूख नहीं है तो भी आप खा रहे हैं, या आपको भूख बहुत लगी है और आप खा नहीं रहे हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप खाना जो खा रहे हैं उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, टाइम क्या है, और खाने में आप जो चीज़ें ले रहे हैं उनकी मात्रा क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले सुबह की बात करें तो सुबह हमें ब्रेकफास्ट, जैसा कि नाम है वैसा ही हमें ब्रेकफास्ट करना चाहिए, मतलब ऐसा जो कि मतलब जल्दी से आप कर लें और आपको ऊर्जा भी पर्याप्त मिल जाए दोपहर तक के लिए। मतलब कि आपको सुबह ब्रेकफास्ट में तेलीय चीज़ें नहीं खानी। अक्सर हम लोग पराठे वगैरह ये सारी चीज़ें कंज्यूम करते हैं, लाओ यार पूरी सब्जी बना देते हैं जल्दी बन जाएगा, लेकिन नहीं, हमें सुबह के टाइम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अंकुरित चीज़ें लें, मतलब कुक्ड चीज़ें खाएं ही ना, ऐसी चीज़ें खाएं जो इजीली सैलड के तौर पे तैयार हो जाएं। और साथ ही साथ आप दूध अगर पीते हैं तो ज़रूर दूध पिए, या फिर कोई भी ऐसी ड्रिंक ज़रूर लें जो आपकी बॉडी को पूरे दिन तक हाइड्रेटेड रखे, यानी कि आपके शरीर में जो पानी की मात्रा है वो बरकरार रखे, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं दोपहर के खाने की तरफ। दोपहर का खाना आपका कैसा होना चाहिए, मतलब फुल आपका, मतलब जैसे कहते हैं ना, दाल चावल सब्जी रोटी, उसके साथ सैलड है, आपकी पसंद की कोई सब्जी है, इसके
के साथ आपको कोई डेजर्ट खाने की आदत है, कुछ लोग होते हैं जो खाने के बाद मीठा खाना पसंद करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप दोपहर के समय खा सकते हैं। और बात आती है जब रात की, तो रात को जैसे कहते हैं ना कि रात को आपको खाना बहुत लिमिटाइज, मतलब अगर आपको चार रोटी की भूख है तो आपको दो ही खानी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ हमारे इंडिया में, मतलब मैं देखती हूँ कि मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में तो देखो वो लोग सैलड और ये दाल वगैरह ज़्यादा खाते हैं। मैं तो देखती हूँ कि कैनेडा वगैरह के लोग जो हैं वो रोटी वगैरह बनाते ही नहीं, दाल बनाया उसमें घी डाला या कुछ भी डाला उसको वैसे ही खा लिया। और हम लोग क्या करते हैं, दाल के साथ चावल बनाएंगे या रोटी बनाएंगे या मतलब पूड़ी बनाएंगे, जो भी बनाएंगे। नहीं, आपको ये जो सीरियल्स हैं यानी कि प्रोटीन बेस्ड जो चीज़ें हैं उनको अपने डाइट में ज़्यादा लेना चाहिए, क्योंकि जिसमें प्रोटीन है उसमें ऑलरेडी शुगर है। तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है कि हम रोटी या चावल बहुत ज़्यादा, आप हमेशा ये समझिए कि अगर आप रोटी एक खा रहे हैं तो आप दाल दो कटोरी ले लीजिए। सब्जी और दाल की क्वांटिटी हमेशा आपकी प्लेट में ज़्यादा होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू द अदर जो आपके क्या कहते हैं सीरियल्स प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जानने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे यार ये सारा तो हम लोगों से होता ही नहीं है। अभी बहुत सारी ऐसी बारीक जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक गाना सुनाऊंगी जिससे आपकी एनर्जी, म्यूज़िक वाली जो एनर्जी है वो बढ़ जाए।

बिल्कुल, अगर कुपोषण होगा तो आपको हर कोई ताकेगा और ताक ताक के ये कहेगा कि अरे भाई ये खाना नहीं खाता है क्या, या खाना नहीं खाती है क्या। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आपको पता है कि पोषण सप्ताह के बारे में बात कर रही हूँ, यानी कि न्यूट्रिशन वीक की बात हो रही है, तो मैं इस बार की जो थीम है उसको थोड़ा और अच्छे से एलैबोरेट कर देती हूँ कि भाई ये जो वीक है ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के, जो कहते हैं ना कि सौजन्य से मनाया जाता है, और सरकार इसका प्राधिकरण करके जो घोषणा करती है हर साल, वो इसकी थीम की यही करती है, ठीक है ना। इसके साथ इसका जो विषय है वो मैंने आपको बता दिया कि पोषण संबंधी जागरूकता, वो भी हर उम्र के लोगों के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए, उनकी जीवन शैली को मद्देनज़र रखते हुए, और उनके व्यवहारिक खाद्य विकल्प के जो ऑप्शंस हैं उनको अवेलेबल कराने के लिए, मतलब जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पर आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपकी डाइट प्लान बनाने के लिए, ठीक है। अगर मैं भारत की बात करूं कि तो भारत में जो खान पान को लेके गलत फहमियाँ हैं, हमारे देश में जो गलत फहमियाँ हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। अधिकांश लोगों को ये लगता है कि हमारी जो डेली लाइफ में जो मतलब भाग दौड़ है उसमें खाने के लेके मतलब जो हम लोग प्लान करें वो नहीं हो सकता है, क्योंकि हम बहुत बिजी रहते हैं, हमारी आदतें, हमारी सांस्कृतिक प्राथमिकताएँ जो हैं, इसके अलावा हमारी जो कार्य श्रृंखला है, हमारा बजट जो है, और ऑनलाइन मिलने वाली चीज़ें आसानी से मिल जाती तो उसको खाने का प्रेफर करते हैं हम लोग, ठीक है। फिलहाल इन सब चीज़ों को सोच के हम अगर अपने बारे में नहीं ध्यान देंगे तो डेफिनेटली बीमारियां हमारे आसपास घूमती नज़र आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि स्वास्थ्य खान पान का मतलब है किसी भी खाद्य समूह से परहेज करना या किसी सर्वोत्तम भोजन के बारे में। ज़रूरतों को समझना और ना कि उसका परहेज करना, बल्कि उसकी उचित मात्रा से जो सब्जियां हैं, प्रोटीन है, फल है, साबुत अनाज है, इन सब के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, ठीक है। वैसे आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कुक्ड फूड खाते हैं, लेकिन मैं कहूँगी साबुत अनाज खाना हमारे लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है हमारे शरीर को बैलेंस करने के लिए। बैलेंस करने का मतलब ये है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कई बार कुक्ड फूड खाने की वजह से अपनी जो कार्यशैली है उसमें थोड़ा सा वीक हो जाता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। वैसे कई ऐसे इंडियंस हैं जो खाने पीने को लेके कई गलतफहमियों के शिकार हो जाते हैं। पहला तो ये मान लेते हैं कि घर का बना खाना जो है वो अपने आप में ही स्वस्थ होता है, उसमें कुछ बढ़ाने घटाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप दाल सब्जी रोटी खा रहे हो तो बिल्कुल आप पूरा खाना नहीं खा रहे हो, अभी आपको प्रोटीन लेने की ज़रूरत है। आपको पता है वाइटामिन एक ऐसा वाइटामिन है जो हर खाने में अवेलेबल नहीं है, यानी कि कुछ चुनिंदा मतलब फूड में है, स्पेशली लीवर में है, बीफ के लीवर में है, मछली में है, और ऐसी टूना फिश है, ऐसे कई सारे जानवरों के मतलब फ्लैश में है, लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं है। तो हमें इसकी प्रॉपर जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसके साथ खाने बहुत सारे मतलब पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं कार्बोहाइड्रेट तो ले रहे हैं ना, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ले लेना मात्र ये नहीं कह देता है कि हमने खाना संतुलित खा लिया, ठीक है। तो भरपूर कार्बोहाइड्रेट लेने से हमारी प्रोटीन की मात्रा शरीर में कम हो सकती है और हमें कई सारी जो बीमारियां हैं वो हो सकती हैं। तो प्रोटीन के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी कार्बोहाइड्रेट तो भाई दाल और रोटी, मतलब रोटी है, चावल है, दूध है, इन सब में अवेलेबल है, पर प्रोटीन की बात करें जब तो हमें दाल है, राजमा है, चने की दाल है, दूध, दही, पनीर, इसके बाद सोयाबीन है, टोफू है, सोया चंक्स हैं, मछली है, चिकन है, और कम वसा वाला जो मांस है, और दाने वो बीज हैं, ये सारी चीज़ें, इन सब में प्रोटीन की मात्रा प्रचुर होती है। इसके बाद हम बात करते हैं पर्याप्त मात्रा में सब्जियां। कई बार क्या होता है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि सब्ज़ी बहुत महंगी होती है, हमारे आसपास अवेलेबल नहीं है, घर के पास नहीं मिलती तो नहीं खरीदते हैं, तो अवॉइड कर जाते हैं। लेकिन नहीं, सब्ज़ियाँ क्या करती हैं, आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करती हैं, और इनका कोई विकल्प नहीं हो सकता। जैसे मौसमी सब्जियां खाने के लिए कई बार क्या होता है, हमारी जो गर्मियों में हमें क्या कहते हैं, सहजन खाने की सलाह दी, सच में वो मौसमी मिलती है तो उसे खाना भी चाहिए, क्योंकि उससे एक अलग लेवल की इम्यूनिटी हमारे बॉडी में बनती है, ठीक है ना। तो कोई भी मतलब सब्जी अवॉइड नहीं करनी, चाहे मतलब थोड़ी सी हम कंज्यूम करें पर करें ज़रूर। इसके बाद हमारा आ जाता है फलों की बात।
बहुत सारे, मैं भी, मेरे बहुत सारे लिसनर्स सुन रहे होंगे और मुझे इस बात को सोच के थोड़ा सा मतलब बुरा भी लगता है कि मतलब मेरे बहुत सारे लिसनर्स ऐसे हैं जो फॉलो को अवॉइड करते हैं। मतलब यार रहने दो, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप जाके मतलब हर एक्सपेंसिव फ्रूट को ट्राई करें, चाहे वो मतलब कीवी हो, चाहे वो एवोकाडो हो, वो फ्रूट जो आपके आसपास अवेलेबल है आप इजीली मिल जाए, जो जिसका प्राइस भी आपकी बजट फ्रेंडली हो, आप उसको मतलब एक फ्रूट पर डे आपको खाना है, चाहे वो एप्पल है, चाहे कोई भी वन फ्रूट पर डे आपको कंज्यूम करना है, इस बात पर ध्यान दें, ठीक है। इसके अलावा बहुत इधर उधर के मतलब बढ़े चढ़े खाद्य पदार्थों को कंज्यूम करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप एक नॉर्मल डाइट प्लान और वो हर ज़रूरी चीज़ जो आपकी डाइट में होनी चाहिए उसको कंज्यूम करिए, ठीक है। बाकी आप किसी चीज़ को एलर्जी के आपको उसे नहीं खाना है आपको, तो हाँ बेशक अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पैक्ड फूड से थोड़ा ज़्यादा बचिए, क्योंकि ये जो है पहले तो इसमें मिलाई गई चीनी जो मिठास है वो आपके लिए सेहतमंद नहीं हो सकती, सोडियम या इसमें जो नमक की मात्रा है वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, हाई हाइपरटेंशन का ये मतलब एक बड़ा सोर्स है ये नमक। इसके बाद हमारा जो है इसमें जो प्रिजर्वेटिव्स हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब हमारे शरीर को अंदर से परेशान करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो पैक्ड फूड है उसमें छिपी हुई चीनी, छिपा हुआ वसा और छिपा हुआ नमक आपके सेहत को पूरी तरह से तोड़ के रख देता है, ठीक है। ये बिस्किट है, केक है और नाश्ते में जो मिलने वाले अनाज है, ये सारे आपको अंदर अंदर से परेशान करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। पैकेट वाला जूस जो है, शीतल पेयजल जो आपको मिल जाता है आसानी से, वो भी आप पीते हैं। इसके अलावा मीठी वाली चाय जो मार्केट में मिलती है वो आप पीते हैं, टॉफ़ी खाते हैं। इसके अलावा नमकीन है, चिप्स है, इंस्टेंट नूडल्स हैं, रेडी टू ईट भोजन की जितनी भी चीज़ें आती हैं कि बनाओ तुरंत खा लो इंस्टेंट बन जाएगा। इसके अलावा सॉसेज हैं, कैचअप्स हैं, चटनी है, अचार है, पापड़ है, बेकरी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये आपके लिए एक तरह से छलावा हैं, मैं ये कहूँगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान देना है और भोजन को हमेशा स्वस्थ वर्धक बना के ही खाना है, यानी कि मेवे हैं, यानी मतलब ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको ज़रूर कंज्यूम करें, हर ड्राई फ्रूट नहीं लेकिन हाँ खजूर है, ये सारी चीज़ें इजीली मिल जाती हैं और कॉस्ट फ्रेंडली भी होती हैं, आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा मिक्स आते हैं मतलब ड्राई फ्रूट्स, उनको भिगो के, जैसे गर्मी का सीज़न है तो आप ड्राई फ्रूट्स ड्राई नहीं खा सकते, उनमें थोड़ा सा मतलब उनको हाइड्रेट करके फिर खाएं। इसके अलावा चना गुड़ तो आप ज़रूर कंज्यूम करें, अगर आयरन की कमी आपके बॉडी में है तो आप चना गुड़ रोज़ सुबह ज़रूर खाएं। इसके अलावा मतलब जो मैंने आपको बताया कि मतलब सुबह के समय आपका खाना बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जो सेमी कुकड हो, मतलब गैस पे चढ़ा ही ना हो, मतलब उसको आपने खुद ही बनाया हो, ठीक है। पैकेट वाली चीज़ों से बचें, ध्यान दें कि क्या आपके लिए अच्छा है क्या बुरा है, क्योंकि आपका शरीर सिर्फ आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं, ठीक है। तो चलिए गाना सुनते हैं, जिसको सुन के आप लोग थोड़ा सा परेशान हो गए थे, आरजे बिना क्या सुना रही हैं कि हमारे मोहल्ले वाले हमको देख के हमारा मतलब मजाक उड़ाने वाले हैं क्या, नहीं नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये गाना देख के सुन के आपको लगेगा कि हाँ किसी के मोहल्ले में जाओ तो कोई ध्यान से देख रहा है तो ज़रूर कोई बात है, बॉस।

हम हैं राही प्यार के और फिर मिलेंगे चलते चलते, ये बात तो सही है, लेकिन हम जाने वालों में से नहीं हैं, बस आपके पास रहने वालों में से हैं। और चलते चलते जो मेरी सलाह है वो आप लोग के लिए बस यही है कि आप लोग इस जो कहते हैं ना पोषण सप्ताह है, इसकी सीरियसनेस को समझें, और जो भी मतलब मैंने आपको चीज़ें बताई उसकी जो कहते हैं ना कि एक एक बात को ध्यान से अपने मतलब डेली प्लान में लागू करें, और कोशिश हो तो मतलब जो इम्पोर्टेंट बताया जैसे कि अ फ्रूट अ डे, मतलब मैं एप्पल की बात नहीं करूँगी क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मतलब मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ जो बच्चे यहाँ पे रूम वगैरह लेके पढ़ते हैं बाहर, तो वो एप्पल अ डे कभी कभी अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें उन्हें मैनेज करनी होती है, रूम रेंट है, ये है वो है, मतलब बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो अगर कई बार आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो उस समय कुछ और ऐसा जो आप अफोर्ड कर सकते हो, मतलब एक फ्रूट अ डे आपको मतलब कंज्यूम करना ही है एट एनी कॉस्ट, हर एज ग्रुप वालों को, मैं सबकी बात कर रही हूँ, ठीक है। मिनिमम एक, मैक्सिमम आपकी मर्जी है, ठीक है ना। अभी ये नहीं कि आप दिन भर फ्रूट पे ही हैं, हाँ कभी कभी क्या होता है हमारा डाइजेशन ओके नहीं होता तो हमें मतलब जो कहते हैं ना कि फ्रूट जो है वो ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए क्योंकि ये हमें अंदर से हाइड्रेटेड रखते हैं, ठीक है। तो अब समय भी हो चुका है आपसे दूर जाने का, कुछ ही मिनटों में आपके साथ फिर से लाइव होंगी मैं आपके वाले शो गोंडा मैसेज मसाला में। तब तक के लिए बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन ज्ञान सिटी 9.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन, स्टे ट्यून्ड।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th, आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो, आपकी फेवरेट आरजे बीना के साथ।
1: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।

वैसे प्यार का नशा जब चढ़ना शुरू होता है तो सारे नशे उतर जाते हैं, यानी कि पढ़ाई का नशा, दोस्ती का नशा, सारा नशा। लेकिन आज ये प्यार का

बिल्कुल, इश्क का रंग गहरा हो जाए तो फिर बात क्या हो जाए। तो मेरे सारे लिसनर्स का वापस से वेलकम है आपके वाले शो घोंडा मैसेज मसाला यानी कि आरजे बीना वाला में। एंड यस, आज की शाम की शुरुआत ही हुई है बहुत सारी जानकारी के साथ, तो आज की कहानी भी आपको मोटिवेट करेगी ये तो डेफिनेटली। और कहानी शुरू करने के पहले मैं चाहूँगी मेरे सारे लिसनर्स हाथ उठा ले कि कौन कौन कहानी सुनने के साथ साथ अपनी अटेंडेंस भी लगाने वाला है।

कैसे कटे ये दिन, कैसे कटे ये रात तेरे बिन। हम हैं अकेले, बिल्कुल हम हैं अधूरे, और इस अधूरेपन को दूर करने का काम और जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। फिलहाल के लिए मुझे ये बताइए कि जो सो के उठ गए हैं और जो उठ के सोने वाले लोग हैं, वो फटाफट से मुझे ये बताएं कि आज मतलब कहानी सुनने का इरादा नहीं है क्या? आज की कहानी तो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाली है, ना सिर्फ मोटिवेट करने वाली है बल्कि आपको ये बताने वाली है कि इंसान अगर दुनिया में ना हो तो इंसान किस हद तक किसी को प्यार कर सकता है। वैसे तो हम किसी के जीते जी भी उसको बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते हैं, और उसके जाने के बाद तो हम बस उसके ख़िलाफ़ कुछ गलत नहीं बोलते, बाकी क्या ही किसी को मतलब हम एहसास दिला सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि इंसान को उसके होने या ना होने पे उसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा या कम देनी है, पर हाँ मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि हमें किसी की मौजूदगी में उसको इतना प्यार दे देना चाहिए कि वो आप में अपनी दुनिया को ढूंढ ले। सच कह रही हूँ ना मैं? हाँ बिल्कुल, और आपको लगना भी चाहिए कि जो बातें सच्ची हैं वो सच्ची ही रहेंगी। फिलहाल सुनने वालों, उठने वालों, उठ जाओ और चलिए आप लोगों से बातें करते करते मतलब मन करता है कि कितनी ही बातें कर लूँ, और शाम से ही आज तो मैं बातें कर रही हूँ आप लोगों से, थोड़ी नहीं ज़्यादा नहीं बल्कि आपसे इम्पॉर्टेंट बातें कर रही हूँ। तो आज देखते देखते आज सेप्टेम्बर का 8वां दिन है, और ये दिन हमें कई सारी चीज़ें याद दिला रहा है। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी ऐसी चीज़ हो हमें याद दिला रहा है जिसके बारे में हमें नहीं पता। जी हाँ, आज है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। जी हाँ, एक ऐसा दिन जिसके बारे में पूरा देश नहीं पूरी दुनिया बात करेगी आज, और मुझे लगता है कि अगर पूरी दुनिया बात कर रही है तो इसके बारे में हमें बात करना तो बहुत ज़रूरी है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है, पूरी दुनिया में शिक्षा को लेके जागरूकता फैलाई जा रही है, और हम पीछे कैसे रह सकते हैं? जी हाँ, सबसे पहले तो ये जानिए कि 17 नवंबर 1965 को यूनेस्को के द्वारा ये दिन मनाने की घोषणा की गई थी, यानी कि 8 सितंबर को मनाया जाएगा इंटरनेशनल लिटरेसी डे। और उद्देश्य की बात करें, इस दिन को मनाने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि सामुदायिक, सामाजिक और हर तबके को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और इस बार की थीम की बात करूं, लोग, पृथ्वी और समृद्धि के लिए साक्षरता। हाँ, इस बार की थीम ही तो सबसे ज़्यादा खास है, यानी कि ना सिर्फ एक इंसान, ना सिर्फ पृथ्वी, बल्कि हम दोनों के लिए जो साक्षरता है वो होनी चाहिए। मतलब आप पढ़ने के बाद अपनी पृथ्वी का ख्याल नहीं रख रहे हैं तो आपकी पढ़ाई का क्या फ़ायदा, खुद सोच के बताइए। आप इतने पढ़े, कहते ना कि पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा, हमारे यहाँ कहते ना पढ़े लिखे मतलब तुम लोग के काला अक्षर भैंस बराबर है। बिल्कुल, अगर आप अपने पढ़ाई का सही यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपकी पढ़ाई टोटल वेस्ट है। अपनी पढ़ाई से अगर हम किसी इंसान की मदद नहीं कर पा रहे हैं, किसी को हेल्प आउट नहीं कर पा रहे हैं, आप सोचते होंगे कभी कभी, मतलब कई बार मैंने देखा लोगों को बहुत सारा ज्ञान होने के बावजूद भी वो अपना ज्ञान नहीं किसी को देना चाहते, हम क्यों बताएं, जाएंगे अपना ढूंढेंगे कहीं से कर ही लेंगे, चैट जीपीटी से कर लेंगे। नहीं, हमारे ज्ञान का सच्चा प्रयोग तो मानवता की सेवा में है, पृथ्वी की सेवा में है। तो इस बार की थीम भी बड़ी ही अच्छी है, जिसके बारे में बात करने के बाद मुझे बड़ा अच्छा सा लग रहा है, और इतना खास दिन मनाने के पीछे क्या कारण है ये भी जान लीजिए। अब आपके मन में सवाल तो आया ही होगा कि क्यों मनाया जा रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है। तो भाई, कहानी भी मैं डिस्क्लोज कर ही देती हूँ कि इस दिन को मनाने के पीछे यही उद्देश्य था कि पूरी दुनिया में जो शिक्षा को लेकर जागरूकता है वो बढ़ाई जाए, और आपको ये पता चले पूरी तरह से कि जो सिंपल तौर पे लोगों के अंदर मतलब एक मिथ था पहले कि अरे पढ़ लिख के क्या करना, मुझे कौन सा नौकरी करनी है। लोग पहले ये सोचते थे कि नौकरी करने के लिए पढ़ना लिखना ज़रूरी है। नहीं, आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, और ज्ञान कभी वेस्ट नहीं होता। इससे जुड़ी मैं एक कहानी भी आपको सुना चुकी हूँ ना, वो चोर वाली, किसने वो चोर वाली कहानी सुनी थी और याद है, तो मुझे लगता है कि हर किसी को याद ही होगी।
क्योंकि ये कहानी ना सिर्फ एक कहानी है बल्कि हमारे लिए एक मैसेज भी थी कि यार थोड़ा ही ज्ञान मिला लेकिन काफ़ी था उस चोर को अपनी जान बचाने के लिए। तो 1965 में ईरान के तेहरान में शिक्षा मंत्रियों का एक विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें निरक्षरता को ख़त्म करने और दुनिया भर को साक्षरता पर जोर बढ़ाने के लिए ये दिन मनाने की बात कही गई। इसके बाद यूनेस्को ने 1966 में 14वें जनरल कॉन्फ्रेंस में 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने की घोषणा की। जब पहली बार मनाया गया तो साल था 1967 यानी कि 1967 8 सितंबर को ये दिन मनाया गया। तब से हर साल मनाया जाने लगा। तो ये दिन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसीलिए बन गया क्योंकि हर किसी के लिए ज़रूरी है शिक्षा। वैसे अगर इस दिन की बात करें तो इस दिन को और बेहतर बनाने के लिए देखो विद्यार्थी हैं या हम सभी हैं तो आज बात कर रहे हैं। बात करना बहुत ज़रूरी है। किसी व्यक्ति का नाम पढ़ लेने से या किसी व्यक्ति को अपनी जॉब पा लेने से साक्षरता ख़त्म नहीं होती। अगर आधुनिक दुनिया की बात करूँ तो इसकी भूमिका काफ़ी बड़ी है। आज साक्षर व्यक्ति को जानकारी समझने, सही निर्णय लेने, रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने और समाज में अपनी बात कहने के लिए भी साक्षर होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास शब्द नहीं होंगे अगर आप पढ़े लिखे नहीं होंगे। ज़माना डिजिटल हो चुका है। हर इंसान को मतलब मैं देख रही हूँ कि एक ऐसा इंसान जो शायद कांपते हाथों से रिक्शा चला रहा है, एक ऐसा इंसान जो धीरे धीरे जूते चप्पल सिल रहा है लेकिन उसको भी डिजिटल बनना पड़ रहा है। हर इंसान आके कह रहा है फ़ोन पे चलाते हैं क्या, ऑनलाइन लेते हैं क्या, तो उसको भी डिजिटल होना पड़ रहा है। तो साक्षर होना ये नहीं है कि आप जाके मतलब इंजीनियर ही बन जाइए, डॉक्टर ही बन जाइए, नहीं। आपकी पर्टिकुलर ग्रोथ के लिए भी साक्षरता का होना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को के अनुसार कम से कम 739 मिलियन युवा और व्यस्क अभी भी बुनियादी साक्षरता कौशल से वंचित हैं, यानी कि उन्हें शिक्षा का बिल्कुल भी मतलब अनुभव ही नहीं है। और ये आंकड़ा हमें डराता है और बोलता है कि नहीं अभी तो दिन मनाना पड़ेगा। कोई दिन हम इसीलिए मनाते हैं कि उसकी जो उससे जुड़ी जो चीज़ें हैं वो कमज़ोर ना पड़े। तो ये तो हो गई साक्षरता दिवस की बात। और आप बताइए कि पढ़ना लिखना आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। क्या पढ़ना लिखना सिर्फ नौकरी या हमारे इकोनॉमी को बढ़िया करने के लिए ज़रूरी है या फिर कोई और चीज़। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको लिटरेसी रेट बता दूं, यानी कि साक्षरता दर जिसे बोलते हैं। अगर बात करें उज़्बेकिस्तान का 100% साक्षरता दर है। दूसरे नंबर पे नॉर्वे है। नॉर्वे की तो बात हमेशा टॉप फाइव में रहती ही है, चाहे वो खुशियां बांटने की बात हो चाहे वो किसी चीज़ की। 100% साक्षरता दर है नॉर्वे का। नॉर्थ कोरिया 100%, रशिया 99.9%, टूवालू 100%। ये ऐसी कंट्रीज है जहाँ का 100% नियर अबाउट रेट है। आहा क्या बात है। अब बात करते हैं जिनका सबसे कम या कहें बिल्कुल लोएस्ट लिटरेसी रेट है, वो है साउथ सूडान, चाड, माली। ये तीन ऐसे देश हैं जहाँ का साक्षरता दर काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ये सोचने की और एक डरने की बात भी है। अब बात करते हैं इंडिया की। आखिर इंडिया का लिटरेसी रेट क्या है। अब मैं इंडिया का लिटरेसी रेट ओवरऑल अगर बताऊं तो 94.00 है अराउंड। मतलब हमारे देश का नहीं, मतलब हमारे देश का जो मेन टॉप स्टेट्स हैं उनका 94 लमसम है। लेकिन अभी हाल ही में अगर देखें तो कुछ स्टेट्स ने अपना लिटरेसी रेट बढ़ा लिया है, यानी कि मिज़ोरम का 98.2 है जो कि हाईएस्ट है, लक्षद्वीप का 97.3 है। अब आप सोच रहे हैं इनका हाई क्यों है, भाई वहाँ की पॉपुलेशन थोड़ी कम है। केरला का 95 है जो कि पहले 94 था। अभी त्रिपुरा का 93 है, गोवा का 93 है। ये वो क्षेत्र है जहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम है। तो
ये तो बात हो गई लिटरेसी रेट की हमारे देश की, तो ये हमारे देश की स्टेट्स की अगर ओवरऑल देखें तो 80.9 लिटरेसी रेट है हमारे देश का, जो कि रिकॉर्ड किया गया था 2023-2024 के टाइम पीरियड में, ठीक है। और मेल लिटरेसी रेट है 87.2, फीमेल लिटरेसी रेट है 74.6, अर्बन लिटरेसी रेट है 88.9 to 90%, रूरल लिटरेसी रेट है 77.5 to 77%, और हिस्टोरिकल बेसलाइन की अगर बात करें तो तब 18.33% थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक गाना सुनते हैं पढ़ाई से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, तो एक गाना हमारे और आपके नाम।

तो चलिए शुरू करते हैं। उस दास्तां को सुनाने की बारी आ चुकी है जिसे सुनाने के लिए मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ आज के दिन का, यानी कि मंगलवार का। और ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, ये जज्बे की कहानी है। तो सबसे पहले तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग धर्मेंद्र जी, सनी, जुगल, सबलू, सबका स्वागत है, सबका स्वागत है। ओके, मुंबई आ गए हैं लेकिन हमें तो मिठाई अभी तक मिली ही नहीं।

जैसे इस गाने की लिरिक्स है, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ साथ होगा। चलिए इस गाने को सुनाती हूँ, फिर आप समझेंगे कि कहानी क्यों इतनी दिलचस्प है।

अब गाना सुन लिया आप लोगों ने, अब कहानी सुनिए। आज मैं जापान में घटी एक ऐसी आपदा की बात करूं। वैसे जापान में आपदाएं तो बहुत सारी आई हैं, पर एक ऐसी आपदा जिसने एक प्यार की कहानी को जन्म दिया। साल 2011 में एक विनाशकारी सुनामी आई थी, जिसमें बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी परिवारों ने अपनों को खोया था। अब मैं 2011 वाली पहले सुनामी के बारे में भी बता देती हूँ कि 2011 में जो सुनामी एक्चुअली में आई थी वो किस लेवल की सुनामी थी, तो समझते हैं उस सुनामी का लेवल भी कि वो सुनामी क्यों इतनी खास थी। वैसे आप सभी को पता है, सुनामी नाम सुनते ही हम लोग के दिल, हमारे हम लोग को जो कहते हैं ना कि आत्मा है, वो सहर जाती है, और हम लोग मनाते हैं कि दुनिया में ऐसी आपदाएं कहीं भी ना आए। तो बात है 11 मार्च 2011 की। साल था 11, तारीख थी 11, महीना था मार्च का 9.0 और 9.1 की तीव्रता से भूमिगत पहले तो भूकंप आया, जिसकी वजह से समुद्र में विशाल लहरें उत्पन्न हुई और इन लहरों की श्रृंखला बहुत लंबी थी। दोपहर के 2:46 पे जीएसटी होशु के प्रशांत तट पर आया ये भीषण भूकंप लगभग 6 मिनट तक चला था और जापान में अब तक सबसे शक्तिशाली भूकंप था। ये लहरें जो थीं वो परिणाम स्वरूप इतनी ज्यादा ऊंची उठ रही थी मानो पूरा का पूरा शहर निगल जाएंगी। 130 फीट ऊंची पानी की दीवारें अपने आप खड़ी हो जा रही थी। 6 मील तक अंतरदेशीय क्षेत्र में फैल गई थी ये लहरें और स्थानीय समुद्री दीवारों को ध्वस्त कर डाला था। हताहतों की संख्या जो थी वो लगभग 20,000 बताई गई उस समय, जिनमें अधिकांश की मौत डूबने से हुई और क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा। फुफुशिमा जो थी वहाँ के, यानी कि भीषण बाढ़ में जो पानी है वो फुफुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आपातकालीन बैकअप जनरेटरों को नुकसान पहुँचाया, और जिससे पिघलाव जो है वो काफ़ी तेज़ी से हुआ और रेडियोधर्मी जो है उसका रिसाव भी हुआ। पुनर्निर्माण में काफ़ी समय लगा, लेकिन ये जो 20,000 की संख्या मैंने बताई, ये संख्या उनके परिवारों को झकझोर देने वाली थी। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो शायद अपने परिवार के साथ इस सुनामी में मारे गए थे, और इसी सुनामी से जुड़ी है ये प्रेम की दास्तान। कहानी है युसाओ ताकामात्सु की। ध्यान से सुनिएगा, युसाओ ताकामात्सु एक जापानी व्यक्ति है।

तूफान में जब अपनी पत्नी को डूबते हुए उन्होंने देखा तो वो समझ गए कि कुछ तो करना पड़ेगा और उन्होंने अपनी पूरी जान लगाई अपनी पत्नी को डूबे हुए लोगों में ढूंढने की। पर वो उन्हें नहीं ढूंढ पाए, इवन उनको उनकी बॉडी भी नहीं मिली। जब सुनामी रुक गई, सब कुछ मतलब अपनी जगह स्थिर हो गया, तब इन्होंने अपना मोबाइल चेक किया। इनके मोबाइल पे एक मैसेज आया था। मोबाइल था, क्या तुम ठीक हो? मैं घर जाना चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे लेने आओगे? ये संदेश उनको ड्राफ्ट में भेजा गया था और लिखा था, सुनामी बहुत बड़ी है। उन्होंने उसी दिन से ठान लिया उस मैसेज को पढ़ने के बाद कि वो अपनी पत्नी को अपने अंतिम सांस तक ढूंढते रहेंगे। युसाओ ने युको को खोजने में 2 साल, उनकी पत्नी का नाम युकोको था, को खोजने में 2 साल बिताए। उसने स्थानीय पार्कों, जंगलों, समुद्री तटों, हर जगह जाके छानबीन की। मतलब 2 साल तक तो वो बैठे ही नहीं। फिर उन्होंने सोचा कि जो इंसान अब धरती पे नहीं मिला वो जरूर सुनामी के साथ बह के तूफान में समुद्र में चला गया होगा। उन्होंने ये भरोसा है कि उन्हें समुद्र में उनकी पत्नी जरूर मिलेंगी। वो 2011 से आज तक अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं और उसी दिन से उन्होंने ठान लिया कि वो स्कूबा डाइविंग सीखेंगे। और अपनी पत्नी, प्रेमिका, जो भी आप कहें, उनकी तलाश करेंगे। वो लगभग हर हफ्ते पानी में जाकर सुराग की तलाश करते हैं। वे अपनी पत्नी को घर वापस लाना चाहते हैं। उनका मिशन आज भी जारी है क्योंकि उनकी पत्नी ने ये लिखा था कि मैं घर वापस आना चाहती हूँ। ये मैसेज ना सिर्फ एक मैसेज था बल्कि एक छोटी सी उम्मीद थी एक इंसान के जीने के लिए। अगर बात करें युसाओ की, तो चाहते तो वो भी इतनी बड़ी दुनिया में एक इंसान के जाने को भूल सकते थे, जैसे हम सभी भूल जाते हैं। अभी हाल ही में मैंने एक मतलब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर टाइप कह सकते हैं या कुछ भी मैं उनको बोलूं, तो मैं नाम तो नहीं यहाँ पे लूंगी, उस सेलिब्रिटी के फादर की डेथ हुई। मतलब काफ़ी ज़्यादा वो मतलब लोगों के बीच हिली मिली हुए हैं। मतलब तो उस सेलिब्रिटी के फादर की डेथ हुई और उन्होंने एक नॉर्मल सा शोक संदेश शेयर किया और उसको शेयर करने के बाद मतलब नेक्स्ट डे वो एक मतलब ट्रिप मतलब प्लान करने के लिए बात कर रहे थे। सोशल मीडिया पे वो क्वेश्चन कर रहे थे कि अब घूमने के लिए कहाँ जाया जाए। मतलब मैं ये कहूँगी कि इंसान कितनी जल्दी 24 घंटे में मूव ऑन कर सकता है। पर यहाँ युसाओ को जब पता चला कि उनकी पत्नी ने एक मैसेज किया है कि मैं घर वापस आना चाहती हूँ, वो पिछले 10 सालों से, उससे भी ज़्यादा से, अपनी पत्नी को रोज समुद्र में ढूंढने जाते हैं। कितनी बड़ी बात है यार। आज इंसान जिंदा इंसान को इतनी वैल्यू नहीं करता है। वो ज्यादा से ज्यादा समय पानी में रहते हैं और अपनी पत्नी को ढूंढते हैं। अब आप बताइए कि ऐसे इंसान के बारे में जान के आपका मन भावुक हुआ कि नहीं? युसाओ की स्टोरी ने आपको अंदर से झकझोरा कि नहीं? मतलब मैं तो इस कहानी को जानने के बाद मतलब मुझे गूज़बम्स फील हुए और मुझे ऐसा लगा कि यार कोई प्यार करे तो ऐसा, नहीं तो फिर ना ही करे। इनकी कहानी ने मुझे, सच्ची बताऊं, बहुत मतलब अंदर से झकझोर सा दिया। कह रहे हैं कि लोगों का कहना है कि इन्होंने 800 से

ज्यादा बार डाइव की हुई है समुद्र में और अपनी पत्नी के अवशेषों को ढूंढने में लगे हैं। आज भी वो हर हफ्ते जाते हैं गहरे पानी में और वो कहते हैं जब मैं पानी में होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी पत्नी के बहुत करीब हूँ। और मुझे लगता है ये स्टोरी बहुत ज़्यादा खास है, महसूस करने वाली स्टोरी है। एंड रियली बहुत सारी शुभकामनाएं यूसाओ, और मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगी कि यूसाओ को उनकी पत्नी के अवशेष ज़रूर मिले। चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गाना यूसाओ के लिए।

जी हाँ, फिल्म की तरह थी ये कहानी, एक फिल्मी स्टोरी की तरह, सच बता रही हूँ। और ये कहानी ने मतलब मुझे इतना मतलब भावुक कर दिया। जब मैंने इस कहानी को पढ़ा तो मतलब मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाई कि कोई इंसान इतना कैसे समर्पित हो सकता है। आज युसाओ 57 वर्ष की उम्र में भी स्कूबा डाइविंग कर करके अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि समुद्र में उनकी पत्नी के अवशेष जरूर मिलेंगे। वो अपने साथ उन अवशेषों को रखना चाहते हैं, उन्हीं अवशेषों को घर लाना चाहते हैं। काफी समय तक वो गहरे पानी में रहते हैं। कहते हैं कि जब मैं गहरे पानी में रहता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपनी पत्नी के बहुत करीब हूँ। तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि युसाओ की ये जो कहानी है कि क्यों इतनी खास है? क्या सिर्फ प्यार ही है या फिर कुछ और? तो इसी बात पे ये स्टैंजा भी सुन, कब ध्यान से सुनिए।

करूँगा। तो ये रहा एक छोटा सा गाने का टुकड़ा जो मुझे बिल्कुल नहीं आता था, पर मैंने सिर्फ युसाओ के लिए गाया क्योंकि वो सच में उन्हें याद करके रोते हैं। अब आप बताइए, आपके पास भी कोई ऐसी दर्दनाक कहानी है जिसे सुन के आप भी अकेले में रोते हो कि यार राहुल हमारे साथ हैं और खामोशियाँ भी बहुत कुछ कह जाती हैं, हर बात जुबां की कहीं नहीं जाती, कुछ लोग दूर होकर भी करीब रहते हैं क्योंकि हर रिश्ते की दिल से दूरी तय नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही एसाओ को जब उसकी पत्नी का मैसेज मिला, उसके मरने के बाद बेसिकली मैसेज मिला कि मैं घर आना चाहती हूँ, सुनामी बहुत बड़ी है, तो वो सच में उसी समय जैसे लगता फ्रीज हो गया, उसकी दुनिया वहीं रुक गई कि मेरी पत्नी मुझे ढूंढ रही थी। सोनिया लिखती है कि इतना दर्द क्यों मुझे मिलता है बालाजी, क्या मेरी खामोशी भी तुझे सुनाई नहीं देती, हर रात आंखों में आंसू लेकर तेरा नाम पुकारती हूँ, फिर भी मेरी फरियाद तेरे दर तक क्यों नहीं पहुँचती, मैंने तो हर हाल में तुझ पर भरोसा रखा है, अपने हर आंसू को तेरे चरणों में रखा है, अब और इम्तिहान मत ले मेरे बालाजी, थक गई हूँ अपने दर्द को अकेले सहते सहते। क्या बात है सोनिया जी, बड़ी भावुक लाइनें आपने लिख दी। पप्पू हार्डवेयर गोंडा, क्या बात है, नाम बड़ा अच्छा सा है आपकी दुकान का लग रहा है। और नवीन गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? और इसी के साथ चलिए आगे बात करते हैं और एक प्यारी सी कविता पढ़ते हैं इन लोग के लिए, मतलब इन लोग के लिए यानी कि एसाऊ और इनकी पत्नी के लिए। आप महसूस करिएगा इसको दिल से, तभी आपको मजा आएगा, ठीक है ना? आई होप ये कविता आपके दिल तक जाएगी। समंदर ने छीना था जिसे, वो रिश्ता कहाँ खो पाया था, एक आखिरी पैगाम ने उसे उम्र भर का वादा बनाया था, मैं घर आना चाहती हूँ बस इतना कहकर वो चली गई, और वो आज भी हर लहर में अपनी मोहब्बत ढूंढता रहा, कभी डूब कर कभी इंतज़ार में, कभी खामोश उस पार में, क्योंकि सच्चा प्यार वो नहीं जो साथ रहते हुए निभाया जाए, सच्चा प्यार वो है जो बिछड़ने के बाद भी उम्र भर इंतज़ार करता रहे, सच्चा प्यार वो है जो उम्र भर ना होने पर भी इंतज़ार करता रहे। वो चली गई मगर अपनी आवाज़ ठहर गई, समंदर की हर लहर में एक पुकार ठहर गई, घर आना है उसको इन शब्दों को उसने अपनी ज़िंदगी बना लिया, और हर गहरे पानी में उसने अपना प्यार तलाश लिया, वक्त गुजरता गया मौसम बदलते गए मगर उसका इंतज़ार वहीं का वहीं रहा। कहते हैं मोहब्बत साथ रहने का नाम है, पर उसने साबित कर दिया मोहब्बत कभी कभी किसी के लौट आने की उम्मीद बनकर भी पूरी ज़िंदगी तैरती रहती है। एक गाना था बड़ा पुराना सा, मैं आपको सुनाऊंगी।

यस ऑफ कोर्स। और ये सारे गाने हमें किसी से जुड़े होने का एहसास हमेशा दिलाते हैं, और ये गाने हमेशा मेरी प्लेलिस्ट की टॉप, मतलब कहते हैं ना, गानों में आ जाते हैं। फिलहाल आप लोग बताइए कि आप लोग इस कहानी से जुड़ने के बाद कितना ज़्यादा मतलब फील कर पाए इमोशंस को, मतलब सबसे ज़्यादा तो इमोशन की बात है कि आप कितना इमोशंस को फील कर पाए। और थैंक यू सो मच धर्मेंद्र जी, वैसे गाने तो आप लोग भी सुनते ही रहते हैं, आप लोगों से ही सीखे हैं मैंने अलग अलग गाने प्लेलिस्ट में लेना, और ना सिर्फ ढूंढ ढूंढ के लाना बल्कि उन गानों को अपनी कहानी के साथ कनेक्ट करके आप तक पहुँचाना। और आप बताइए, क्या आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान या ऐसी कोई कहानी आपने सुनी जिसको सुन के आपका दिल एकदम भावुक उठा और सुन के मतलब आँखों में आंसू आ गए, यार कि ऐसे कैसे हो गया। और हाल ही में एक मतलब मैंने सुनी थी कहानी, क्या रियल न्यूज़ में मतलब पढ़ा था मैंने, कि एक आदमी मतलब अपनी पत्नी की उसकी डेथ हुई तो वो अपनी पत्नी को अपने मतलब दाह संस्कार करने गया और वहीं भी उसने अपनी भी जान दे दी, मतलब खुद नहीं दी ऐसे मतलब बैठे बैठे उसकी जान निकल गई। तो ये होता है सच्चा प्यार, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी के जाने के बाद उसके पीछे अपनी जान दे दें, पर उसकी मौजूदगी में भी उससे इतना प्यार करें, इतना प्यार करें, इतना प्यार करें कि वो सामने, मतलब प्यार करने का मतलब क्या होता है आप बताइए कि किसी को बहुत प्यार करने का मतलब क्या है भाई, उसकी केयर करना, उसको हर समय इम्पोर्टेंस देना, हर समय मतलब कि आप कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, आप सामने वाले को भूलो नहीं। क्या होता है कई बार हम लोग, मैंने ये बहुत कॉमन मतलब आज की डेट की प्रॉब्लम है, बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो मतलब अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप में से भी कोई ऐसा है जो अपने प्यार से जुड़ी कोई समस्या शेयर करना चाहता है वो मुझे ऑन एयर शेयर करे, मतलब कॉल करके बताए कि मैम मुझे मेरे कमिटेड रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम दिख रही है, वो मुझे टाइम नहीं दे रहा या दे रही या वो मुझे इग्नोर कर रहा है, तो मुझसे शेयर करें, तो ऑन एयर हम उस पर बात करेंगे कि इसका सलूशन क्या होगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि मतलब जब तक सामने वाला हमारे पास नहीं होता है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक लड़का एक लड़की को बहुत पसंद करता है और वो जब तक उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करती तब तक वो उसकी हर अच्छी बुरी चीज़ पर मतलब ध्यान देता है और वो उसको मतलब स्टॉक बेसिकली कहते हैं करता है और उसकी हर चीज़ का ध्यान रखता है, मतलब उसकी तारीफ़ करता है और उसके साथ बैठ के चाय पीता है, कॉफ़ी कैफ़े जाता है, पर वहीं अगर वो इंसान उसके पास आके परमानेंट उसके साथ रहने लगे, चाहे वो लिव इन में हो चाहे शादी के बाद, तो वो एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देना भूल जाते हैं, बस एक दूसरे पर गुस्सा करना, अपनी ज़रूरतें बता देना, बात वहीं ख़त्म। कभी वो साथ में बैठ के एक दूसरे की तारीफ़ नहीं करते, वो एक दूसरे से मतलब ये नहीं कहते कि चलो साथ में बैठ के चाय पीते हैं, थोड़ी बातें करते हैं। तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है जब हम एक दूसरे के साथ हो। वैसे तो कहते हैं ना घंटों चैटिंग होती है, फ़ोन पे बातें होती है। एक मेरी लिसनर ही बता रही थी कि मैम मेरी लव मैरिज हुई है और मतलब मेरी शादी के पहले जो मतलब मेरे हस्बैंड है वो मुझे बहुत प्यार करते थे एंड वो मुझे कॉल करते थे, हमेशा मुझे फील कराते थे कि मतलब मैं उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हूँ, कहीं जाते थे तो मेरे लिए चाहे एक रोज़ लेके आए तो ज़रूर लेके आते थे, लेकिन जब हमारी शादी हुई, शादी तय फिक्स होने के बाद ही उन्होंने मुझे इंपॉर्टेंस देना कम कर दिया कि यार अब क्या बात करनी ज़्यादा, शादी तो होने ही वाली है, फिर शादी हो गई उसके बाद तो बात करना एकदम ना के बराबर, घर में होने के बावजूद वो अपनी पत्नी से जब कोई काम होता है तभी बात करते हैं, मतलब कुछ चाहिए या कुछ मांगना है कि यार मुझे ये ला दो वो ला दो, मतलब ज़रूरत पे बातें हो रही हैं, कहीं बाहर गया है तो वो कॉल नहीं करता, हाँ कुछ पूछना है बताना है कि मैं नहीं आऊँगा आऊँगा, बस इतना, कोई मैसेज नहीं, कोई मतलब कम्युनिकेशन नहीं, कोई प्यार जताना नहीं। तो ये कहीं ना कहीं आपके बीच के जो आंतरिक प्रेम है उसको दबा रहा है, उसका अलग गला घोट रहा है। तो ये घुटन पैदा मत होने दीजिए, अपने प्यार में कभी कभी खाद पानी डाल दिया करिए अपने रिलेशन में, जिससे कि आपका रिलेशन एकदम हरा भरा रहे जैसे कि पहले था। वो स्माइल एक दूसरे के चेहरे की नहीं जानी चाहिए, आप अगर एक दूसरे को देख के तनाव में आ जा रहे हैं, मतलब माथे पे सिकुड़न आ रही है, तो मतलब आपके प्यार में अभी कुछ कमी है, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे पता है आप बोल वही सैयारा वाले तारा हैं जिसका प्यार हमेशा एक जैसा रहेगा और कभी नहीं बदलेगा, और आप बिल्कुल सैयारा बन के रहिए, मौसम बदल जाए लेकिन आप बिल्कुल अपने सैयारा की तरह चमकते रहिए, ठीक है।
तो चलिए मैं अपने प्यारे लिसनर्स के लिए ये गाना प्ले करती हूँ। और अगर मेरी बात से रिलेट करते हैं कि ऐसा सच में होता है तो मुझे आपके हार्ट्स दिखने चाहिए, और यस कि मैम आपकी बात जो है वो बिल्कुल सही है, ऐसा बहुत सारे लोग के साथ मैंने होते देखा, मेरी एक लिसनर ने मुझे बताया। तो वैसे उनका नाम तो मैं नहीं शेयर करूँगी, पर मुझे उनकी बात सुन के बड़ा मतलब उनके लिए पिटी फील हुआ, और मैंने देखा कि ये सब जगह हो रहा है, एवरीवन इज़ डूइंग दिस, तो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करें। चलिए सुनते हैं वो गाना जो आपको याद दिला देगा कि आपको सैयारा बन के अपने प्यार में खाद पानी देनी है।

और हाँ, मौसम चाहे कितना भी बदले, आज जो बिना वहीं की वहीं वैसी की वैसी रहेंगे, और कल फिर बात करेंगे। और कल हाँ आपके साथ होगी गानों की जुगलबंदी यानी कि अंताक्षरी वाली शाम, और कल करेंगे हम धमाल तमाम। तो कोई कहीं नहीं जाने वाला, सुनते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन 89.6 FM, है गोंडा शहर की धड़कन, स्टे ट्यून्ड। और आगे कुछ ही देर में आप सुनेंगे आरजे सिंपल के साथ अपनी पसंद के गाने गीत आपके नाम से। आप सुन रहे थे शो गोंडा मैसेज मसाला आरजे बीना वाला, अपनी पसंदीदा आरजे बीना के साथ। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ बजता रहे गाना, क्योंकि आज से तेरी सारी खुशियां मेरी, और मेरी सारी खुशियां तेरी, और तेरे सारे सारे सारे गम मेरे हो गए।

0: से तेरा। जब खुदा किसी को बनाता है ना तो उसमें कुछ खास बात होती है, लेकिन खुदा ने अदा को बनाया।
1: Very, very good evening and welcome in your show, Parmaishi with your just simple who is not so simple. और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। Stay tuned everyone. बचपन से पचपन तक का हिट वाला गाना स्टेट।

श्रीकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने शो फरमाइशी में अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सोर्स किया है तबाही तय है तो क्यों ना इसे बेहिसाब करें, तबाही तय है तो क्यों ना इसे बेहिसाब करें, आज जिंदगी बैठ आज तेरा भी हिसाब करें। न जाने कौन सा चेहरा बचा है चेहरों में, ओहो न जाने कौन सा चेहरा बचा है चेहरों में, अब एक सच कहें और सबको बेनकाब करें। ये जो मेरे कंधों पे चढ़ के खुदा बने बैठे हैं, ये जो मेरे कंधों पे चढ़ के खुदा बने बैठे हैं, उन्हें उतार कर उनका भी कुछ हिसाब करें। बहुत पी चुके इस जमाने के कड़वे घूंट हम। हाँ, कौन कौन रिलेट कर रहा है मुझे चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। बहुत पी चुके जमाने के कड़वे घूंट हम, चलो इन आंखों के पानी को ही क्यों ना तेजाब करें। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। महेंद्र राजस्थान से, आशु मिश्रा जी लखनऊ से, धर्मेश त्रिपाठी गोंडा से, सोनिया तिवारी गोंडा से, नवीन राजपूत जी एमपी से, जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, आशु मिश्रा जी लखनऊ से, धर्मेंद्र मोहन आवास विकास गोंडा से, और इसी के साथ में मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा आपका भी स्वागत है, पप्पू हार्डवेयर गोंडा से आपका भी स्वागत है, सुरेश कुमार जी चौक से, कुमार राहुल गोंडा से, दादा यादव बजाज मिल गोंडा से आपका भी स्वागत है। स्टे ट्यून एंड वेलकम इन योर शो। इसी के साथ में सबीहा निशा पटेल नगर गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, निब्बर जिरानी बाजार सोनार गली गोंडा से आप सभी का स्वागत है और इस्तकबाल है आपके अपने शो फरमाइशी में। सो जिन लोगों ने अभी तक अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही बेहतरीन सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और हमेशा की तरह लगा दीजिए हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत चांद। क्यों? क्योंकि शो आपका, गीत आपके, जज्बात आपके, और ये आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा हमेशा के लिए आपकी है ही ना दोस्तों। सो एंजॉय करते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की पहली फरमाइश। महेंद्र को राजस्थान से सुनना है दोस्तों गाना, तुम जो चले गए तो होगी बड़ी खराबी। सो एंजॉय करते हैं आसपास पिक्चर का ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा महेंद्र की फरमाइश पर, और ऐसे में पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़।

किशोर कुमार और लता जी की आवाज में आसपास पिक्चर का ये गाना हमने एंजॉय किया है दोस्तों। महेंद्र की फरमाइश पे जो की है राजस्थान से, बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश गीत की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है आशु मिश्रा जी की लखनऊ से, लेकिन उसके पहले दादा यादव का बजाज मिल गोंडा से।

टेम्पल की तरफ से वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। राजू सीतापुर से, राजेश कुमार सिंचाई विभाग से, उषा कश्यप जी गोंडा से, अरविंद मनकापुर से, धर्मेश त्रिपाठी गोंडा से, निधि सीतापुर से, प्रमुख कुमार जी लुधियाना से और देवी प्रसाद जी आपका भी स्वागत है। स्टे ट्यून्ड, इंजॉय करते हैं आशु मिश्रा जी की फरमाइश। इनको सुनना है गाना तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ए सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। वाओ, सो एंजॉय करते हैं। हाउ रोमांटिक, लेकिन थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा दर्द भरा हुआ 90s का नगमा, सदाबहार नगमा आशु जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

से प्यार करते हैं, हमने इंजॉय किया ये बहुत ही बेहतरीन सनंगमा आशु मिश्रा जी की फरमाइश पर। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि यूं ही उदास से दिल बेकरार थोड़ी है, आशु मिश्रा जी ये आपके लिए है। यूं ही उदास से दिल बेकरार थोड़ी है, मुझे किसी का कोई इंतजार थोड़ी है। नजर मिला के भी तुमसे गिला करूं कैसे, तुम्हारे दिल पे मेरा इख्तियार थोड़ी है। मुझे भी नींद ना आए उसे भी चैन ना हो, हमारे बीच में भला इतना प्यार थोड़ी है। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेश त्रिपाठी की गोंडा से, उनको सुनना है गाना ना ना ना ना रे ना रे, वो भी नया वाला वर्जन। सो एंजॉय करते हैं राजकुमार और तृप्ति वाला ये सुपर डुपर डुपर डुपर हिट नगमा नए अंदाज में सुपर सर धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश पर जो की है गोंडा से। स्टे ट्यून्ड।

ये गाना था किसकी फरमाइश? धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश पर, और वो है गोंडा से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों सोनिया तिवारी की गोंडा से। सोनिया तिवारी को गोंडा से सुनना है बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, वो भी साजिद वाजिद और राहत फतेह अली खान का नगमा। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा गाना हमारी बहुत ही प्यारी सी सोनिया तिवारी की फरमाइश पर। लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। गीता श्रीवास्तव जी नमस्ते, गोंडा से आपका स्वागत है और आपकी भी फरमाइशी गीत का आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को बेसब्री से इंतजार भी है। सो एंजॉय कर लेते हैं अब सोनिया तिवारी की फरमाइश, सुरीली अखियों वाली सुना है तेरी अखियों से। ओ माय गॉड, और ये गाना डेडिकेट करती हूँ मैं गीता श्रीवास्तव जी को। स्टे ट्यून्ड।

हमने इंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा सोनिया तिवारी की फरमाइश पर जो की है गोंडा से। उनका कहना है कि आपकी मधुर आवाज ने दिल को छू लिया, हर सुर में जैसे प्यार घुल गया। इतनी सुरीली प्रस्तुति के लिए दिल से धन्यवाद आरजे सिंपल जी, आप यूं ही अपनी मीठी आवाज से महफिल सजाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सोनिया तिवारी जी। पढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों, जानते हैं किसकी? अगली फरमाइश है नवीन राजपूत जी की। ग्रीट ऑपरेटर नवीन राजपूत, ग्राम बासला, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश से आई है ये फरमाइश। जी हाँ दोस्तों, नवीन राजपूत जी को, हमारे ग्रेट ऑपरेटर नवीन राजपूत जी को सुनना है गाना तेरे प्यार में मैं मर जावां, हमें न भुलाना सजनी हमें न भुलाना। होगी प्यार की जीत पिक्चर का ये गाना जसपिंदर नरुला और रूप कुमार राठौड़ की आवाज में हम इंजॉय करेंगे सिर्फ और सिर्फ नवीन जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो आवाज विकास गोंडा से रवि आपका स्वागत है।

जाना हमसे दूर न जाना। हमने इंजॉय किया है जसविंदर नरूला और रूप कुमार राठौड़ की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, सिर्फ और सिर्फ ग्रेट ऑपरेटर नवीन राजपूत की फरमाइश पर, जो की है एमपी से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ, लेकिन उसके पहले मेरा कहना है कि तेरे ना होने का मुझको मलाल एक तरफ, तू मेरा क्यों ना हुआ ये सवाल एक तरफ। यकीन मान मैं खुश हूं, मगर तू जब संग था वो पल वो दिन वो महीना वो साल एक तरफ। गुलाब पर ये चटक रंग चढ़ेगा कैसे भला, मैं बैठा सोचने रख के गुलाल एक तरफ। जहान भर के है मंजर मेरी नजर में, मगर उस एक शख्स का दिल में ख्याल एक तरफ। हजार शिकवे शिकायत मुझे हैं तुझसे, मगर वो कुछ दिनों की तेरी देखभाल एक तरफ। इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश दोस्तों, और जग्गू दादा को एमपी से सुनना है गाना मुखड़ा चांद का टुकड़ा। इंजॉय करते हैं कुदरत का कानून पिक्चर का ये नगमा जग्गू दादा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

यामिनी जी की आवाज में मुकरा चांद का टुकड़ा गाना हमने एंजॉय किया है हमारे जग्गू दादा की फरमाइश पर, जुगल किशोर वर्मा जी की फरमाइश पर, जो कि है एमपी से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ दोस्तों, लेकिन उसके पहले जग्गू दादा जी दो चार दिन वाली दीवानी से मिले हम अब की बार उसको हैरानी से मिले, दो चार दिन वाली दीवानी से मिले हम अब की बार उसको हैरानी से मिले, इसलिए भी हमारी कदर ना हुई हम जिसको भी मिले बड़ी आसानी से मिले। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से, अजय मिश्रा की, उनको सुनना है गाना लाल घाघरा। तो एंजॉय करते हैं सपना अवस्थी जसपिंदर नरुला और अनु मलिक का ये नगमा सिर्फ और सिर्फ अजय मिश्रा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच एवरीवन।

ट्रॉपिकल गोंडा से अजय मिश्रा की फरमाइश पर हमने एंजॉय किया है ये नगमा। दोस्तों बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेंद्र मोहन की आवाज विकास गोंडा से, और धर्मेंद्र मोहन को आवाज विकास गोंडा से सुनना है गाना दीवाना तेरा। सो एंजॉय करते हैं ये गाना सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश पर। लेकिन उसके पहले धर्मेंद्र मोहन जी आपको कुछ कहना चाहूंगी। यूं तो कहने को बहुत लोग हैं साथ मेरे, पर एक तेरी कमी का मलाल एक तरफ। मतलब आपको डेडिकेट नहीं कर रही हूँ मैं, बस आपने फरमाइश की है तो ये आपकी फरमाइशी गीत के लिए है, ठीक है? डोंट गेट इट सीरियस, हाँ पर्सनल। सो यूं तो कहने को बहुत लोग हैं साथ मेरे, पर तेरी एक कमी का मलाल एक तरफ। हजारों बातें मुस्कुरा कर सहली जमाने की, तेरा वो मुस्कुरा कर देखना एक तरफ। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

वाह, हमने एंजॉय किया है ये नगमा धर्मेंद्र मोहन की फरमाइश पर, जो की है आवाज विकास गोंडा से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ, लेकिन उसके पहले सोनिया तिवारी का कहना है कि रात कितनी भी संगीन हो सुबह का आना तय है। सोनिया तिवारी का कहना है कि रात कितनी भी संगीन हो सुबह का आना तय है, दर्द कितना भी गहरा हो वक्त के आगे बेअसर है, हौसला रख ये बादल भी छट जाएंगे, तेरे मुस्कुराने के दिन फिर से लौट आएंगे। ओ माय गॉड, अब एंजॉय करते हैं मालवे नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश। रोटी मूवी का उनको सुनना है गाना, गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा। सो एंजॉय करते हैं ये नगमा। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। मोहित मालवे नगर गोंडा से आपका स्वागत है। वंश यादव बजाज मिल गोंडा से आपका भी स्वागत है। स्टे ट्यून्ड, अब एंजॉय करते हैं ये वाला गाना, मीन्स राजेश सिंह जी की फरमाइश। स्टे ट्यून्ड।

दोस्तों, ऐसे फरमाइशी गीतों का सिलसिला तो चलता रह गया दोस्तों। आपकी आरजे ने भी अपने दिल की बात आप सभी से कह दी है, लेकिन अभी वक्त थोड़ा सा थमने का नाम ले रहा है। जी हाँ, अब वक्त हो चुका है हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया के उस पड़ाव पर जाने का है ना, लेकिन अभी भी बहुत वक्त है। सो दोस्तों, अगली फरमाइश हमारे पास में है देवी प्रसाद जी की गोंडा से। देवी प्रसाद जी को गोंडा से सुनना है गाना चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। एंजॉय करते हैं ये गाना, इसी फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और धर्मेंद्र मोहन का आवाज विकास से कहना है सिंपल जी गुड इवनिंग एंड बेस्ट ऑफ लक। ये रोज मुझे बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं, थैंक यू सो मच। और के कुमार राहुल का कहना है कि कुछ आवाज़ें बस सुनाई देती हैं, कुछ आवाज़ें बस सुनाई देती हैं और कुछ सुनने के बाद याद रह जाती हैं, जैसे आरजे सिंपल मैम जी की आवाज़। बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। अब इंजॉय कर लेते हैं ये वाली फरमाइशी गीत, इस फरमाइशी गीत की उस तरफ चलेंगे आकाशवाणी की न्यूज़ की दुनिया में, फिर उसके बाद में सीधे मिलते हैं 9 बजे आपके अपने फरमाइशी की महफिल में। जिन लोगों ने पेट पूजा नहीं की है फटाफट से पेट पूजा कर लेना, पेट पूजा करने के बाद में मिलते हैं अपने फरमाइशी की महफिल में सीधे 9 बजे। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आप सुन रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन, अपनी आरजे सिंपल नॉट्स।

0: टेक यात्रा नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। इसमें नवाचार और समावेशन को केंद्र में रखा गया है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का शुभारंभ किया प्रधानमंत्री ने। गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, चिप से लेकर जहाजों तक भारत विनिर्माण के एक नए भविष्य का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के श्रीलंका दौरे पर कोलंबो पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री सहयोग को और मजबूत करना है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के भारत के शांति प्रयासों का समर्थन किया है। कहा, इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा। बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, झारखंड, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में कल मूसलाधार बारिश की आशंका। और अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
1: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है, इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।
1: हमें भारत में साइबर सिक्योरिटी को टॉप नॉच बनाना है। हमारी इंडस्ट्री के पास अपने इथिकल डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। हमें एक मजबूत फिनटेक रेगुलेटर इंडस्ट्री इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना है और हमारे पास एक फिनटेक कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स होना चाहिए, जिसके आधार पर हर कंपनी की पारदर्शी रेटिंग हो सके।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने UPI के 2400 करोड़ से अधिक लेन देन हुए। भारतीय UPI अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने UPI को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया।
1: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा UPI। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो UPI के बिना अधूरी ही होगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की 7.8% की विकास दर दुनिया को एक नया भरोसा दे रही है।
1: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट्स और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है। एनर्जी और कमोडिटीज की सप्लाई चेन्स पर दबाव है, ट्रेड को लेकर भी तनाव है और ये स्थितियां कई महीनों से बनी हुई है। इसमें भी अप्रैल से जून का क्वार्टर सबसे चैलेंजिंग रहा और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
1: ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है और अब अपनी उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है।
1: साथियों, अब भारत चीप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है, यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की एक पूरी चेन भारत में ही बनेगी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने में किसी भी तरह मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई और राहत बचाव तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि अब तक 7 विमानों के जरिए 95 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मारे गए कई भारतीय नागरिकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है।
5: मारे गए हमारे भारतीय नागरिक हैं, उनमें से कई लोग का पहचान नहीं हो पाया है। इस मामले में हम लोग उनके परिवारजन से बातचीत हमारी चल रही है और कई एक मामलों में जो डीएनए की सैंपलिंग भी ली गई है। 275 लोग लापता हैं अभी और ये जो हादसा हुआ है नेपाल में हुआ है, तो हम लोग इंतजार करते हैं कि किस प्रकार का वहाँ की सरकार, वहाँ के अधिकारी इस पर क्या खुलासा करते हैं।
0: श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। श्री पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध की स्थिति की जानकारी भी दे सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
6: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। एक रिपोर्ट।
7: आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और भंगार को सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म चुना गया है। वहीं रामनामी को सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र का पुरस्कार दिया जाएगा। ब्रह्मयुगम के लिए मलयालम अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। रणदीप हुड्डा को स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक के लिए सम्मानित किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के नॉन फीचर फिल्म वर्ग में पहली बार किसी संथाली फिल्म को सम्मानित किया जाएगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में कोई ठोस कदम न उठाने के लिए पंजाब सरकार की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने ड्रग माफिया का पूरा तंत्र फल फूल रहा है।
8: गुलजार सिंह एक वीडियो बनाता है और वीडियो में वो चार लोगों को इसका जिम्मेदार बताता है कि कैसे पंजाब में हर जगह नशीले पदार्थ युवाओं में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है और सरकार मूक दर्शक बनी रहती है, कार्रवाई नहीं करती।
0: बंबई उच्च न्यायालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी के मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया। याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अनुपस्थिति और अवकाश के दौरान जम्मू कश्मीर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई है। कृषि मंत्रालय ने बताया है कि 4 सितंबर तक देश में खरीफ फसलों का क्षेत्रफल 1,086 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। धान की खेती 421 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में और दालों की बुआई 117 लाख हेक्टेयर में हुई है। श्री अन्न और दरदरी अनाज की खेती 181 लाख हेक्टेयर से और तिलहन की खेती 191 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में किया गया है। ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता दे दी है। भारतीय निर्यातकों के लिए ये बड़ी राहत ब्रिटेन ने कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था के अंतर्गत दी है। इससे भारतीय निर्यातकों को एक ही कार्बन उत्सर्जन के लिए दो बार शुल्क चुकाने से राहत मिलेगी। भारत सुरक्षित 6G वायरलेस नेटवर्क के विकास में तेजी लाने के लिए अमेरिका की अगुवाई वाली वैश्विक साझेदारी में शामिल हो गया है। अमेरिका ने बताया कि इस पहल में ब्रिटेन, जर्मनी और जापान तथा कुछ और देश भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 के दशक में 5G नेटवर्क की जगह 6G तकनीक आने से कई वर्ष पहले ही विभिन्न देशों की 6G रणनीतियों के बीच समन्वय स्थापित करना है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगे क्षेत्र, झारखंड, नागालैंड और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी बारिश की संभावना है। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक यात्रा नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है, इसमें नवाचार और समावेशन को केंद्र में रखा गया है। प्रधानमंत्री ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, चिप से लेकर जहाजों तक भारत विनिर्माण के एक नए भविष्य का निर्माण कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के भारत के शांति प्रयासों का समर्थन किया, कहा इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा। और अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

एक बार फिर से स्वागत और इस्तकबाल है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉर्थ सिंपल के साथ में, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। वंस अगेन वेलकम बैक इन योर शो। और कुछ कहना चाहूंगी दोस्तों, तेरा नाम लिख लिख कर मिठाना अच्छा लगता है, तेरा नाम लिख लिख कर मिटाना अच्छा लगता है, तुझे सोच कर अकेले में मुस्कुराना अच्छा लगता है। जमाने की नजरों में चाहे हम अजनबी ही सही, मगर दिल ही दिल में तुझ पर हक जताना अच्छा लगता है। सो एंजॉय करते हैं अब हमारी आज की अगली फरमाइशी। तो फरमाइश थी दादा यादव की बजाज मिल गोंडा से, मैं निकला गढ़ लेके। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों राजू की सीतापुर से, उनको सुनना है गाना मेरी छम्मक छल्लू। सो एंजॉय करते हैं ये गाना राजू की फरमाइश पर, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कर भी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। नमस्ते अनिल शास्त्री जी, गीता श्रीवास्तव जी, सविता दुबे जी।

की चमक छल्लो चलो थाने चलो, हमने एंजॉय किया ये वाला गाना। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है अरविंद की मन का पुर से। अरविंद को मन का पुर से और अनिल शास्त्री जी को गोरखपुर से, इन दोनों को सुनना है गाना। न कजरे की धार, न मोतियों के हार, न कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो। सो एंजॉय करते हैं अरविंद की फरमाइश पर और अनिल शास्त्री जी की फरमाइश पर ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। और अरविंद का कहना है कि तन्हाई ही अब सुकून देती है। अच्छा, तन्हाई ही अब सुकून देती है, लोग तो बस दर्द देते हैं। अच्छा, ऐसे लोगों से क्यों मिलते हो जो दर्द देते हैं? अच्छे लोगों से मिलो, कुछ होते हैं जो खुशियाँ भी बांटते हैं, फ्री में बांटते हैं। एंजॉय करते हैं ये फरमाइशी गीत। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

हमने एंजॉय किया है अनिल शास्त्री जी की फरमाइश पर और अरविंद कुमार की फरमाइश पर। ये गाना अरविंद जी है मनकापुर से और अनिल शास्त्री जी है गोरखपुर से। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों, अगली फरमाइश हमारे पास में है मिले जो तेरे नैना हमारे नैनों से सॉन्ग की, और ये फरमाइश हमारे पास में आई हुई है। राजेश कुमार जी की तरफ से जो कि है सिंचाई विभाग से। जी हाँ दोस्तों, इनका

किसको अपने पास बुला रहा है ये तो राम जाने। फिलहाल हम चलते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है गीता श्रीवास्तव जी की गोंडा से, उनको सुनना है अदालत पिक्चर का गाना। से एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा। ओ तुमसे दूर रह कर हमने जाना प्यार क्या है। से एंजॉय करते हैं लता जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा हमारी गीता श्रीवास्तव जी की फरमाइश पे जो की है गोंडा से।

हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा गीता श्रीवास्तव जी की फरमाइश पर जो की है गोंडा से। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ, लेकिन दूरियों के सिलसिले से मुझे कुछ याद आ गया है और वक्त वैसे भी हो चला है बहारी गजल का। सो मैं कहना चाहूंगी कि तो पास नहीं तो क्या हुआ, तेरी यादें तो साथ हैं। तो पास नहीं तो क्या हुआ, तेरी यादें तो साथ हैं, तेरी कही हर एक बात हर एक मुलाकात साथ है। लोग पूछते हैं कि हम अकेले क्यों रहते हैं, उन्हें क्या पता हमारे हर ख्याल में तेरा हाथ है। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है अमित कुमार गुप्ता की, उनको सुनना है गाना खैरियत पूछो। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सनगमा अमित कुमार की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

दोस्तों ये फरमाइश थी अमित कुमार गुप्ता की। बढ़ते हमारे आज के अगले फरमाइशी गीत की तरफ, बढ़ेंगे अगले फरमाइशी गीत की तरफ, लेकिन उसके पहले कुछ याद आ रहा है इस गाने से भी। कहना चाहूंगी कि तेरी राहों में नजरें बिछाए बैठे हैं, एक उम्र से हम ये चिराग जलाए बैठे हैं। तू आए या ना आए ये तेरी मर्जी, हम तो तुझे अपना मानकर सब कुछ लुटाए बैठे हैं। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश है कुमार राहुल की, उनको सुनना है गाना तुम दिल की धड़कन में रहते हो रहते हो। सो एंजॉय करते हैं ये नगमा कुमार राहुल की फरमाइश। बस स्टे ट्यून्ड एवरीबॉडी।

धड़कन में रहते हो हमने इंजॉय किया राहुल कुमार की फरमाइश पे ये बहुत ही खूबसूरत सनंगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है, आखिरी फरमाइश दोस्तों। अगली और आखिरी फरमाइश किसकी है जानते हैं? नहीं बताऊंगी, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, अभी तो नहीं बताऊंगी, सस्पेंस में रखूंगी। सो दोस्तों आखिरी फरमाइश को इंजॉय करते हैं। इसी के साथ लेना चाहूंगी अलविदा और कहना चाहूंगी कि तुझसे बातें करना भी एक इबादत सा लगता है, तुझसे बातें करना भी एक इबादत सा लगता है, तेरा नाम लेना भी किसी दुआ सा लगता है। जिंदगी में यूं तो राहें बहुत थीं, मगर तेरे साथ चलना ही मुकद्दर सा लगता है। सो दोस्तों अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन, आपकी अपनी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल के साथ में। गाइस हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल, समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है, और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता। क्यों? क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर 11 सपोर्ट, बहुत सारा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से, आप सभी के लिए, आप सबकी तरफ से बे इंतहा बेतहाशा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, एंजॉय करते हैं आवाज विकास गोंडा से रवि की फरमाइश, नाम गुम जाएगा, आई लव दिस सॉन्ग, स्टे ट्यून्ड एवरीवन, बाय बाय, मिलते हैं कल, टेक केयर। यह फरमाइश आवाज विकास गोंडा से रवि की।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगर बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
3: आज ही कॉल करें 9260 9816 9216। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
3: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शुभ संध्या। शाम का सलाम कबूल करें आप। आदाब आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो गणेश 9.6 एफएम। यह है गोंडा शहर की धड़कन और अब कार्यक्रम चल रहा है बहारे गजल। और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके थोड़ी सी और खास। जी, ये शाम का वो वक्त होता है जिस समय हम लगभग नींद के आगोश में होने वाले होते हैं और ज़रूरत होती है हमको थोड़ी सी सुकून की, एहसासात की, मोहब्बत की, रिश्तों के महत्व की। और इन्हीं सबको लेकर तो शायर आते हैं, लिखते हैं, अपने कलाम को पढ़ते हैं और हम आप तक उनके कलाम को पहुंचाते हैं। जी, और ये सिलसिला जारी रहता है 9:30 से लेकर के 10:30 तक, बहारे गजल। तो भाई आप सभी जरा अपनी उपस्थिति भी यहाँ दर्ज करा दें। जी हाँ, मैं देख पा रहा हूँ कुछ चेहरों को, बहुत ही प्यारे चेहरों को। और चलिए आज एक जिस शायर की बात आपसे करेंगे वो इस जमाने का शायर है। मतलब बहुत ही कम उम्र में उन्होंने एक बहुत ही बड़ा मुकाम मुशायरों की दुनिया में, गजल की दुनिया में एक नया मुकाम बनाया। उन्होंने कहा कि मेरी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, मेरे आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, हालांकि उसको मेरे प्यार पे शक आज भी है। नाव में बैठकर धोए थे कभी हाथ उसने, नाव में बैठकर धोए थे कभी हाथ उसने, पूरे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। जिस पे टूटा था वो तेरा मेरा पक्का रिश्ता, जिस पे टूटा था वो तेरा मेरा पक्का रिश्ता, गांव के मोड़ पर वो कच्ची सड़क आज भी है। उसने कल मेरी शर्ट में एक बटन टाका था, उसने मेरी शर्ट में कल एक बटन टाका था, पूरे तालाब में मेहंदी की महक, उसने एक बटन टाका था, शहर के शोर में चूड़ी की खनक आज भी है। जी हाँ, तो मोहब्बत का ये प्यारा सा शायर, इसको हम जानते हैं तनवीर गाजी के नाम से। जी हाँ, आज जो आपसे गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे तनवीर गाजी को लेकर, फिलहाल आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गजल और मिलते हैं इस संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए और रेडियो गणस्ट्रीट 9.6 एफएम, यह है गोंडा शहर की धड़कन और मैं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। आइए अब आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गजल और आपसे मिलते हैं इस संगीत में अंतराल के उस पार तनवीर गाजी के साथ।

जी हाँ, एक बार पुनः से आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन वंदन नमन और स्वागत। सविता जी हैं, स्पर्श स्पर्श करते हैं आपको। और लिखा शुभ सुंदर सर जी, हम लोगों ने कल आपको बहुत मिस किया। वो परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि स्वास्थ्य ज्यादा कुछ खराब था और शायद इस स्थिति में नहीं थे कि बोल पाए, भीग गए थे रविवार को, तो इसलिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन कुछ मजबूरियां थी, व्यवस्थाएं थी, जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आपसे। गीता श्रीवास्तव जी हैं, बहन जी चरण स्पर्श, आपको भी शुभ संध्या जी, आपको भी शुभ संध्या। और धर्मेंद्र मोहन जी हैं आवास विकास से, बेस्ट ऑफ लक, गजलों की दुनिया में हमारी उपस्थिति जी, आपकी उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है जी हाँ। और हम बात कर रहे हैं तनवीर गाजी की। उन्होंने लिखा कि मैं बिन पंखों का जुगनू था, जहाजी कर दिया मुझको। मैं बिन पंखों का जुगनू था, जहाजी कर दिया मुझको। गजल ने छू लिया, तनवीर गाजी कर दिया मुझको। नई मस्जिद के बाजू घर है उस सल्हड़ सी लड़की का। नई मस्जिद के बाजू घर है उस सल्हड़ सी लड़की का। मोहब्बत शुक्रिया, तूने नमाजी कर दिया मुझको। जी हाँ, मतलब मोहब्बत का शुक्रिया इसलिए है क्योंकि उस मोहब्बत ने उनको, उस लड़की को देखने के बहाने वो जाते थे और अल्लाह की इबादत हो जाती है। बहुत ही प्यारे से, बहुत ही मासूम से शायर तनवीर गाजी, और उनकी गजलें सिर्फ मोहब्बत की गुफ्तगू तक नहीं रहती, वो देश की तरफ भी पढ़ते हैं। जहां पर लोग बात करते हैं देशभक्ति की, वहां पर वो ये भी दिखाते हैं कि कुछ ऐसा भी होता है हमारे देश में जिसको समाप्त किए बिना हम शायद अपनी वास्तविक आजादी को नहीं पा सकते। वो लिखते हैं कि गली गली में फिरे लुटेरे, बदल बदल कर भेष। गली गली में लुटे, गली गली में फिरे लुटेरे, बदल बदल कर भेष। ये है तुम्हारा देश शहीदों, ये है तुम्हारा देश। सारी दवाएं शर्मिंदा है, सारी दवाएं शर्मिंदा है, वैद्य कहां तक वार करे। जिस सिस्टम को एक्स हुआ है, कौन उसका उपचार करे। चिंताओं का बोझ उठाए, चुप है कोली जैसे लोग। चिंताओं का बोझ उठाए, चुप है कोली जैसे लोग। वक्त के मिक्सर में पिसते हैं गाजर मूली जैसे लोग। कहां मुकदमा चलाएं इनका, कौन लड़ेगा केस। ये है तुम्हारा देश शहीदों, ये है तुम्हारा देश। कलम बेचारा गुमनामी में और चर्चा में चाकू है। कलम बेचारा गुमनामी में और चर्चा में चाकू है। कुटियाओं में सच्चे लेखक और संसद में डाकू है। डिग्री लेकर रिक्शा खींचे युवक इन बाजारों में। खैर, ये दृश्य तो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। डिग्री लेकर लोग इलेक्ट्रिक वाला रिक्शा खींच रहे हैं। डिग्री लेकर रिक्शा खींचे युवक इन बाजारों में। अनपढ़ लेता घूम रहे हैं महंगी महंगी।

जो गजलकार ये कहता हो कि नई मस्जिद के बाजू घर है उस सल्हड़ सी लड़की का, मोहब्बत शुक्रिया तूने नमाजी कर दिया मुझको, वही देश की स्थिति पर इतना प्यारा तंज कसते हैं और कहीं ना कहीं सोचने पर विवश करते हैं हमको कि सिक्के का एक पहलू ये भी है। जी हाँ, तनवीर गाजी के बारे में बातचीत जारी रखेंगे आपके साथ। हमारे साथ नाजिया अंसारी जी हैं, आदाब करते हैं आपको। गुड इवनिंग मनु सर जी, आपको भी शुभ संध्या, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी होंगी। और चलिए फिर सुनाते हैं एक प्यारी सी गजल आपको, लौटेंगे फिर तनवीर गाजी के साथ।

गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। गजल की बात हो और रफी साहब ना आए तो लगता है कुछ अधूरा सा है। तनवीर गाजी, उन्होंने मोहब्बत पर भी अपनी कलम चलाई, देश की स्थिति पर भी अपनी कलम चलाई और महिला सशक्तिकरण के बहुत पक्ष में है। आपने लोगों ने शायद एक फिल्म देखी होगी, पिंक मूवी आई थी और पिंक मूवी के लास्ट में एक नज्म पढ़ी जाती है जिसको अमिताभ बच्चन की आवाज दी गई है। उस नज्म को लिखने वाले शायर का नाम है तनवीर गाजी, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। इल्म से लेकर के फिल्म तक का सफर उन्होंने तय किया और ये फिल्म अगर आपको मौका मिले, आपके पास समय मिले कभी, आपको तो देखिएगा जरूर। बड़ी संवेदनशील फिल्म है और बहुत ही कई ऐसे मौजूदात को उठाती है जो इस समय समाज में हमारे समक्ष हैं। तनवीर गाजी लिखते हैं स्त्रियों के लिए। हमको अगर हमारी बहनें सुन रही होंगी, माताएं सुन रही होंगी तो उनको अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुच्छ लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। जो बेड़ियां लिपटी हुई हैं इनको वस्त्र समझो। जो तुच्छ लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़िया पिघाल के बना ले इनको वस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। अंतिम बंद है इसका कि चुनर उड़ा के ध्वज बना। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कप कप आएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। नारियां हमारे देश का गौरव,

यहाँ पर संस्कृति कहती है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, ये कहा जाता है। और इतना ही नहीं, जब हम नाम लेते हैं तो पहले माता पिता बोला जाता है, वहां भी नारी ही बड़ी है। और अगर हम सच में देखें तो कुछ समय पहले छायावाद का दौर चला तो महादेवी वर्मा ने कहा कि नहीं अब गाया जाता देव, नहीं अब गाया जाता देव, थकी अंगुली हैं ढीले तार, विश्ववीड़ा में अपनी आज मिला लो ये स्फुट झनकार। यहां से बात आगे बढ़ी तो किसी बच्ची ने यह भी कहा कि एक मामूली से मजदूर की बेटी हूं मैं, एक मामूली से मजदूर की बेटी हूं मैं, मुझे इस बिगड़े हुए हालात से डर लगता है, लोग ससुराल में बहुओं को जला देते हैं, बस यही सोचकर बारात से डर लगता है। और जब ये दर्द मुझ तक पहुंचा तो दिल से चीख निकली कि फूलों की तरह तुझको संभाला है हमेशा, फूलों की तरह तुझको संभाला है हमेशा, कांटों से मोहब्बत, कांटों की इबादत नहीं करना मेरी बेटी, फूलों की तरह तुझको संभाला है हमेशा, कांटों की इबादत नहीं करना मेरी बेटी, 35 टुकड़े होके पहुंच जाए जो फ्रिज में, तू ऐसी मोहब्बत नहीं करना मेरी बेटी। तो नारियों की अपनी एक व्यथा है, एक कथा है, जिसको अगर हम लिखने बैठेंगे, पढ़ने बैठेंगे या बात करने बैठेंगे तो लगता है वक्त कम सा पड़ जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गजल। सर जी कहते हैं कि ये अंधा कानून है, और बिल्कुल अंधा कानून है, लेकिन परिस्थितियां बदलेंगी, बदल रही हैं, और आने वाला समय इंशाल्लाह ईश्वर ने चाहा तो और भी शानदार होगा, और भी अच्छा होगा। आइए चलते हैं और आपको ले चलते हैं गुलाम अली साहब की एक प्यारी सी गजल की तरफ। और अब जी घड़ी की सुइयां भी बता रही हैं कि अब आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। कल बुधवार है, कल आपका दिन रहेगा, तो अपने खजाने को तैयार रखिएगा। आसमान वाले ने चाहा तो कल ठीक 9:30 पर आपसे मुलाकात होगी आपके ही प्यारे से कार्यक्रम बहारे गजल में। तब तक सुनते रहिए रेडियो गणस्थली 89.6 FM, ये बन चुकी है हम सभी के दिलों की धड़कन।

हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु। आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ, ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर्मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी पनाह। 3 दिनों की लंबी छुट्टियां सुमिता को 3 युगों के समान लग रही थीं। पहला दिन तो घर के कामकाज में निकल गया, दूसरा दिन आराम करने में और घर के लिए कुछ जरूरी सामान खरीदने में बीत गया। लेकिन उस दिन सुबह से ही सुमिता को बड़ा खालीपन लग रहा था। खालीपन तो वो कई महीनों से महसूस करती आ रही थी, लेकिन आज तो सुबह से ही वो खास ही बोरियत महसूस कर रही थी। बाई खाना बनाकर जा चुकी थी। सुबह के 11 ही बजे थे। सुमिता का नहाना धोना नाश्ता सब हो चुका था। झाड़ू पोछा और कपड़े धोने वाली बाइयां भी अपना अपना काम करके जा चुकी थीं। यानी अब दिन भर किसी का आना जाना नहीं होना था। टीवी से भी बोर होकर सुमिता ने टीवी बंद कर दिया और फोन हाथ में लेकर उसने थोड़ी देर बातें करने के इरादे से अपनी सहेली आनंदी को फोन लगाया। हेलो, उधर से आनंदी का स्वर सुनाई दिया। हेलो आनंदी, मैं सुमिता बोल रही हूँ, कैसी है, क्या चल रहा है? सुमिता ने बड़े उत्साह से कहा। ओह आनंदी, आनंदी की आवाज जैसे तीखी हो गई सुमिता की आवाज सुनकर। ठीक हूँ, बस घर के काम कर रही थी, खाना नाश्ता बच्चे और क्या। तू बता। कुछ नहीं यार, बोर हो रही थी तो सोचा तुझसे ही बात कर लूं। चल ना दोपहर में पिक्चर देखने चलते हैं, सुमिता उत्साह से बोली। नहीं यार, आज रिंकू की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं नहीं जा पाऊंगी। चल अच्छा फोन रखती हूँ, मुझे घर के ढेर सारे काम निपटाने हैं। पिक्चर देखने का मन तो मेरा भी कर रहा है पर क्या करूं, पति और बच्चों के ढेर सारे काम और फरमाइशें होती हैं, कहकर आनंदी ने फोन रख दिया। सुमिता ने उससे और कुछ नहीं कहा, लेकिन फोन डिस्कनेक्ट होने से पहले सुमिता ने आनंदी की वो बात साफ साफ सुन ली थी जो उसने शायद अपने पति से बोली होगी। इस सुमिता के पास घर गृहस्थी का कोई काम तो है नहीं, दूसरों को भी अपनी तरह फुर्सतिया समझती है। बोलते समय स्वर की खीज साफ महसूस हो रही थी। फिर शिल्पा का भी वही रवैया, उसके बाद रश्मि का भी। यानी सुमिता से बात करने के लिए ना तो किसी के पास फुर्सत है और ना ही दिलचस्पी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है पनाह। अब तक आपने सुना, सुमिता को उस दिन बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। उसने कई दोस्तों को फोन मिलाया लेकिन सब ने कोई ना कोई बहाना बना दिया। अब आगे, सारी की सारी सहेलियां आजकल उससे कतराने लगी थीं, जबकि ये तीनों जिनको आज उसने फोन किए थे वो तो किसी जमाने में उसके सबसे करीब हुआ करती थीं। एक गहरी सांस भरकर सुमिता ने फोन टेबल पर रख दिया। अब किसी और को फोन करने की उसकी इच्छा ही नहीं रही। वो उठकर गैलरी में आ गई। नीचे के लॉन में बिल्डिंग के बच्चे खेल रहे थे। न जाने क्यों उसके मन में एक हूक सी उठी और आंखें भर आईं। किसी के शब्द कानों में गूंजने लगे थे। तुम भी अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी हो सुमी, और मैं भी। हम दोनों ही अकेलेपन का दर्द समझते हैं, इसलिए मैंने तय किया है कि हम ढेर सारे बच्चे पैदा करेंगे ताकि हमारे बच्चों को कभी अकेलापन महसूस ना हो। समीर हंसते हुए अक्सर सुमिता को छेड़ता रहता था। बच्चों को अकेलापन का दर्द महसूस ना हो कि चिंता करने वाले समीर की खुद की ही जिंदगी को अकेला करके सूनेपन की गर्त में धकेल आई थी सुमिता। लेकिन तब कहां सोच पाई थी वो कि एक दिन वो खुद ही इतनी अकेली होकर रह जाएगी। कितना गिड़गिड़ाया था समीर, आखिर तक कितनी विनती की थी उसने, प्लीज सुमी मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। मैं मानता हूं मुझसे गलतियां हुई हैं, लेकिन मुझे एक मौका तो दो, एक आखिरी मौका। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अब तुम्हें कभी किसी शिकायत का मौका ना मिले। समीर बार बार अपनी गलतियों की माफी मांग रहा था, उन गलतियों की जो वास्तव में गलतियां थी ही नहीं, छोटी छोटी अपेक्षाएं, छोटी छोटी इच्छाएं थी जो एक पति सहज रूप से अपनी पत्नी से करता है। जैसे उसकी शर्ट का बटन लगा दिया जाए, बुखार से तपते और दुखते उसके माथे को पत्नी प्यार से सहला दे, कभी मन होने पर उसकी पसंद की कोई चीज बनाकर खिला दे। लेकिन समीर की इन छोटी छोटी अपेक्षाओं पर भी सुमिता पूरी तरह भड़क जाती थी। उसे इन्हें पूरा करना गुलामी जैसा लगता था। नारी शक्ति, नारी स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, इन सब शब्दों ने तब उसका दिमाग खराब कर रखा था। स्वाभिमान, आत्मसम्मान, स्वावलंबी, इन शब्दों के अर्थ भी तो कितने गलत रूप से ग्रहण किए थे उसके दिलो दिमाग ने। मल्टीनेशनल कंपनी में अपनी बुद्धि और कार्य कुशलता के बल पर सफलता हासिल की थी सुमिता ने। फिर एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़ती हुई सुमिता पैसे और पद की चकाचौंध में इतनी अंधी हो गई कि आत्मसम्मान और अहंकार में फर्क करना ही भूल गई। आत्मसम्मान के नाम पर उसका अहंकार दिन ब दिन इतना बढ़ता गया कि वो बात बात में समीर की अवहेलना करने लगी। उसकी छोटी छोटी इच्छाओं को अनदेखा करके उसकी भावनाओं को आहत करने लगी। उसकी अपेक्षाओं की उपेक्षा करना सुमिता की आदत में शामिल हो गया था। समीर चुपचाप उसकी सारी गलतियां बर्दाश्त करता रहा, लेकिन वो जितना ज्यादा बर्दाश्त करता जा रहा था उतना ही ज्यादा सुमिता का अहंकार और क्रोध बढ़ता जा रहा था। सुमिता को भड़काने में उसकी सहेलियों का सबसे बड़ा हाथ रहा। वो सुमिता की बातों को या कहिए कि उसकी तकलीफों को बड़े गौर से सुनती और समीर को भला बुरा कहकर सुमिता से सहानुभूति दर्शाती। इन्हीं सहेलियों ने उसे समीर से तलाक लेने के लिए उकसाया। तब यही सहेलियां सुमिता को अपनी सबसे बड़ी हितचिंतक लगी थीं।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है पनाह। अब तक आपने सुना सुमिता ने लोगों के भड़काने और अपनी छोटी छोटी नासमझियों की वजह से तलाक ले लिया था और अब वो बेहद अकेली थी। उसकी जिंदगी का सूनापन अब उसे सालने लगा था। अब आगे एक दिन जब समीर ने बाजार से ताजा टिंडे लाकर अपने हाथ के मसाले वाले भरवा टिंडे बनाने का अनुरोध किया तो सुमिता बुरी तरह बिफर गई कि वो अभी ऑफिस से थकी मांदी आई है और समीर उससे चूल्हे चौके का काम करने को कह रहा है। उस दिन सुमिता ने ना सिर्फ समीर को बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा बल्कि साफ साफ ये भी कह दिया कि वो अब और अधिक उसकी गुलामी नहीं करेगी। आखिर वो भी इंसान है, कोई खरीदी हुई बांदी नहीं है कि जब तब सिर झुकाकर उसका हुक्म बजाती रहे। उसे इस गुलामी से छुटकारा चाहिए। समीर सन्न सा खड़ा रह गया। एक छोटी सी बात इतना बड़ा मुद्दा बनेगी, ये तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। इसके बाद वो बार बार माफी मांगता रहा पर सुमिता नहीं मानी। तो आखिर में सुमिता की खुशी के लिए उसने अपने आंसू पीकर तलाक के कागजों पर दस्तखत करके उसे मुक्त कर दिया। पर सुमिता क्या सचमुच मुक्त हो पाई? समीर के साथ जिस बंधन में बंधकर वो रह रही थी, वो बंधन में ही वो सबसे अधिक आजाद, स्वच्छंद और अपनी मर्जी की मालिक थी। समीर के बंधन में जो सुरक्षा थी, उस सुरक्षा ने उसे समाज में सिर ऊंचा करके चलने की एक गौरवमयी आजादी दे रखी थी। तब उसके चारों ओर समीर के नाम का एक अद्भुत सुरक्षा कवच था जो लोगों की लोलुप और कुछ से दृष्टि को उसके पास फटकने तक नहीं देता था। तब उसने उस सुरक्षा कवच को पैरों की बेड़ी समझा था, उसकी अवहेलना की थी। लेकिन आज सुमिता को एहसास हो रहा था उसी बेड़ी ने उसके पैरों को स्वतंत्रता से चलना बल्कि दौड़ना सिखाया था। समीर से अलग होने की खबर फैलते ही लोगों की उसके प्रति नजर ही बदल गई थी। औरतें उससे ऐसे भिदकने लगी थीं जैसे वो कोई जंगली जानवर हो और पुरुष उसके आसपास मंडराने के बहाने ढूंढते रहते। दो चार लोगों ने तो वक्त बेवक्त उसके घर पर भी आने की कोशिश की थी। वो तो समय रहते ही सुमिता को उनका इरादा समझ में आ गया, नहीं तो अब तो बाजार या कहीं भी आते जाते सुमिता को एक अजीब सा डर, असुरक्षा और संकोच हर वक्त घेरे रहता था। जबकि समीर के साथ रहते हुए उसे कभी कहीं भी आने जाने में किसी भी तरह का डर नहीं लगा था। वो पुरुषों से भी कितना खुलकर मजाक करती थी, घंटों गप्पे मारती थी, पर ना तो कभी सुमिता को कोई झिझक हुई और ना ही साथी पुरुषों को। पर अब किसी भी परिचित पुरुष से बातें करते हुए वो अंदर से घबराहट महसूस करती थी। हंसी मजाक तो दूर, परिचित औरतें खुद भी अपने पतियों को सुमिता से दूर रखने का भरसक प्रयास करती रहती थीं। भारती के पति विशाल से सुमिता पहले कितनी बातें, कितनी हंसी ठिठोली करती थी। चारों जने अक्सर साथ में ही फिल्म देखने, घूमने फिरने, रेस्टोरेंट में साथ लंच डिनर करने जाते थे। लेकिन सुमिता के तलाक के बाद एक दिन आरती ने ही अकेले में साफ साफ शब्दों में कह दिया, अपना तो घर तोड़ चुकी हो, अब मेरा घर तोड़ने की कोशिश मत करो। सुमिता स्तब्ध रह गई थी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है पनाह। अब तक आपने सुना सुमिता ने छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाकर तलाक ले लिया था और आज वही दोस्तें जो उसको उस वक्त भड़काती थीं, उससे कतराने लगी थीं। अब सुमिता खुद को बहुत बहुत अकेला महसूस कर रही थी। अब आगे सुमिता स्तब्ध थी। इससे पहले तो उसकी दोस्त आरती ने कभी इस तरह से बात नहीं की थी। आज क्या एक अकेली औरत द्वारा अपने पति को फंसा लिए जाने का डर उस पर हावी हो गया? आरती ने तो पूरी तरह से उससे संबंध खत्म कर लिए। आनंदी, रश्मि, शिल्पी का रवैया भी दिन ब दिन रूखा होता जा रहा था। वो भी उससे कन्नी काटने लगी थी। उन्होंने पहले की तरह अब अपनी शादी या बच्चों की सालगिरह पर सुमिता को बुलावा देना बंद कर दिया था। कहां तो यही चारों जब तब सुमिता को घेरे रहती थीं। सुमिता को पता ही नहीं चला कि कब से उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। 4 साल हो गए उसे तलाक लिए। शुरू के साल भर तो उसे लगा कि जैसे वो कैद से आजाद हो गई, अब वो अपनी मर्जी से रहेगी। पर फिर 1.5-2 साल होते होते वो अकेली पड़ने लगी। ना कोई हंसने बोलने वाला, ना कोई साथ देने वाला। सारी सहेलियां अपने पति बच्चों में व्यस्त होती गईं और सुमिता अकेली पड़ती गई। आज उसे अपनी स्वतंत्रता, स्वावलंबन, अपनी नौकरी, पैसा, सब कुछ बेमानी सा लगता था। अकेले तनहा जिंदगी बिताना कितना भयावह और दुखद होता है। लोगों के भरे पूरे परिवार वाला घर देखकर सुमिता का अकेलेपन का एहसास और भी बढ़ जाता और वो डिप्रेशन में जाने लगती। अपनी पढ़ाई का यूज उसने कितनी गलत दिशा में किया। स्वभाव में नम्रता के बजाय उसने अहंकार को बढ़ावा दिया और उसी गलती की कीमत वो अब तक चुका रही है। सोचते सोचते सुमिता सुबकने लगी। खाना खाने का भी मन नहीं हुआ उसका। दोपहर का 2 बज रहे थे। उसने सोचा कि घर बैठने से अच्छा है अकेले ही फिल्म देखाए और वो फिल्म देखने पहुंच गई। फिल्म के इंटरवल में कुछ चिर परिचित आवाजों ने सुमिता का ध्यान आकर्षित किया। देखा तो नीचे दाईं ओर आनंदी अपने पति और बच्चों के साथ बैठी थी। उसकी बेटी रिंकू चहक रही थी। सुमिता को समझते देर नहीं लगी कि आनंदी का पहले से ही प्रोग्राम बना हुआ होगा। उसने सुमिता को टालने के लिए ही रिंकू की तबीयत का बहाना बनाया था। आगे की फिल्म देखने का मन ही नहीं किया, पर खिन्न मन लिए वो बैठी रही। जाती भी कहां। अगले कई दिन ऑफिस में भी वो गुमसुम सी रही। उसकी और समीर की पुरानी दोस्त और सहकर्मी कोमल कई दिनों से देख रही थी कि सुमिता उदास और बुझी बुझी सी रहती है। कोमल समीर को बहुत अच्छी तरह जानती थी। तलाक के पहले कोमल ने सुमिता को बहुत समझाया था कि वो गलत कर रही है, मगर तब सुमिता को कोमल अपनी दुश्मन और समीर की अंतरंग लगने लगी थी, इसलिए उसने कोमल की एक नहीं सुनी। समीर से तलाक के बाद फिर कोमल ने भी उससे बात करना लगभग बंद ही कर दिया था। लेकिन आज सुमिता की आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे तो कोमल अपने आप को रोक नहीं पाई और सुमिता के पास जाकर बैठ गई।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है पनाह। अब तक आपने सुना सुमिता ने अपनी शादीशुदा जिंदगी में छोटे छोटे बातों का बतंगड़ बनाकर तलाक ले लिया था और आज वही लोग जिन्होंने उसे भड़का कर उसका तलाक करवाया था उससे कन्नी काटने लगे थे। वो अकेलेपन से डिप्रेशन में जाने लगी थी। उस दिन उसकी पुरानी दोस्त कोमल से उसका हाल देखा नहीं गया और उसके पास आ गई। अब आगे कोमल ने बड़े प्यार से उससे पूछा, क्या बात है सुमिता, बहुत परेशान नजर आ रही हो। उसके सहानुभूतिपूर्ण स्वर और स्पर्श से सुमिता के मन में जमा गुबार आंसुओं के रूप में बहने लगा। कोमल बिना उससे कुछ कहे ही समझ गई कि उसे अब समीर को छोड़ देने का दुख हो रहा है। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था सुमी कि समीर को छोड़ने की गलती मत करो, लेकिन तुमने अपनी उन शुभचिंतकों की बातों में आकर मेरी एक नहीं सुनी, कोमल ने कड़वे स्वर में कहा। बस करो कोमल, अब मेरे दुखी मन पर और तीर मत चलाओ, सुमिता रोते हुए बोली। मैं पहले से ही जानती थी कि वो सब बिना पैसे का तमाशा देखने वालों में से हैं। मैं सब समझ रही हूं कोमल, सुमिता आंसू पोंछते हुए बोली। तुमने समीर से सामंजस्य बिठाने की जरा भी कोशिश नहीं की, थोड़ा सा भी धीरज नहीं रखा साथ चलने के लिए, अपने अहम पर अड़ी रही। तुमने पति पत्नी के रिश्ते को मजाक समझा सुमिता, कोमल ने कठोर स्वर में कहा। फिर सुमिता के कंधे पर हाथ रखकर अपने नाम के अनुरूप कोमल होकर बोली, समीर तुमसे सच्चा प्यार करता है, तभी 4 साल से आज तक अकेला ही है। उसने दूसरी शादी नहीं की है सुमिता, वो आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कल मैं और केशव उसके घर गए थे, देखकर मेरा तो दिल सच में भर आया सुमी। इससे पहले कि वो मजबूर होकर दूसरी शादी कर ले, उससे समझौता कर लो, वरना उम्र भर पछताती रहोगी। उसके प्यार को देखकर छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज कर दो। हम यही गलती करते हैं कि प्यार को नजरअंदाज करके छोटी मोटी गलतियों को पकड़ कर बैठे रहते हैं और अपना रिश्ता अपना घर तोड़ लेते हैं, पर ये नहीं सोच पाते कि घर के साथ साथ हम खुद भी टूट जाते हैं। एक गहरी सांस लेकर कोमल चुप हो गई और सुमिता की प्रतिक्रिया जानने के लिए उसके चेहरे की ओर देखने लगी।

घर लौट जाओ। 4 साल के भयावे अकेलेपन की बहुत सजा भुगत चुके हो तुम दोनों। समीर के मन में तुझे लेकर कोई गिला नहीं है। तुम भी अपने मन में कोई पूर्वाग्रह मत रखो और आज ही उसके पास चली जाओ। उसके घर और मन के दरवाजे आज भी तुम्हारे लिए खुले हैं, कोमल ने कहा। घर आकर सुमिता कोमल की बातों पर गौर करती रही। जीवन की सार्थकता रिश्तों को जोड़ने में है, तोड़ने में नहीं। फिर अचानक ही सुमी समीर की बाहों में जाने के लिए मचल उठी। समीर के घर का दरवाजा खुला हुआ था। समीर रात में अचानक ही उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गया। सुमी बिना कुछ बोले उसके सीने से लग गई। समीर ने उसे कस के अपने बाहुपाश में बांध लिया। दोनों देर तक आंसू बहाते रहे। मनों का मैल और 4 सालों की दूरियां आंसुओं से धुल गईं।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी पनाह। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट कर सकते हैं। तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वही श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

संगीत तो मेरा देश है और सब तक मेरा धर्म, सुरताल मेरी जाति और रियाज मेरा कर्म। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस स्वर कोकिला की बात करने जा रहे हैं वो है हमारी प्यारी लता मंगेशकर जी। लता मंगेशकर जी की आवाज ना ही किसी पहचान की मोहताज है, ना ही किसी विवरण की, क्योंकि वो अपने आप में एक ऐसी आवाज है जिसे भारत की तरह एक नाम ही काफी है। भारत, भारत की पहचान हम सबकी प्यारी लता दीदी। स्वर कोकिला की मधुर तान भारत की पहचान बनी लता मंगेशकर महान। इस प्यारी सी आवाज के साथ में आज का शो हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी प्यारी आरजे ख्वाहिश के साथ में। जी हाँ, आज ये ख्वाहिश आज लेकर के आई हैं लता मंगेशकर जी की बहुत सारी ऐसे अनसुनी अनकहे किस्तों को आपके साथ शेयर करने के लिए, जो कि हम कभी भी उन चीज़ों को, उन बातों को भूल नहीं पाते हैं। लता जी के लिए जितना भी कहा जाए, जितना भी उनके बारे में बात की जाए वो कम है। जैसे समुद्र से अगर हम एक बाल्टी पानी निकाल लें, या फिर भर भर के हम कितने भी टैंक पानी निकाल लें, क्या वो कम हो सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह जब हम बहुत सारी उम्मीदों के साथ में कहीं जाते हैं तो हमारी और उपेक्षाएं बढ़ जाया करती हैं। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और रंगमंच कलाकार थे। लता जी ने संगीत की शिक्षा अपने पिता से ही पाई। पिता के अचानक से निधन के बाद में उन्होंने मात्र 13 वर्ष की आयु में परिवार की जिम्मेदारी संभाली और फिल्मों में गायन व अभिनय का आरंभ किया। कहते हैं ना कि जब जिम्मेदारियां सर पे आने लगे तो हमारे ऊपर वो अलग से एक जिम्मेदारी हो जाती है कि हम अपने परिवार का पालन पोषण, भरण पोषण किस तरीके से करें। ठीक वैसे ही लता दीदी ने भी अपनी सारी इच्छाओं को दमन करते हue उस पद पर आगे गई जहां पर उन्हें बहुत सारी उपलब्धि तो मिली, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपना बचपन खोया आगे की बुलंदियों को पाने के लिए। तो आइए लता दीदी के इस प्यारे से एक गीत के साथ, जो कि उन्होंने अलग अलग स्वरों में अलग अलग पहचान के रूप में गाए हैं। कई गाने तो उन्होंने पैट्रियोटिक सॉन्ग्स गाए हैं, जैसे देशभक्ति गीत हो गया, बेवफाई सॉन्ग हो गया, रोमांटिक सॉन्ग्स हो गया, या फिर किसी को मनाने का सॉन्ग हो गया। आज का जो हमारा दौर हो रहेगा, आज का जो सफर रहेगा, वो कुछ बेवफाई वाले सॉन्ग्स की ओर हम बढ़ेंगे। तो आइए सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत एक उनकी ही आवाज में।

सन 1949 में फिल्म महल के गीत आएगा आने वाला ने उन्हें रातों रात ख्याति दिखाई। उसके बाद वे हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय पार्श्व गायिका बन गईं। उन्होंने हिंदी के अलावा मराठी, गुजराती, बंगाली तथा अन्य कई भारतीय भाषाओं में हजारों गाने गाए। उनकी मधुर व सुरीली आवाज ने उन्हें स्वर कोकिला की उपाधि दिलाई। यूं ही स्वर कोकिला की उपाधि उन्हें नहीं मिली, जब उन्होंने अलग अलग भाषाओं में बहुत सारे गीतों को गाया तो हिंदी सिनेमा ने भी उन्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए बुलाया। जब उनसे मराठी गाना गवाया गया तो भी वह उसमें खरी उतरी। चाहे वो गुजराती हो, बंगाली हो, किसी भी भाषा में उन्होंने अपनी ख्याति को फैलाने के लिए बहुत कुछ अपने आप को आगे बढ़ाया और फिर एकाकर एक बार उन्हें उनकी मधुर व सुरीली आवाज ने उन्हें स्वर कोकिला की उपाधि दिलाने में कुछ भी पीछे नहीं रहा। लता जी ने लगभग 7 दशकों तक भारतीय संगीत जगत पर अपना वर्चस्व बनाए रखा। उन्होंने शंकर जयकिशन, एसडी वर्मन, आरडी वर्मन, मदन मोहन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया। ऐ मेरे वतन के लोगों जैसा उनका देशभक्ति गीत भी आज भी हर एक भारतीय को भाव विभोर कर देता है। ठीक उसी तरीके से उनके कई ऐसे पद्म भूषण वाले गाने, पद्म भूषण इसलिए क्योंकि कई संगीतकारों के साथ में जब उन्होंने काम किया तो उन्हें पद्म भूषण भी हासिल हुए। उनके योगदान को देखते हुए उनके अनेक पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। लेकिन उसके पहले आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

लता जी की अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो पंडित दीनानाथ मंगेशकर मराठी थिएटर के गायक व संगीतकार थे। लता जी को संगीत संस्कार बचपन से ही मिले थे। वो कहते हैं ना कि हमारे अंदर यानी बचपन से ही एक ऐसा बीज होता है जिसे सिर्फ वो अंकुरित होने के लिए हमें सच्चे और एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो हमें उसको सींच सके, उस बीज को सींचने के बाद उसको अंकुरित कर सके और एक फूल की तरह हमें खिला सके। लता जी के पिताजी ने यही काम किया। उनकी सारी चीज़ों को उन्होंने अपने आप के अंदर से निकालने के लिए बहुत सारी मेहनत करी। उनके करियर के शुरुआत के लिए उन्होंने ऐसी ऐसी कड़ी मेहनत करी कि आज लता जी वो उन्हें हमेशा से अपने जहन में रहती हैं और उन्हें याद करती हैं। पिता के निधन यानी 1942 के बाद परिवार की जिम्मेदारी उन्हीं पर आ गई। उन्होंने 13 साल की उम्र में किटी हसल 1942 फिल्म से अभिनय और गायन शुरू किया। उनकी पहली सफलता 1949 में फिल्म महल का गीत आएगा आने वाला से थी। संगीत खेमचंद प्रकाश से लता जी को इस गाने से बहुत बड़ी ख्याति और बहुत बड़ी पहचान भी मिली। उनकी आवाज को स्वर कोकिला कहा गया, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने 36 से भी अधिक भारतीय भाषाओं में गाया, परंतु हिंदी और मराठी गीतों में उनका योगदान सबसे ज्यादा रहा। लता जी ने लगभग 30,000 से अधिक गाने गाए, जो किसी भी गायक के लिए विश्व कीर्तिमान से कम नहीं रहा। इसीलिए उन्हें आज भी हम अपने जहन में, हम अपने दिल में यूं बसाए बैठे हैं, जैसे कि कोई अपनी बहुत ही प्यारी सी याद को कभी न भूलने वाला एक हिस्सा बना के रखता है। कहते हैं जब हम दर्पण देखते हैं तो अपने आप को देखते हैं, लेकिन जो संगीतकार होते हैं, जैसा कि लता जी ने हमेशा से यही किया, जब वो दर्पण में देखती थी तो ऐसे कई संगीतकारों को अपने सामने पाती थी, अपने अपने सामने देखती थी कि किसी दिन मुझे ऐसे संगीतकारों के साथ मिल करके गाने गाने हैं। जिस बच्चे के अंदर अगर ये ललक है, अगर ये कोशिश है कि आगे चल करके हमें इस संगीतकार के साथ बैठ करके हमें भी गाना है, हमें भी उनकी छवि में अपने आप को डालना है, तो ही मेहनत, सफलता और संघर्ष की कहानी को हम जन्म दे पाते हैं। इन सब के बीच में रही हमारी लता दीदी। आइए लता दीदी का एक और गाना सुनते हैं जो कि उन्होंने बेवफाई के रूप में गाया और बहुत ही सबको प्रिय रहा।

Bye.

कहते हैं कि पुरस्कारों की छड़ी में अगर सबसे पहला पुरस्कार जब हमारे जीवन में कोई मिलता है तो हम उसे हमेशा से याद रखते हैं। ठीक वैसे ही लता दीदी को तो कई पुरस्कार दिए गए, उन्हें स्वर कोकिला भी कहा गया, लेकिन कुछ ऐसे पुरस्कार जिन्हें वो हमेशा से अपने जहन से लगा के रखती थी, जो कि उनकी सम्मानित पुरस्कारों में से एक थे। भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न 2001, पद्म भूषण 1969 में तथा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1989 से अलंकृत किया गया, क्योंकि ये पुरस्कार वो थे जिन्हें वो हमेशा अपने पास रखती थी। कहते हैं कि जब हम किसी भी उपलब्धि पे पहुंचते हैं ना, तो हमें बहुत सारे पुरस्कार तो मिलते ही हैं और हमारा घर उन पुरस्कारों से भर जाता है। लेकिन आज भी जब लता दीदी को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता था, तो ऐसा सुनने में आता है कि उनका एक कमरा, एक से बड़ा सा हॉल जिसमें उन्होंने कई पुरस्कारों को इस तरीके से रखा है मानो उनकी जीवन भर की पूंजी हो। यानी कि किसी भी इंसान के लिए पूंजी क्या ही हो सकती है कि हमने अपने लिए ये जमीन बनाई, हमने अपने लिए इतना सोना बनाया, हमने अपने लिए इतने पैसे इकट्ठे किए। लेकिन लता दीदी के लिए उनका ये पुरस्कार का दिन, ये पुरस्कार सारे उनकी महत्वपूर्ण पूंजियों में से एक रहा और उन्होंने अपने घर को बिल्कुल इस तरीके से सुशोभित करके रखा जैसे उनकी जीवन भर की पूंजी उनसे कोई छीन रहा हो। और उन्होंने अपने घर के एक कोने में, यानी कि एक बड़े से कमरे में, उन्होंने आज भी अलंकृत करके उन्हें हमेशा के लिए यादों के बीच में समेट दिया। आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गाना जो कि लता दीदी की आवाज में है।

आवाज उनकी अमर गूंज है और हर दिल में बसी लता दीदी की आज भी मौज है। 6 फरवरी 2022 को उनका मुंबई में निधन हो गया। उनके जाने से संगीत जगत ने अपनी सबसे अनमोल धरोहर खो दी, फिर भी उनकी आवाज आज सदैव हमारे दिलों में गूंजती रहेगी और आने वाली पीढ़ियां उनसे हमेशा से प्रेरणा लेती रहेंगी। गायन के अलावा वे संगीतकार भी रहीं। नाम अनंत घन और मराठी फिल्मों के लिए संगीत दिया। जब उनकी मृत्यु हुई उस समय कोरोना का वक्त चल रहा था, उम्र संबंधी जटिलताओं के चलते उनका निधन हुआ। उन्हें विरासत की ये तो कहा जाता है कि उन्हें विरासत में एक बहुत बड़ी धरोहर मिली, एक बहुत बड़ा नाम भी मिला जो कि स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है और आज उनका नाम सदैव भारतीय जगत में अमर रहने वाला है, क्योंकि कुछ सितारे ऐसे होते हैं जो सीधे हमारे यहाँ से जाकर के हमारे दिलों से तो कभी नहीं जाते हैं, लेकिन वो आसमान में जाकर के एक वो तारा बन जाते हैं जिन्हें देख करके गर्व से हम ये कह सकते हैं कि वो रही हमारी स्वर कोकिला।